वो तो डाइटिंग करनी है इसलिए वो तो वैसे ही मना है। प्रॉपर खाने का तरीका क्या है हमें नहीं मालूम, सेहतमंद रहने के राज उसूल क्या है वो हमको नहीं मालूम, इल्म है हमारे पास या नहीं उसकी कोई हमें परवाह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जाहिरी चकाचौंध, सिर्फ जाहिरी तौर पर शख्सियत को संवारने के लिए हजारों लाखों रुपए भी सर्व करके हमें चैन नहीं आता और एक के बाद एक चीज आजमाते रहते हैं। अब आप देखिए कि माल का कितना ज्या है, क्या ये इसराफ में नहीं आता? एक एक एंटी एजिंग क्रीम जो है कितने कितने डॉलर की। मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसकी बहन वहां किसी स्टोर में काम करी और वो स्टोर भी इसका ही है, मेकअप वगैरह की चीजों, तो उसके कंपनीज के साथ भी डील रहती है। तो बकायदा सर्वे करते रहते हैं कंपनीज वाले कि लोगों का ट्रेंड क्या है, क्या और पेश किया जाए, लोग किस चीज पे जाते हैं। कहते हैं कि बाज़ोकत बिल्कुल चीप सी चीजें होती हैं लेकिन महंगी से महंगी करके बेचते हैं और बड़ी बड़ी इश्तहार साथ लगाते हैं ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए, हालांकि असर उसका कोई खास नहीं होता। फिर एक कंपटीशन चल पड़ा और कल भी जैसे बात हो रही थी कि औरत के जहानत, काबिलियत, लियाकत, उसके अखलाक, उसके दीन, उसके खानदान, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रही। सिर्फ अगर एक वैल्यूएबल चीज रहेगी तो वो हुसन रह गया या हुसन को मजीद निखारने का जिसको ज्यादा तरीका आता हो। और इस सब से औरत ठीक है शौहर के लिए जायज है लेकिन शौहर के लिए भी वो क्या बन गई है, गुड़िया बन गई बस। यानी चाहे शौहर के लिए भी हो तो उसकी भी एक लिमिट्स है कि औरत का काम सिर्फ सजना बनना और दूसरे के लिए बस एक खूबसूरत पीस, शो पीस बन के रह जाए, इससे आगे वो कोई चीज नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उसको कुछ और नहीं करना, उसके अंदर कोई रूह नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई। सिर्फ हिजाब के मसले को महज हिजाब के साथ मत रिलेट कीजिए कि ये जो हिजाब है और पाबंदी है और औरतों को बंद कर दिया गया और बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल सकती और विटामिन डी से महरूम रहे, धूप शूप ना लगे उनको, और ये नहीं है। बात यह है कि वह हिजाब क्यों, और अगर नहीं तो क्यों, वजह क्या है, तो पूरे दीन के उसमें रख के देखिए कि ये एक हिस्सा है और मुसलमान औरत की पहचान है। आपने आखिरी आयत में क्या पढ़ा, जालिक अदना अयो रपना, कि ऐसे लिबास में मुसलमान हो रहा तो दूर से पहचानी जाए वो मुसलमान जा रही है। हिजाब और मुसलमान औरत लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर उसका तसव्वुर ही नहीं। यानी औरत के इस्लाम का तसव्वुर किसके साथ है, उसके ड्रेस के साथ। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ ड्रेस आप पहन लें और बाकी अंदर से काले रहें, नहीं, अंदर को भी साफ करने की जरूरत है क्योंकि वो तो मकसूद है, लेकिन जितना वो अंदर जरूरी इतना बाहर ये भी जरूरी। मसलन एक आप बेहतरीन किस्म का खाना खा रहे हैं लेकिन जिस बर्तन में खा रहे हैं वो बाहर से मैला है तो आप नहीं खा सकते खाना। इसी तरह बेहतरीन किस्म का बर्तन है, खूबसूरत तरीन, लेकिन जो खाना है वो बदमजा है, आप नहीं खा सकते। तो खाने के लिए क्या जरूरी है, दोनों ही चीजें साफ हो, बाहर का बर्तन भी साफ और अंदर की चीज भी साफ। इसी तरह दीन भी हमसे क्या मुतालबा करता है कि हम बाहर से भी मुसलमान नजर आए और अंदर से भी मुसलमान हो। कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दिल का पर्दा होता है और जाहिर ना करो, और कहीं ये नहीं कहा गया जाहिर तो कर लो और दिल बेईमान रखो, नहीं, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अब मसलन आप देखिए कि जैसे शराब के बारे में भी लोग कहते हैं कि कहां लिखा है हराम है, जैसे ये पर्दे के बारे में हर तरह तरह की हुज्जतें होती है, ऐसे शराब के बारे में भी हुज्जतें होती है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको पढ़ के सुनाती और शायद एक यही वाक्य शराब की हुरमत के लिए काफी है। कोई कुरान की आयत ना सुनाई जाए, कोई हदीस ना सुनाई जाए, सिर्फ आप अपनी अकल से फैसला कर लीजिए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, चंद गलत किस्म के दोस्तों की रफाकत से शराब पीने का इत्तेफाक हुआ। इस दरमियान बदकिस्मती से अपनी 17 साल बच्ची से बदफेली का मर्तकब हुआ। 4 महीने गुजरने के बाद मालूम हुआ कि बच्ची हामिला है। मैंने खुद बच्ची से पूछा, बाप ने खुद बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये आपका काम है। आप यकीन करें, ये तहरीर उस शख्स की लिखी हुई है जो मेरे सामने सो, आप यकीन करें, सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ शरारत की मगर ये किस तरह हो गया मुझे कुछ याद नहीं, ये मुझे होश आने पर मेरी बच्ची ने बताया। अम्मा पूछती है, सवाल है, मेरे शौहर ने मेरे बच्ची के साथ ज्यादती की नशे की हालत में, इस बच्ची के अलावा 4 छोटे बच्चे हैं, शोहर के अलावा कोई हमारा ख्याल करने वाला नहीं, बन्नौरी टाउन वालों ने फतवा दिया कि औरत हमेशा के लिए हराम हो गई है, फौरी तौर पर औरत

0: तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।
1: وقضى

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: भागते हो नजर आपको आ जाए तो आप फौरन से पहले जो है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। अगर आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो आप जो है 115 पे कॉल करके उनको भी बता सकते हैं या दूसरे अदारों को पुलिस को बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये खतरनाक लावे देखे हैं, तो वो उसका सदबाद करने आ जाएंगे। ये हर इंसान के लिए लाजमन है। और कोपनहेगन में आपको पता है कि आमा में पाए गए हैं, फ्यून में बहुत ज्यादा जगह पे पाए गए हैं, और इस तरीके से अब तो उर्दू में भी नशर हो गई है ये सारी चीजें, और इस रेडियो से भी हम आप लोगों को, तो आप ये एहतियात करें क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं, जब बाहर से जो यहाँ के रिसर्चर है वो ये बता रहे हैं कि जो बाहर से खाना सब्जियां फ्रूट वगैरह दूसरी चीजें मंगवाई जाती है, इवन ऑरेंजेस मैंगो इनके साथ भी इनके जो हैं वो अपना मुंह किस्म के बैक्टीरिया और चीजें जो है वो इस मुल्क के अंदर इम्पोर्ट हो रही हैं, आ रही हैं इस मुल्क के अंदर आ रही हैं। लिहाजा अब ये सख्ती कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीजें जो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में फेरिए पे गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो कोई इस तरीके से चीजें मसों चीजें कोई भी ऐसे किस्म के अपना फलदार चीज या अपना कोई घर से ले आता है कि मैं ये दरख्त लगाऊंगा या कोई ऐसा पौधा ले आता है, तो उसके उसके साथ इनको 10,000 करोड़ का जमा, क्योंकि उसके लाने के लिए आपको पहले जो है वो स्पेशल जो महकमा है, जैसे कि हम जानवरों को लेके जाते हैं कुत्ते या बिल्ली को लेके जाते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और वो फूड मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है, और उसके ऊपर वो काफी डॉक्टर्स से पहले जो हैवानों का डॉक्टर है जिसको हम डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, हम उनके पास से जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और जब तक वो नहीं होगा आप तो दूसरे मुल्क में अपने जानवरों को लेकर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अब इन्होंने ये कानून बना दिया है और ये कानून नफाद हो चुका है, इसका जो है उर्दू में भी आपको मिल जाएगा रिटर्न जो है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा। अगर आप डैनिश में कहीं पढ़ते हैं तो आप उसको देखना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट पे आप उसको दबाएंगे और आप उसको उर्दू पे ले जा सकते हैं, पंजाबी पे ले जा सकते हैं, जो भी आपकी जुबान है अरबी तर्क जो भी उसके ऊपर जब दबाएंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा और आप अपनी जबान में सारे की कदावाल आप जान लेंगे, आपको पता हो जाएगा कि ये क्या है। तो लिहाजा राजा साहब ये तो थी मौसम के बारे में और यहाँ के जो तकलीफात और जो गर्मी का मौसम है, और आज शाम को तो वो कह रहे हैं कि आज बहुत ही ज्यादा तूफानी बारिश होने के इम्कान हैं, और ये है कि जिसको यहाँ पे कहते हैं स्काइब, जैसे कि हम कहते हैं कि बाल्टी के साथ कोई पानी डाल रहा है, तो ये छप्पड़ फाड़ बारिश जो है ये आज इसके आने के शाम को बहुत ज्यादा इम्कान है। जी राजा साहब,
1: जी शाह साहब आपका शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से सारी चीज़ों को लिया। तो शाह साहब ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बीमारियां, एहतियात, खुराक, लेकिन उसके बाद चूंकि अब सियासत जो है वो छुट्टियों पे चली गई है और अपने अपने घरों में, अपने अपने विलों में, अपने अपने पार्कों में, अपने अपने लानों में, और उसके बाद जो है शाह साहब यहाँ की जो आवाज़ है हमारी आवाज़ खुराक पर ही रहती है। सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि अब घर घर में जो है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि अब नई खबर की किसी को ज़रूरत भी नहीं रहती। तो शाह साहब ये जो सियासत बिल्कुल खामोश हो जाती है, छुट्टियों पे चली गई है, वापस आएगी और उसके बाद सोशल मीडिया भी इसको ले लेगा, तो शाह साहब ये जो खुराक की आप बात कर रहे हैं, मुहर्रम जो है बड़ी खुशी की बात है कि मुहर्रम आखिरी प्रोग्राम जो है मैंगो का वो मुहर्रम के बाद होने जा रहा है, तो शाह साहब ये बड़ी खुशाइंद बात है और उसमें बड़ा मुनज़्ज़म प्रोग्राम होने जा रहा है। तो शाह साहब ये आपकी जो बातें हैं इसका बड़ा असर होता है, लोग बड़ी एहतियात करते हैं खुराक के बारे में, जो स्टाल वगैरह भी लगाते हैं वो भी बड़ी अब एहतियात करने की कोशिश करते हैं। शाह साहब सबसे बड़ी अच्छी बात है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों की सेहत अच्छी हो, खुराक अच्छी खाएं, उनकी फिटनेस अच्छी हो। शाह साहब आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल आपने सही बात की है, कुछ लोग जो है वो 24 घंटे अपनी वर्दी पहनते हैं, एक जर्नलिस्ट वा वो किसी किस्म का भी रिपोर्टर हो, तजिया नगार हो, वो हर चीज़ की खबर लेने के ऊपर हर वक्त जो है वो 24

0: घंटे ऑन ड्यूटी होता है। नंबर दो पे पुलिस वाला जहां पे भी जाएगा वो यही होगा। इसी तरीके से जो जज होते हैं वो एक होता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की मैं बात नहीं कर रहा, एक जज होता है, जो जज होता है कोर्ट का वो 24 घंटे जज होता है। और इसी तरह सियासतदान जो है, ये सियासतदान कभी भी गैर सियासी नहीं हो सकता, ये छुट्टियों पे हो जहां पे भी हो ये सियासतदान होता है। लेकिन कुछ लोग जो सियासत को समझते हैं कि ये बड़ी इजी है, बड़ा आसान है इसको समझना, और उनको सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूँ कि उनको सियासत की एबीसी का पता नहीं होता, लेकिन वो कुछ किस्मती से या अपने इलाके के अपने खानदान की वजह से वोट लेके तो वो बन तो जाते हैं सियासतदान, लेकिन उनको असल जो जब तक के वो सही पार्लियामेंटेरियन नहीं होंगे, पार्लियामेंटेरियन का मतलब है कि जो लॉज को समझते हैं हर वक्त 24 घंटे, इनमें वही फर्क है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट जो होता है ना ड्यूटी, मजिस्ट्रेट जो होता है वो सिर्फ ऑफिस टाइम पे और ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद वो मजिस्ट्रेट नहीं होता, वो घर जाकर आराम से सुकून से सो जाता है। लेकिन जज जो है वो सुबह वो 24 आवर जज होता है। तो ये जो हमारे मजिस्ट्रेट बने हुए हैं इनको चाहिए कि ये मजिस्ट्रेट से बाहर निकले और ये बकायदा जज बने और 24 घंटे और लोगों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जो इस वक्त हालात हैं, देखे कुदरत हमें हमारा साथ हमेशा हमें हमारा साथ दे रही है। इस मुल्क के अंदर जो है वो 96-97% लोग जो है वो राशिस्ट नहीं है, लेकिन हम में राशिज्म कूट कूट के भरी हुई है। हम ये नहीं सोचते कि हमसे बड़ा राशिस्ट, मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमसे बड़ा राशिस्ट कौन है जो अपने भाई अपने दोस्त अपने लोगों के बारे में गब्बियत कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो इस मुल्क के साथ कैसे कैसे ईमानदारी के साथ रहता होगा। देखिए इन लोगों ने हमारे साथ ये असानात किए कि जब हमें जुबान नहीं आती थी, हम बायोमेट्रिक थे, अंगूठा छापते, हम साइन नहीं कर सकते थे, हमें खत लिखने तक नहीं आते थे, इन्होंने लोगों से खत लिखा, हम लोगों ने लिखवाए। मैं सबको मजमूई तौर पर अपनी शक्ल में देख रहा हूँ, मैं किसी की बात को एक के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ मैं भी उनमें शामिल हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पासपोर्ट हमें जो वीजा लगा था उसके ऊपर लिखा हुआ था आबाश टिलार से आबाश फल्क, कि हम लोग काम करने के लिए यहाँ आए, हम मजदूरी में आए, हमें आबाश मजदूरी करने के लिए एक इजाजत नामा दिया गया है, हमें ना यहाँ बिजनेस का वीजा लगा ना हमें यहाँ मेडिकल डॉक्टर का लगा, जो भी आए सबको आबाश टिलार से ही मिला। तो उसके अंदर आके राजा साहब हमने यहाँ पे सुकून से रहना शुरू किया ये लोग, फिर हमारी नई जनरेशन आई, फिर उसके बाद हमारी कुछ जनरेशन बाहर से आई और उनके साथ फ्लुतनिंग यहाँ पे आ गई। मैं फ्लुतनिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ फ्लुतनिंग को अमन से रहना चाहिए, जहां जाए अगर उनके अपने मुल्कों में फसाद हो रहा है तो वो दूसरे मुल्क के अंदर जाके वही फसाद पैदा ना करे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम जो है वो हमारे लोगों ने किया, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा सहूलियात उनको मुयसर थी फ्लुतनी को, तो वो इसलिए कानून का एहतराम करने से वो कासर रहे, और इससे आकर इस मुल्क के अंदर का कानून जो है इनको, इन्होंने एक चीज याद रखे कि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील नहीं किया। अगर ये चाहते, अगर ये इतने ही राशिस्ट होते तो राजा साहब मैं दावे के साथ ये कहता हूँ ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो आता उसको उसके अंदर अदो बदल करते, उसको उसको उसको तब्दील करते ताकि कल को कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ फोर्सेस जो है, एक फोर्सेस जो यहाँ पे आती है, हमने कई दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन्होंने उन लॉ फोर्सेस को कानून की थोड़ी सी छक्कल दी और वो लोगों पे एप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक ये भी चीज हमारे लिए रख दी कि अगर हम इन लॉ फोर्सेस से हम तंग हैं और हम यहाँ पे 50,000 आदमी के सिग्नेचर लेके उनको पेश कर देते हैं कि भाई आप जो हमारा अकलीती तकबा है आप हमें अजियत में रख रहे हैं, तो ये उस लॉ फोर्सेस को फौरन खत्म कर देंगे, या कोई पार्टी जो है जो हमारी हमदर्द है इस मुल्क के अंदर वो इस फोर्सेस को पार्लियामेंट में पेश करेगी, फिर उसको लॉ फोर्सेस बनाकर उसके ऊपर तीन दफा बहस होगी और अगर वो मंजूर हो जाता है तो जो पुराना सख्त कानून होता है उसको ये डिमोलिश खत्म कर देते हैं। तो राजा साहब, क्या हमारे सियासतदान इस चीज पे बात करते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि हम क्या बात करेंगे? देखिए, इंग्लिश सिस्टम ने किसके लिए वोट लिए, SF ने किससे वोट लिए, सोशल डेमोक्रेट ने किससे वोट लिए, रेडिकल वेंसा ने किससे वोट लिए, डेमोक्रेट ने किससे वोट लिए, ये सारी की सारी हुकूमत में बैठ गई फॉरनर से वोट लेके, और इन्होंने वही अमल किया है जो ब्लू ब्लॉक करने करने वाला था। हो सकता है कि ब्लू ब्लॉक इतनी सख्ती ना करता, इतने ज्यादा एग्रीमेंट ना करता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस कानून को सख्त करने की बजाय और सख्त कर दिए। इनके जो वजीर हैं, जो इनके इंट्रोगेशन के वजीर हैं, माफ कीजिएगा, उनको उनको पता ही नहीं कि इंट्रोगेशन कैसे होती है। वो वजीर बनते हुए ही ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जैसे कि हिटलर ने नाजियों यहूदियों के खिलाफ किए थे। ये चीजें जो है ऐसे नहीं होना चाहिए। सियासतदान को सियासत करनी चाहिए लेकिन कुछ अपनी पार्टी वैल्यूज को लेकर चलना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट एक ऐसी पार्टी थी जो बिल्कुल इंसानियत के हक में चलती थी, उसमें से बहुत सारी पार्टी जो है वो बाहर निकली और उन्होंने जो है डेंसफोल के पार्टी और इस तरह के रूप अख्तियार किए। लेकिन सोशल डेमोक्रेट बड़े नरम पॉलिसी रखती थी। इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे ईसा हॉय में, ब्रॉनबी में, कोपेनहेगन में, और
1: शाहब जो है ना नजरियाती सियासत की जाती थी। शाह साहब देखे ना, अगर आपको किसी ने इस्तेमाल करना हो तो वो इस्तेमाल करके उसके बाद क्या करता है, इसी तरह पार्टियां इस्तेमाल कर वोट लेनी हो तो वही काम करते हैं, किसी ने हमें इस्तेमाल करना है तो वही यही काम करता है। तो शाह साहब कहीं डिफरेंस नहीं है। जो आपकी बात बड़ी आपने की जो हमें पहले नहीं पता थी, अगर ये रेसिस्ट होते तो अपने कानून में तब्दीली करते, इन्होंने अपना वही कानून रखा हुआ है। तो शाह साहब कमजोरियाँ हमारी अपनी होती हैं, हम इस कानून की पाबंदी नहीं करते, जहाँ अच्छा छोटा सा सुराख ढूंढते रहते हैं कि कोई सुराख मिले, जिस तरह आपने जिक्र किया पहले के वो जो किसी कीड़े का जिक्र किया, उसके बाद वो जिसके बाल होते हैं उसे जो है वो ख़ारिश पैदा हो जाती है, उसके बाद वो तितली बन जाती है। तो शाह साहब यही चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। अगर हमारे सियासतदान संजीदा नहीं होंगे, लोकल भी और दूसरे भी, तो शाह साहब गुलामी के पट्टे अगर अपने गलों में डालेंगे तो 1400 पहले तो साल पहले ये पट्टा निकाल दिया गया था, लेकिन अब हर बंदा ये पट्टा डलवाना चाहता है। शाह साहब मैं और आप क्या कर सकते हैं?
0: हम लोग तो वही कर सकते हैं कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आपके पास कोई इलम है आप उसको फॉरवर्ड करें। आप देख लें कि मैं भी अभी अपने पोती के साथ घर आया हूं और आपने टेलीफोन किया, मैं यहां पे बैठ गया हूं और रेडियो पे लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो उनके लिए बेहतर है, जो उनके लिए जरूरी है, उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं। और आप भी रेडियो खोल के बजाय आप इस वक्त कहीं बाहर बीच में हो या किसी बाग में बैठे हो या अपने बच्चों के साथ आगे पीछे घूम रहे हो, आप भी एक बंद गर्म कमरे के अंदर बैठ के आप भी ये चीजें जो है वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। आपको इस चीज का कोई पैसे नहीं मिलते कि आप आके तो बैठ जाए इस गर्म मौसम में। आप रेडियो को एक दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं और उससे कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जो लोग वाइज लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा दूसरों से, हमारा दीन जो है इस्लाम ये डिस्कवरी की बात करता है, ये कहता है कि आप सवाल और जवाब करें, ताकि जब तक आप मुतमिन नहीं हो जाते, जब तक के आपको वो पॉइंट जो आपने रेज किया है उसका हल नहीं मिल जाता तो आप उसको जारी रखें। इसको बहस नहीं कहा जाता। हमारे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या आलम लोग हैं वो इन चीजों को कहते हैं कि नहीं, जो हमने बात कर दी है इस पे बहस नहीं हो सकती, तो ये गलत बात है। आप सीखते ही उस वक्त है, आप स्कूल में क्यों जाते हैं? आप घर में भी बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में इसलिए जाते हैं कि टीचर आपसे पूछता है, आपका इम्तिहान लेता है, आपसे मुख्तलिफ सवाल के जवाब करता है, आप पब्लिक में बच्चों में खड़े होकर उसके सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप गलत बोलते हैं तो आपको डांट भी पड़ती है, आपको शर्मिंदगी हासिल होती है कि पूरी क्लास में मैं ही सबसे ज्यादा नालायक हूँ कि मुझे ये चीजें नहीं पता। तो ये चीजें जो हैं, इल्म जो है इसके लिए आपको बोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है अगर कान का गले का स्पेशलिस्ट था तो वो टांग पांव का या किसी हाथ का नहीं हो सकता, स्किन का नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट हैं, जो सर्जन हैं, उनकी ड्यूटी अलग है। ये हर चीज जो है छोपा जो है अलग है। अब आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप एक रेडियो चला रहे हैं, आपको पता है कि मैंने किस सब्जेक्ट के लिए किस बंदे को मैंने लेना है, मैंने उसकी उससे इंफॉर्मेशन निचोड़ कर बाहर निकलवानी है और वो मैंने लोगों तक पहुंचवानी है। और इसमें आप अल्लाह ने आपको पावर दी है, आप कामयाब हो रहे हैं, आपका प्रोग्राम जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से सुना जाता है, हर जगह सुना जाता है, और इसकी मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ और इस चीज का मुझे इल्म है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये फजूल बातें हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि 2017 से लेके 2023 31 दिसंबर 2023 तक जब यहाँ कहा गया था कि अगर आपको ये पुराना टैक्सी लॉ जो है ये पसंद नहीं तो आप आए प्रोटेस्ट करें, हम इसको तब्दील कर देते हैं। आप लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया तो गलत तरीके से किया, आपने आईन को पढ़े बगैर, कानून को पढ़े बगैर, इस कानून को बनाने वाले कौन है, हर चीज को समझे बगैर आप लोगों ने इस रेडियो के प्रोग्रामों की जो स्पेशल आप हर हफ्ते हर रोज चलवाते थे और मैं आप मेजबान होते थे और मैं यहाँ पे एज ए तजिया नगार उसके आपको इंफॉर्मेशन लोगों को देता था, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, क्या बंदा बातें कर रहा है। अब आप ये देखें कि लोगों ने टैक्सी का टैक्सी तो रही नहीं, अब तो ये फर्म्स बन चुकी हैं, अब तो ये वो बंदे ड्राइवरों को इंसर्ट कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि आप बोनमैन जो है वो बोनमैन ही छोड़ दें और ये फिक्स पे लें और अपनी छुट्टियों पे जाएं, फिर ये पहेंगे इनको मिलेंगे। देखें आप कम अज कम 5-6 लाख की गाड़ी आप डालते हैं और उसके बाद आपकी वो गाड़ी भी नहीं है, तेज चल गई आपका आपकी गाड़ी खुल जाएगी, कोई ऐसा जुर्माना हो गया, आपका लाइसेंस चला गया, आपको नुकसान है, आप एक मजबूर है क्योंकि ये वो टैक्सी नहीं है, वो हक नहीं है आपको मिला।
1: जो ये जो नई फर्में आ रही हैं, जो आ रही हैं, आपके पास कोई तजुर्बा है, ये चल पड़ी है, इसमें लोग मुलाजमत उन्होंने शुरू कर दी है, उनका तजुर्बा क्या कहता है?
0: जी वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे कुछ लोगों से बात हुई है, बल्कि मैं खुद सोच रहा था कि ये जो ये एज ए पेंशनर भी अगर मैं इस कंपनी में कुछ दिन वीकेंड लगाऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक फेस्ट लोन पे बात कर रहे हैं, ये आपको पक्की तनखा पे बात कर रहे हैं, ये आपका टैक्स देंगे, ये आपकी बीमारी के पैसे देंगे, ये आपको फुल राइट्स देंगे, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी पकड़ी जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो कंपनी जवाब दे, आप जवाब देनी है, ये चीज है। और अगर ये जो अभी आपके पास लाइसेंस है, जो आपके पास ये जो टिलैल से है, आपके पास बिविलिंग नहीं है, कोई बंदा ये मुझे साबित कर दे कि उसको डेनिश में बिविलिंग कहते हैं, टिलैल से और बिविलिंग में जमीन और आसमान का बाई लॉ फर्क है। बिविलिंग वो होता है जो आपकी जात को इशू किया जाता है, आपकी एंकर गवर्नमेंट हो या आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई चीज खोलते हैं, तो उसका आपको बिविलिंग मिलता था, वो बिविलिंग आपके नाम पे होता था। अगर वो पुलिस के या किसी और वजह से आपको बंद करना होता था तो वो टैक्स वाले या पुलिस वाले आपको अदालतों में लेके जाते थे। अब है टिल्लर से इजाजतनामा, ये इजाजतनामा वैसी है जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको वो एक नंबर प्लेट देते हैं, वो नंबर प्लेट आप गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, जब आप एक दिन इंश्योरेंस नहीं देते तो वो पुलिस को फोन करते हैं तो वो आके आपकी वो नंबर प्लेट जो है वो टिल्लर से जो गाड़ी को चलाने का है वो उतार लेते हैं और आपकी गाड़ी के ऊपर वो अपना फीता लगा जाते हैं पुलिस वाले के, ये अब चलने के काबिल नहीं, जब तक के आप दोबारा खर्चा ना करें, दोबारा इंश्योरेंस ना कराएं या कोई चीज ऐसी पास ना करवाए गाड़ी को। तो ये टिलैल से जो है टैक्सी वाला का ये बिल्कुल वो टिलैल से है। अब ये जो इतनी इतनी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, इसके अंदर मुलाजमत करने से आपको आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो गया।
1: तो शाह साहब ये जो कम्यून में लोग बैठे होते हैं, जो कम्यून की एक पार्लियामेंट होती है, हर जगह को होती है कम्यून, जहाँ जहाँ कम्यून हैं सारे बैठे होते हैं, उनका जॉब क्या होता है। दूसरा शाह साहब, कल आपने देखा कि ये शिकायत हमें भी मिलती रहती हैं कि ये जो बाहर खिड़कियां तब्दील होती हैं, सड़कों पे काम हो रहा होता है, जगह जगह जो है स्क्रू लगाए जा रहे होते हैं, और जो पार्किंग होती है, हालांकि वो कम्यून की होती है, लोग पार्किंग के पैसे देते हैं, उसके बावजूद वहाँ सफाई नहीं होती जो है ना, उसमें पेच पड़े होते हैं, गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती है, उसका फ़ायदा किसको हो जाता है। ये जो आपको जो है मदद करने वाले आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ वर्कशॉप में चली जाती हैं, टायर तब्दील किए जाते हैं, टायर फट जाते हैं, सुराख उसमें हो जाते हैं, तो शाह साहब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। खाली हम बातें कर लेते हैं, निजी महफिलों में बैठ कर खाने खा कर हा हा करके उठ के चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी मैंने बड़ा काम किया, मैंने खाना दिया। तो शाह साहब इस तरह तब्दीली नहीं आएगी। हम पीछे से जिस तरह फरमाते रहते हैं कि अब जो है वो पांचवी नस्ल या चौथी नस्ल जो है वो शुरू हो चुकी है, हम बाकी जो कहते हैं दूसरी तीसरी नस्ल को क्या देकर जा रहे हैं।
0: देखिए जी, आपका सवाल बहुत ही रेलिवेंट है, आपने दुखती राग पे इनको पकड़ लिया है। ये काउंसलर का काम होता है, काउंसलर अपने साथी काउंसलर को जो है वो होम मिनिस्टर बनाता है, और वो होम मिनिस्टर बनाता है, और ये जो मुख्तलिफ अपना टेक्निकल अदारे हैं इनके नीचे आते हैं, उनके होम मिनिस्टर जो आते हैं ये काउंसलर ही चुनते हैं, और फिर वो बनते हैं पार्टी है, जो है उनके काउंसलरों के दो तीन मुख्तलिफ पार्टी बनकर उसको चुन लेते हैं। अब इन काउंसलरों का काम ये होता है कि इनके आगे जाकर बीन बजाना, इनको बताना कि भाई शहर में ये चीज हो रही है, फलानी चीज हो रही है। अब सबसे ज्यादा ड्राइवर जो है टैक्सियों में वो पाकिस्तानी और फॉरनर है। नंबर दो पे जितनी वाहन चल रही है इसमें मेजॉरिटी फॉरनर है, बसें जितनी चल रही है इसके अंदर मेजॉरिटी फॉरनर है, बड़े लॉस फोन जो चल रही है इसके अंदर भी आप फॉरनर बहुत ज्यादा आ गए हैं, डेनिश कम हो गए हैं। तो ये जो तकलीफात इनको पहुंच रही है, इनके इनके सरपराह कौन है, इनको इनकी नुमाइंदगी सियासत में कौन कर रहा है? ये डेनिश नहीं कर रहे, ये काउंसलर वो काउंसलर है जो हमारी जुबान को, हमारे माशरे को, हमारी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास इस चीज को, उनके पास इन चीज को, उनको हजार दफा गुस्सा लगे, मैं ओपनली कह रहा हूं लाखों बार लगे, 55 साल हो गए, 56 साल इस मुल्क में रहते हुए अभी तक हमारे यंगस्टर्स को ये पता नहीं लगा कि हमारे नेबर की प्रॉब्लम क्या है। एक ही अपगांग में रहते हुए जब आपको ये नहीं पता कि सुबह आप उठ रहे हैं और आपके बुए के सामने जो फुटपाथ है उसको खोदा जा रहा है, उसमें क्या चीज हो रही है आपको ये नहीं पता, आप आपका निकलना दुश्वार हो रहा है, आपके हमसाए में क्या हो रहा है आपको ये नहीं पता। जब आपको ये नहीं पता तो आप इंटीग्रेट कैसे होंगे? आपको इंटीग्रेट होने के लिए इस माशरे की तकलीफात को अपनी तकलीफात समझनी पड़ेगी, इस लोगों को समझने के लिए आपको फ्यूचर में, और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोग सरे आम बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि किसी ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी पहले बैठा हुआ है या ऐसा बंदा जो पहले काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए, नए बंदे को मत आजमाओ, क्योंकि नया बंदा जो है वो फैमिली बेसिस पे या किसी बात पे आएगा तो वो यही तकलीफात जो है चार साल में आगे भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओपन एगन के अंदर, वेस्ट टाइम के अंदर ये सारी चीजें जो है, ये गंदगी जो फैली है इसी की वजह से ये गोले आई हैं, इसी की वजह ये जो बम्बू कार्ड है, ये जो लावा आई है इसी वजह से आया कि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा फैल गई है, कम्यूने जो है वो सफाई नहीं कर रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे घर के सामने एक वैस्करी है, उसके साथ एक डस्टबिन लगा हुआ है, वो डस्टबिन में वो आता है प्लास्टिक के लफाफे निकाल के ले जाता है और उसके अंदर नया लफाफा लगा जाता है, लेकिन नीचे जो गंद पड़ा हुआ है वो नहीं उठाता। वो 23 दिसंबर की मेरे पास वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वक्त की वहां पे गंदगी पड़ी हुई है, और अब तक वो इतनी बार कम्यून को भी बात करने के, वो कहते हैं हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हमारे पास बंदे छुट्टियों पे चले गए। ओ भाई, ये काउंसलर्स ने करना है, वो डायरेक्टर्स को दे देता है, डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर भी इंसान है, उसने सुबह उठना है, पहले अपने बच्चों को जाके बांधने में या स्कूल में छोड़ना है, फिर वो आएगा वो काम करेगा, फिर वो 2:30-3 बजे आप देखें कि कितनी ट्रैफिक हो जाती है, आप टेलीफोन करके देखें कि वो अपनी सीट पे नहीं बैठा होगा, सेल्समैन ने कहा होना फॉइड है। अच्छा जब वो ये कह देते हैं तो आज के दिन वो छुट्टी पे चले गए। अच्छा वो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो रस्ते में कंप्यूटर पे या घर में जाके करते हैं और आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, बजाय वो एंस वाली होने के। हम जितने भी डेनमार्क में रहने वाले लोग हैं, जब हम यहाँ में फेल्क हो जाते हैं, हमें गूल स्विजिंग कार्ड मिल जाता है, तो राजा साहब हम एंस वाली होते हैं। हमें यहाँ अपने अपनी एंस वाली का मतलब है कि यहाँ हम जिम्मेदार शख्सियत बन जाते हैं। हम मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, हमें यहाँ पे जो है वो कायदा जिम्मेदारी होने चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, चंद दिन पहले मोटरवे के ऊपर ईसाई के पास एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर किसी ने फेंका हुआ था। यकीन कीजिए कि वो लॉस्ट वन गुजरी है तो उसके बैक टायर के ऊपर या फ्रंट टायर के ऊपर से वो स्लिप हुआ है और इतनी जोर का वो फटा है। और शुक्र है कि किसी को डैमेज नहीं हुआ ना उसको हुआ, लेकिन हमने देखा कि वो जब फिजा तो ये सिलेंडर जो गैस
1: ये तो
0: सिलेंडर
1: चीजें जो है वो नजर आती रहती हैं। आप देखे ना क्या, पेट्रोल पंप्स पर जाएं, पहले पेट्रोल पंप किस तरह साफ सुथरे होते थे, शीशे की तरह बाहर से भी चमक रहे होते थे, लेकिन शीशा लगा नहीं होता, मैं सफाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब सारे पेट्रोल पंप्स पर आप जाएं, आगे पीछे जहाँ गाड़ी धोकर खड़ी करते हैं, जो जगह धोने वाली है, हर तरफ आपको वो सफाई नजर नहीं आती। सफाई है लेकिन गंदगी पड़ी होती है। शायद गंदगी से मुराद है जो ये दूसरा गंद होता है।
0: देखिए जी, सबसे बड़ी पहले तो ये चीज है कि हम ये कहते हैं जी हम यूरोप में रह रहे हैं। यकीन करें कि हम जिस मुल्क से आए हैं वो उस वक्त की जनरेशन जो थी बड़ी साफ जनरेशन थी। उस वक्त के लोग जो थे वो खिदमतकार लोग थे। और वो मैं आपको ये बात हल्फन ये कहता हूँ कि मैं बेशक शहर में कैंटो में पैदा हुआ हूँ, कैंटो में रहता था, शहर में जाता था, शहर में रहता था, लेकिन मेरे रिलेटिव जो थे, मेरे खानदान के लोग, वो बाहर गांव में भी रहते थे, जो जमींदार करते थे या दूसरे गांव में रहते थे। जब वहां जाते थे तो मैंने ये खुद देखा है कि अगर कोई भैंस गुजरते हुए कोई वो अपने पॉटी कर देती थी, पखाना कर देती थी, तो वो बेलचा ला के या कोई लेके पतली सी तो उसको साइड पे कर देते थे, उसको उठा के ले जाते थे ताकि लोगों को की गुजरगाह जो है वो साफ रहे। अब आप जाए आप देखें कि प्लास्टिक के लिफाफों में गंदगी डाल डाल के नालियां बंद कर दी है, नाले बंद हो गए हैं, फ्लॉट कर रही है कानून की वही चीज यहाँ पे है। आप ऐसे ऐसे जाके बात करेंगे जी, आप पाकिस्तान के लिए इतने यहाँ पे लोग हैं, आप पाकिस्तान के लिए फ्लाइट करें तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं जी। और सबसे आखिर में ये कहते हैं कि क्या आप इस काबिल है कि आप हमारी एयरलाइन में सफर करें, तो आदमी लाजवाब हो जाता है। बच्चों को बाहर पेशाब करवा देते हैं, टॉयलेट गंदा कर देते हैं। खुद जो लोग हैं वो जो मोरबी टाइप हमारी उम्र के लोग हैं उनको ये बात नहीं समझी कि आप कागज इस्तेमाल कर ले, वो वहां पे संजा करना शुरू कर देते हैं, वो सारा पानी नीचे पच पच पच और पाँव के साथ सारा उनका कारपेट। वो इसलिए कोई फ्लाइट्स यही चीजें हैं कि दूसरी KLM वाले अपना जर्मन एयरलाइंस जो दूसरी, ये क्यों नहीं पाकिस्तान इनको लेके जाती, इसीलिए कि ये कहते हैं कि आप लोग इंडिया में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को यूरोप में रहते हुए भी आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। तो अगर हमने यहाँ रह के कुछ नहीं सीखा, अपने आप को एजुकेट नहीं किया, हम एक दूसरे को गरबान से पकड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की गबियत करते हैं, एक अब आप ये देखें कि एक नया मसला इस मुल्क के अंदर आ रहा है। अब हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं। मैं अगर काम कर रहा हूं एज ए टैक्सी ड्राइवर, मेरी लोन सेल क्या है 30-35 हजार करोड़, कार्ड के क्या मुझे मिल रहा है 20-25 हजार करोड़, और मैंने एक बड़ी गाड़ी जो है, बहुत बड़ी गाड़ी जो है उसको लीज कर लिया। अब वो जो गुजरने वाला है, देखने वाला, वो कहता है कि ये तो टैक्सी चला रहा है लेकिन इसने गाड़ी इतनी, ये कहाँ से पैसे ला रहे। ये सारी जो इससे इस मुल्क के अंदर देखे, अगर आपने छोटी सी सुजुकी भी ले ली है, मेक नो डिफरेंट, पर्सनैलिटी मेक डिफरेंट करती है। आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक ईमान होना चाहिए, कुवत होनी चाहिए, क्या बात है, फर्क पड़ता है। मैंने भी तो किया कंट्रोल रखी है, इतने साल रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: तो शाह साहब इन चीज़ों का निचोड़ निकाला जाए तो ये बातें तो कम्यून में होती हैं, सफाई सुथराई की जो बातें होती हैं या जो चेकिंग चेक एंड बैलेंस होता है। अब देखें ना, पहले दुकानों पे जो वाह को चेक किया जाता था, मैंने देखा कि डॉक्टर दुकानों पे तीन तीन चार चार बार आते थे हफ्ते में, सफाई को देखते थे। इसी तरह जो ये पेट्रोल पम्प्स वगैरह हैं या खाने पीने की जगह या पब्लिक प्लेस जितने भी होते हैं, इनकी सफाई की चेकिंग होती थी। इसी तरह पार्कों में आप चले जाएँ तो पार्कों की देखभाल जो की जाती थी। तो शाह साहब, इसमें जिस तरह आप कहते हैं कसूरवार, तो लोग खुद भी ये गंद डालते वक्त वो भी ख्याल नहीं करते, लेकिन कम्यून में भी उस तरह की ये बातें नहीं हो रही।
0: देखिए, आप जाके क्लियर करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जब आप वहां पे जाके इस बात को इग्नोर कर देते हैं, आप इस बात को मामूली बात समझते हैं, तो आप आपको आप सिर्फ एक अपना CBR जो है उसको हाई करने के लिए आप ये बात करते हैं। ज्यादातर डेनिश लोग जो है, आजकल के यंगस्टर डेनिश लोग, वो सियासत में इसलिए आते हैं कि अगर वो उनकी स्कूलों के जो क्राइटेरिया होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते तो उनको जॉब के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े से इशार होते हैं, वो आ जाते हैं सियासत के अंदर, और वो पार्टियों के अंदर नंबर चंबर बना के कुछ सी थोड़ा सा इलेक्टेड एक दफा हो गए तो उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो सियासत में रहा है, ये खूब जानता है कानून है, उसको जंप करके तो वो अपने से ऊपर वाले के ऊपर जॉब में चला जाता है, उसके नीचे वाला बेशक PhD करके बैठा हो। तो ये चीजें इनको मिलती हैं। तो हमारे जो लोग हैं ये सारा दिन कामों पे जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं और जॉब करते हैं, और जब रात को इनके 6-7 बजे के बाद इनके वो जो मीटिंग्स होती हैं, जो इनकी जैसे आपने कहा छोटी सी असेंबली लगती है, तो वहां पे ये सिर्फ आते हैं बैग पकड़ के, जो इनका बंदा वहां पे बैठा होता है पार्टी का जो हाजिर होता है उसको कहते हैं मेरी हाजिरी लगी है, मैं आया हूँ, ओके, पेशाब के बहाने बाहर निकले, काफी पीने के बहाने बाहर निकले, और इनको रोकने वाला कौन ही। एक दफा इन्होंने शक्ल दिखा दी, कैमरे में आ गए, ये घर चले गए। ये कोई बहस नहीं करते, ये कोई वहां पे डिस्कशन नहीं करते, लॉ फोर्सले पेश नहीं करते, कोई फोर्सले पेश नहीं करते। मैं एल्बर्सलोन में रह रहा हूं, मैंने आज तक नहीं सुना कि एल्बर्सलोन को पियर क्रेस्पो ने डनमार्क की सबसे गंदी तरीन सबसे जालिम तरीन कम्यून का, और ये अखबारों में और मीडिया में आया, और इसके ऊपर हमने भी क्लेम काफी पहले भी करते थे, लेकिन क्या आज तक यहाँ किसी काउंसलर ने खड़ा होकर कहा है अपने प्लेटफॉर्म से अपनी असेंबली के अंदर के ये जो कानून है इसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको हम मीडिया पे लेके आते हैं, इसको तब्दील करना चाहिए, ये जो लॉ फोर्स ने बनाई हुई है अपना पार्लियामेंट ने, ये हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, हमारे आवाम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। क्या ये बात करते हैं? नहीं करते। क्यों? कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं कि ये अपने बच्चों को संभालें, अपने फैमिलीज को बचाने, ये शादी जब ब्याह पे इन्होंने जाना होता है एज ए काउंसलर, या इन्होंने दूसरी जगह जाके प्रेजेंट करना होता है जी कि मैं फलानी पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं फलानी पार्टी का सदस्य हूँ। ये चीजें जो है इससे तरक्की नहीं आती। तरक्की उसी वक्त आती है जब आप बैठ जाए, आप काम करें। आप देखते नहीं है कि डैनिश कैसे काम करते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये डैनिश जो फॉरगेटिंग मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये किसी शादी ब्याह पे जा रहे हैं? नहीं, ये अपने काम से काम तलक रखते हैं, इनकी पूछ पूछ होती है। हमारे लोग जो हैं वो सबसे पहले आएंगे जी, ये फलाना काउंसलर आ गया जी, हमने उसके टेबल पे बैठना जी, इसकी फोटो होगी, हमारी फोटो होगी, पीछे फोटो। ये सेशन इस कौमें तरक्की नहीं करती। मैं आज जिंदा हूँ, कल का पता नहीं है, लेकिन राजा साहब बात वो है जो हकीकत है।
1: शाह साहब, मुझे एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो बहुत बड़े आदमी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो मुझे कहने लगे कि वो किसी वजह से आए थे, एक दिन के लिए आए थे, तो मुझे कहने लगे कि राय साहब मैंने आपकी बातें सुनी, सारी चीज़ें मैंने देखी, खुद भी मैंने देखा कि आप बड़े सब लोग पावरफुल लोग हैं, बड़ा कुछ आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास मीडिया है, लोकल तंजीमात हैं, सियासी जमातें हैं, यहाँ की भी पाकिस्तान की भी सियासी जमातें हैं, लेकिन जब आप मुझसे ये बात कर रहे हैं PIA की, ये छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी पावरफुल कम्युनिटी बैठे और इतने खुद आप पावरफुल लोग हैं, तो आपका ये मसला अभी तक हल नहीं होता, तो कहता है कि मैं फिर क्या कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल आपने सही बात की है। अब जो डेलीगेशन यहाँ पिछले हफ्ते चंद दिन पहले यहाँ पे आया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अम्बेसी ने किन लोगों को मिलने दिया, किन को नहीं मिलने दिया, क्या उनके पास कोई ऐसा मैसेज गया या नहीं गया, और चंद लोगों को इस तरीके से वो इतने दिन रहने के बावजूद भी उनका पब्लिक पब्लिक से क्या, उनको अपनी नून लीग में ही जो चैम कही हो रही है, मुझे ये शोर तो नहीं है लेकिन मुझे ये लोगों से पता लगा, वो अपनी नून लीग की पार्टी या पीपल पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है या काफ लीग जो पीपल पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है, उनमें से किसी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। और
1: शाह
0: अगर
1: साहब
0: ये
1: ये
0: लोग
1: तो
0: किसी
1: खबरें
0: तरीके से
1: चलती
0: आते
1: रहेंगी ना शाह साहब, देखें हमारा काम है कि चीज़ों को देखना, एनालाइज करना। शाह साहब अक्सर हम कहते रहते हैं क्या ये जो लोकल तंजीमात हैं, ये लोकल सियासी पार्टियां, मैं तो इन्हें पार्किंग प्लेस कहता हूँ कि बड़ी जमातों की ये पार्किंग प्लेस होती है, और ये आकर गाड़ियाँ अपनी पार्क अपनी कर लेते हैं, आपको होटलिंग भी मिल जाती है, खाने भी मिल जाते हैं, TC भी मिल जाती है, आगे पीछे भाग दौड़ भी शुरू हो जाती है। तो शाह साहब जब हर चीज़ के पीछे हम खुद कसूरवार हैं तो हमें किसी को भी कसूरवार नहीं कहना चाहिए। क्या हमने कोई मुश्तरका कोई ऐसी चीज़ की है, जब कोई हम नाम लेते हैं तो कहते हैं जी अपनी नमाइश के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, आप नाम लेते हैं तो आपको कहते हैं शाह साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो शाह साहब कसूरवार हम खुद खुद लोग हैं, तो हम अपना कसूर उठा के दूसरे की तरफ डालने की कोशिश करते हैं।
0: देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरे ख्याल में चंद दिन पहले यहाँ पे जो हिंदू बिरादरी रहती है, उन्होंने वॉल्स पैलेस के अंदर बहुत बड़ा अपना फंक्शन किया है। उन्होंने अपनी बकायदा वो अपने वो भगवानों की वो मूर्तियां, ये वो डांस, ये वो उन्होंने वॉल्स पैलेस में पूरा किया है। किसी ने एतराज नहीं, पूरे डेनमार्क में किसी ने एतराज नहीं किया, किसी डैनिश ने एतराज नहीं किया। हमारे में क्यों है? क्योंकि हम आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाते हैं। हम लोग ऐसी चीजें वहां पे ऐसे स्पीकर को ले आते हैं, ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर सियासत का पहलू आ जाता है। और जब ये चीजें आती हैं, सियासत का पहलू आ जाता है, आप समझते हैं जी कि हम हमसे हमें कोई कुछ नहीं कह सकते। तो जब आप पे आ पड़ती है तो वो क्या नाम है, फिर वो मुश्किल तरीन टाइम होता है। तो हमारे लोगों ने यहाँ के कानून को उन्मूट करना, यानी कि इन लोगों ने उसका नजायज फायदा उठाया है, उसके साथ नजायज हरकतें की हैं। इन्होंने हमें बैंकों में लोन दिए, इन्होंने हमारे लोन माफ किए, लेकिन जब हमने इनको मिलियंस के मिलियन के हिसाब से इनको फड्डा लगाया इन बैंकों ने, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स वालों के साथ जो हमने धोखे किए, तो फिर इन्होंने आज वो सारी चीजें हमारे लिए फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी है। लेकिन जो नए आने वाले कमर हैं, वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, पढ़े लिखे, उनके अकाउंट्स वो उसी तरह खुल रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ है उनके नहीं।
1: शाह साहब देखें कि सियासी जमातों को देखें, इस मुल्क के हम रहते हैं, यहाँ हम जमहूरियत के तरीके से बात कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, इजाज़त लेकर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने जब आगे जिक्र कर रहे थे टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ, वो कानून कायदे से हुआ, बाकायदा इजाज़त लेगी। शाह साहब अगर हम कोई प्रोग्राम कराने के चक्कर में जो है पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किल होती हैं। शाह साहब आप देखें पाकिस्तान की कितनी सियासी जमातें माशाल्लाह खुद कफील हैं, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इतनी सियासी जमातें। शाह साहब कभी मिलकर सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किया है कि एक कानून बनाने वाले लोग, एक पार्लियामेंट में बनाने वाले बैठकर कानून बनाने वाले लोग, लोगों की 20-20 लाख पेंशन है, शाह साहब कभी इन सियासी जमातों ने एहतजाज किया?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको ये
1: सिर्फ
0: एक बात
1: सोशल
0: बताऊं,
1: मीडिया पे जी फलां के साथ ज्यादती हो रही है, फलां कैदी के साथ ज्यादती हो रही है, फलां मेरे लीडर के खिलाफ बात कर रही, अपनी आर्मी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा शुरू कर दिया। शाह साहब जमहूरी तरीका है एहतजाज किए जाते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ना कि वायलेंस की जाती है।
0: देखिए जी, ये जो आपकी बात है ना कि फौज, ये अदारे जो हैं, ये हुकूमत है, ये गवर्नमेंट है, ये स्टेट है, इसके आप वजीर आजम के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप वजीरों के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुल्क की सियासत के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अदारों को, दुनिया का कोई भी अदारा हो या किसी मुल्क का स्टेट अदारे हो, आप उसके ऊपर अटैक करेंगे इस मीन के आपने स्टेट के ऊपर हमला किया है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। जितना मर्जी गुस्सा हो, जितनी मर्जी चीजें हो, उसे हमें बिल्कुल एक्साइट होना चाहिए और हम लोग देखते रहते हैं सोशल अपना सोशल मीडिया के ऊपर डेली नजर होती है हमारी, देखते हैं कि कौन कौन से लोग और कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी गलत और गलीज बातें जो है वो अपने उस मुल्क के अंदर जहाँ उनके माँ बाप रहते हैं या उनके खानदानों के खानदान वहां से आए जिस पासपोर्ट पे वो वापे आए और वो ऐसी बातें कर रहे हैं आज भी। लेकिन मसला फिर भी यह है, मसला यह है कि हमारे जो यहाँ के लोकल सियासतदान हैं, हमारे के यहाँ के जो सरबराह हैं पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटियों के जिसके अंदर मसाजद भी आती है, क्या इनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं या इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं कि ये खाना खाने की बजाय चाय पीने की बजाय क्या इनके पास ऐसी डिबेट्स हैं? आप ये देखें कि इन्होंने कितनी मसाजद को इन्होंने कानूनी तौर पे उनके ऊपर केसेस किए, अली मस्जिद सारे मनाजुकान ये तो अभी तो ये आपसे पूछ रहे हैं, अब जो नेशनलिटी ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इन चीजों पे वो ईसाइयों को नहीं पूछते, वो हिंदुओं से नहीं पूछते, वो दूसरों से नहीं पूछते सरदारों से, वो मुसलमानों से पूछते हैं कि आप बताएं कि क्या आप कुरान की इस चीज को शरी हसीब को मानते हैं, नहीं मानते तो इधर साइन करें, हम आपको नेशनलिटी नहीं देंगे। तो इसके ऊपर
1: शाह साहब एक छोटी सी बात है, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। शाह साहब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। शाह साहब आप देखें, हम लोग आज भी करते हैं, उम्रे भी बेताशा करते हैं और उसके बाद मसाजिद में भी जाते हैं, दुरूद ख़त्म भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई ऐसा चीज़ काम नहीं है जो हम नहीं करते। शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंसें भी हम मनाते हैं हर साल की तरह, हर अदारों में, हर सेंटर्स में, हर कल्चर सेंटर में सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुरूद सलाम की महफिलें सजती हैं। तो शाह साहब इतना करने के बावजूद हम में खामियाँ क्यों हैं?
0: हमें यह है कि हमें रबियत भरी हुई है, हम सबसे बड़े राशिस्ट हमें हैं और सबसे बड़े वबियत करने वाले हम हैं और हमें जब जब तक हमें इत्तफाक नहीं होगा हमें कोई बरकत नहीं आएगी। जिनके दिन हम मनाते हैं हम उनकी तरफ ही नहीं देखते कि हम अपने करदार पे इनसे कुछ सीख लें और हम वो हमें क्या सिखला रहे हैं, उनकी शहादतें किस चीज़ पे है, हम अपने आप में एक इत्तफाक पैदा करें। हम एक 70, आपको मैं ये याद बता दूं कि 70s, 80s, 90s में हम यहाँ मुसलमान इसलिए खुश थे कि हमारे में फिरकाबाजी नहीं थी, हमारे में एक इस्लामिक सेंटर था, सारे सुन्नी शिया वाबी सब वहां जाते थे और अगर किसी ने आस्ता आस्ता अपनी जमातें बना ली तो वो फिर इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन अब तो हर कल्चर सेंटर
1: अब भी दौड़ लगी हुई अपनी मसाजिद बनाने की।
0: बस बस यही है, बाकी अल्लाह इनको हदायत दे।
1: शाह साहब हमारा काम है, हम कोई पुलिस मैन नहीं, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, कोई भी अपनी राय देना चाहता है, इस पर बात करना चाहता है, जो कुछ आपने कहा सुना, जो लोगों ने सुना, हमारे समय नाजरीन ने सुना, कोई भी अपनी राय देना चाहता है तो उसके लिए शाह साहब हमारा टाइम हाजिर है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आकर सवाल करें, मुझसे सवाल करें, जब हम बात कर रहे हैं इस तरीके से आकर सवाल करें कि शाह साहब आप ये गलत बात कर रहे हैं हमें बताएं, मैं उनको आइन का फिर उसको जो लॉ फोर्स है जो फोर्स है वो बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि किस पार्टी को आपने वोट दिया, ये जिन पार्टियों को हमने वोट दिया वो हमेशा ही स्टूड पार्टी होती है, वो हमेशा ही गवर्नमेंट के को सपोर्ट करती है और वो कानून कवानीन जिनके खिलाफ हमने उनको वोट दिया था कि ये उसको जाकर खत्म करेंगे वो नहीं कर पाती और ना ही वो इसके ऊपर बात करती है। तो लिहाजा हम जान बूझ कर इन पार्टियों को वोट देते हैं और इससे बेहतर यही है कि हम डेंथ फलके पार्टी या ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे कि वो कम से कम आएंगे तो उनको ये तो शर्म होगी कि डेनमार्क का नाम बदनाम होगा अगर हम सबको यहाँ से निकालेंगे, कम से कम उनको चांस देना चाहिए कि आओ भाई आपने हमें निकालना है, आओ निकालो, बनाओ जहाज, कितना खर्चा करोगे, दुनिया आखिर कम से कम उनको बोलेगी जैसे स्पेन बोला है अभी,
1: कौमें बोलती हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगे। सब नाज़रीन ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जो के आपको मैसेज दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, कोई और भी देना चाहता है उसके लिए आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर, ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: मौका मिला है इन्फ्लुएंस करने का। कमून का जो पूरा लीडरशिप है, उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे, और उनसे जो होता है ना मेल मिलेदा से भी, उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे। ये एक ऐसा काम है जहां आप दिन ब दिन अपना ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी जाते हैं, और मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा पहला जो पीरियड था वो थोड़ा एनोनिम था, मगर अब जो है वो मैं इनर सर्कल के अंदर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। इसके अलावा बंदा कह सकता है कि जब फिर आप नजर में भी आते हो, आपकी हर जो होती है ना डिसीशन, उस पे लोग उंगलियां भी उठाते हैं, एंड मगर आई एंजॉय दैट। ये हर किसी के बस में नहीं होता कि जब आप कमरे में बैठे हो तो आपके आप पे इतनी नजरें हो और लोग इतनी बातें करें, और आपने ठीक तरीके से उनसे बातचीत करनी है, बहस करनी है, अपना मौकफ रखना है, और डिस्कशन को जीतना भी है, और ये पूरा प्रोसेस आई एंजॉय दैट। मगर इसके अलावा ये कमून मेरा शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही मैं स्कूल में भी गया हूँ, पढ़े हुए भी गया हूँ। मैंने क्रिकेट भी यहाँ बचपन से खेली है, फुटबॉल भी खेला है। ये मेरा कमून है, आई नो माई सिटी, और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: इसका
0: वक्त
1: मतलब है
0: थोड़ा
1: कि
0: दिस
1: आप सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब ये हाजिरी वगैरह को होती है, बातें होती रही हैं, कम्यून्स की मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ की जब बैठे जहाँ जहाँ बैठे होते हैं वहाँ की मीटिंग्स होती हैं, तो हाजिरी के लिहाज से आपका नंबर कहाँ आता है?
0: मैं तो हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, सो आई बिलीव टॉप में ही आता है।
1: तो ज़बरदस्त ही टॉप पे आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो बाकी लोग को, आपको पता है, बाज़ जगहों पे सुनने में मिलता है कि लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, हाजिरी की शक्ल तक ही रहते हैं।
0: वो मेरा ख्याल वो लोग करते हैं जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता या कोई पावर नहीं होती, वो बस कुछ कर भी नहीं सकते ना, बस गिला शिकवा कर सकते हैं, मगर उनकी कोई पॉलिसी कंप्लीट थ्रू नहीं जाती।
1: मतलब है कि ये अच्छी बात है कि आप जो है वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आप इंजॉय करते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, मैं इंजॉय, आप पार्टिसिपेट करते हैं, हाजिरी में आपके टॉप में आते हैं, लिस्ट में आपका नाम आता है। तो इसके अलावा कोई आप बात करना चाहें, आप कहना चाहें, चूंकि लोगों की डिमांड्स तो बड़ी होती है, मेरा ये काम कर दें, मुझे ये कर दें, तो शायद तो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन काम तो यहाँ कानून करता है।
0: जी ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि जब एक बंदा मुझे वोट देता है तो मैं उनका हर काम कर सकता हूँ, आला कानून इजाजत भी ना दे, या ऐसा कोई मसला भी हो जहाँ मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कर सकता हूँ। कई लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये भी काफी होता है कि मैं कोई ठीक पावरफुल बंदे से मीटिंग ही करा दूं। जैसे मैंने मेयर से मीटिंग कराई थी, एक और भी एक दो केस थे जहाँ कोई ना मिलियो शेकनिक के सेंटर शेफ हो गए, उनसे मैंने मीटिंग करा दी, क्योंकि एक मसला होता है प्यूकुचल का, उनसे भी मीटिंग करा दी। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने भी, अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं ना अपने पावर में रह के उनके भी ना बहुत प्रेशर डाल सकता हूँ, इतना डाल सकता हूँ कि वो स्ट्रेस में चले जाएं। और ये हुआ भी है, हमारे ना कोई पार्टी में लोग थे, हर पार्टी में नहीं, मैं जिस पार्टी से हम समाप्त करते हैं
1: लेकिन ये सब कुछ
0: वो पहली
1: कानून
0: दफा
1: के
0: आए
1: अंदर
0: थे।
1: होता है ना?
0: हाँ, क्योंकि हम पॉलिटिक्स, आप ऐसे देखना है कि जो होते हैं ना डायरेक्शन या मजा पाए रखम उनके, वो तरफ हंसिया करते हैं, हम जो है हम स्ट्रेटजी और ऑडिट भी हंसिया कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब है कि नजर रख सकते हैं कि लोगों ने काम ठीक किया, और अगर हमें लगे कि वो ठीक नहीं कर रहे तो हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं, पूरा प्रोसेस मांग सकते हैं कि ये आपने फैसला दिया, आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि कैसे किया है। और अगर वो करे भी एक्सप्लेन, तो फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन पे एक नया पॉइंट डाल सकता हूँ कि ये भी एक्सप्लेन करें, ये भी करें, ये भी करें, उनके तक 3-4 दिन इसमें लग जाए, तो वो भी डरते हैं इस चीज से। क्योंकि ये हुआ है कि एक डिपार्टमेंट के 3 बंदे बीमारी मार के घर बैठ गए थे एक बंदे की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से। और मेरा फोकस यही होता है कि खास तौर पर जब आप पावर में हो कि आपके तलाकात अच्छे हों डायरेक्शन से, कमून के मदा पायरा से, क्योंकि इन्हीं से तो आपने काम करवाना है।
1: वकार, आपसे अगर सवाल करें, अगर आप मेयर की सीट पर बैठे हैं तो आप अपनी काबीना जो भी कमेटी होती है, ये भी एक छोटी सी पार्लियामेंट होती है, तो आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं?
0: मुझे लगता है कि हर

0: बंदा कर ही सकता है, मगर ये दुनिया का काम है बताना कि कितना अच्छा कर रहा है। हर बंदा तो यही समझेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर उसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता जो दुनिया का करता है। मगर मेरे इनर फीलिंग यही है कि ये जब ये दूसरा पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे इस चीज में 8 साल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ना कर सकूं तो कोड कर सकता है, क्योंकि बाकी सब जो है वो पेंशन में चले जाएंगे हमारी पार्टी के, और हमारे कमून में रह जाते हैं कोई 6-7 बंदे, और हमारी पार्टी में रह जाते हैं कोई 3-4 बंदे। सो इनमें से मेरी गिनती होती है, और आई बिलीव मैं कर सकता हूँ। सवाल ये पड़ता है कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं और इस चीज पे मेरा इस वक्त कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है मेरा। जैसे आपने इंट्रो में कहा था, मेरी भी बहुत अच्छी जॉब है और उस फील्ड से मुझे फिर छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये मैंने नहीं कभी भी सोचा था इस चीज में आते वक्त कि मैंने अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़ना।
1: वकार, आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी को, अपने वोटर सपोर्टर को, डेनिश में, इंग्लिश में, किसी भी जुबान में आप दे सकते हैं। 2 मिनट हैं आपके पास।
0: चलो उर्दू में बोलते हैं, मैं बस यही कहूंगा कि इस दफा जो मेरा इलेक्शन था बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर वोटर्स का जिसने मुझे वोट डाला। मैं बस यही कहूंगा कि इस वक्त जो काम हमारा हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, जहाँ हम यही हमारा फोकस है कि हमारे स्कूल के बच्चे, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी हो, हमारे की वोकल स्टू की फीसें, पढ़ने की फीसें कम हो, हमारा जो एल्ता फ्लाई है उनको भी अच्छी सुलटे मिले। फॉर एग्जाम्पल उनको शावर देना होता है एक दफा हफ्ते में, ये हम थोड़ा ज्यादा करवाना चाह रहे हैं इस गर्मी में खासतौर पे, और इसके अलावा हम शहर में फ्लैट्स बनवा रहे हैं, कोई प्राइवेट्स हैं और कोई एलमिन पोली भी है। एलमिन पोली की वेटिंग लिस्ट इस वक्त है 15 साल, 4 कमरे वाले की, और वो लिस्ट मेरा फोकस है कि कम हो, तो हम बनवा रहे हैं एलमिन पूली। एंड इससे अलावा बंदा कह सकता है कि मैं छगोल हूँ, हर जिस बंदे को कोई मसला होता है, क्योंकि टेक्निक का हो गया, स्कूल का हो गया, या किसी और किस्म का हो गया कमोंगी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं उनके मसले का जो होता है ना फैसिलिटेटर बन सकता हूँ, और मैंने किया भी हुआ, करता भी हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि ये यही है काम मेरा कि पावर का इंचार्ज से हैंडल करना। सो सही है, मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आई थिंक दैट्स इट।
1: वकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
0: थैंक यू अल्लाह, तो इनविटेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका।
1: सामान नाज़रीन, ये थे वकार जो के सिटी काउंसलर हैं और मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं। बड़ी खुशी उनकी बात सुन करके, वो अपने काम को जो है एंजॉय करते हैं और बड़ी अच्छी तरह खुश होते हैं अपना काम करके, किसी की मदद करके, अपना कमेटीज़ की मीटिंग को अटेंड करके टॉप लिस्ट में उनकी हाज़िरी से आती है। तो सामे नाज़रीन, यही है, इस जमहूरी मुल्कों में इसी तरह काम किए जाते हैं और इसी तरह काम होते हैं। सामे नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने सुबह आपको इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, गर्मियों का मौसम है, धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है, तो लोग छुट्टियों पे भी जाते हैं। ज़ाहिर है बच्चों को छुट्टियां हैं और बच्चों को ज़ाहिर है यहीं कहीं स्कैंडिनेविया में लेके जाना है या यूरोप में किसी मुल्क में लेके जाना होता है, तो बाकी कोई हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जिसके लिए जो लोग पहले जाते थे छुट्टियों की प्लानिंग करते थे। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अक्सरियत जो है वो अपने अपने वतन अपने अपने मुल्कों की तरफ चल पड़ते थे। जहाँ जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट है लोग जाते हैं, जहाँ 19-20-22 घंटे का सफ़र करना हो तो फिर बहुत सारी मुश्किल आ जाती हैं। इस वक्त हमारे आपके अपने आपकी आवाज़ मलिक मुबशर हमारे साथ है। मुबशर, आपको खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया राजा साहब, आप सुनाएं ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है। लगता है आप भी कई बच्चों के साथ छुट्टियों पे गए हुए थे, धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप थी, तो आप धूप लगवाने कहाँ गए थे या ठंडे मुल्क में गए थे?
2: नहीं, वहाँ भी इसी तरह का मौसम था जी। मैं बच्चों के साथ ओस्लो नॉर्वे में था 4-5 दिन के लिए, तो कल शाम को ही वापस आया हूँ और वहाँ भी मौसम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर धूप निकली है। वहाँ पर भी तकरीबन 25-26 तक टेम्परेचर था ओस्लो में भी।
1: लेकिन ऐसा मौसम जो मौसम का लिहाज हो सकता है, तो सियासी मौसम वहाँ का कैसा था?
2: सियासी मौसम तो नहीं, वहाँ पर इस वक्त सिर्फ फुटबॉल का मौसम था, फुटबॉल का बुखार था और वो रात को उतर गया होगा क्योंकि नॉर्वे की टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में आ चुकी थी और उसकी वजह से वहां पर पूरे शहर में जो है वो स्क्रीनें लग रही थीं और फुटबॉल की टी शर्ट्स पहने लोग घूम रहे थे, आगे पीछे नारे लगा रहे थे। तो वो रात को जो मैच हुआ है उसमें नॉर्वे जो है वो इंग्लैंड से 1 गोल से हार गए। तो
1: मुबशर, हम भी जब देखते थे बड़ी शौक से देखते थे, लेकिन इन चीजों को अगर देखें तो ये तो क्लबों को बड़ा फायदा होता है जिनकी वो यूनिफॉर्म होते हैं, बच्चे खरीदते हैं घरों में, टी शर्ट्स वगैरह लेकर दी जाती हैं, निकरें लेकर दी जाती हैं, बूट्स लेकर दिए जाते हैं, तो ये तो इस डेफिनेट एक पैसे वाली गेम है और शौक की गेम है, तो शौक का तो कोई मूल होता नहीं है
2: जी राय साहब। लेकिन उसमें यह भी है ना कि वो नेशनल टीम जो है आपके मुल्क की कौमी टीम किसी भी खेल की हो, वो अगर कहीं बाहर जाके खेल रही है, किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, तो जाहिर बात है पूरे मुल्क की हमदर्दियां उनके जज्बाती वाबस्तगी जो है अपनी अपनी टीम के साथ ही होगी ना जी, उसी को वो जो है वो सपोर्ट करेंगे
1: और करना भी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जी बात
2: ऐसे ही जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें बिजनेस भी खुलता है, छोटे बिजनेस भी, दरमियाने बिजनेस भी, बड़े बिजनेस भी, उनका भी कारोबार चलता है जी।
1: तो मलिक मुबशर, आप जो हैं वो थोड़ा एयरलाइन के सिस्टम को भी समझते हैं, तो 4 साल तो हमें सुनते हो गए हैं जी, मार्च में आ रही है, अप्रैल में आ रही है, हुकूमत तब्दील होगी है, नए इलेक्शन होंगे, ये होगा वो होगा, फिर दूसरा वो कुतखाना खुल जाता है। तो लेकिन यहाँ मेरी एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहने लगे, राजा साहब आप खुद ज़िम्मेदार हैं, पावर भी रखते हैं, यहाँ लोकल तंजीमात भी हैं, लोकल सियासी पार्टियाँ भी हैं, डैनस सियासी पार्टियों में भी आपका अमल दखल है, लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं कि ये जो PIA का मसला हल करें, तो आप क्या कहेंगे? तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतनी तंजीमात होने के बावजूद, इतनी सियासी जमातें होने के बावजूद, तो हमें जो इस तरह का कोई मुतालबा सामने नहीं आ रहा।
2: तो राय साहब जिनसे भी आपने बात की थी उन्होंने जवाब तो बड़ा अच्छा दिया आप, और है भी ऐसे ही है।
1: नहीं जी, उन्होंने जवाब दिया, मैं शर्मिंदगी अभी तक महसूस कर रहा हूं।
2: बिल्कुल, तो ये देखें ना, मेरा ख्याल पेरिस से जो है वो PIA चल रही है और इसके साथ साथ इंग्लैंड और लंदन और मैनचेस्टर भी शुरू हो चुका है। तो राय साहब पवित्रता रह, शजर से उम्मीदें बहार रख, तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखें शायद यहाँ भी शुरू कर दें वो, लेकिन अब तो वो प्राइवेट हो चुकी है और उनका अपने जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं कि जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जिस रूट से ज्यादा प्रॉफिट आएगा उन्होंने वहां पर अपने जहाज चलाने हैं, नए जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, जो मीडिया की खबरें हैं उसमें कुछ बड़े नए जहाज भी खरीदे जा रहे हैं यूरोप के लिए, हो सकता है उसमें कुछ मे बी 6 महीने तक, 3 महीने तक, 1 साल तक उसमें कोई प्लान हो स्कैंडिनेविया का, लेकिन सबसे बेहतर तो PIA मैनेजमेंट ही बता सकती है ना जी, कोई भी दूसरा या तीसरा या चौथा बंदा तो नहीं बता सकता।
1: डेफिनेट, आप बताएं कि जब फुटबॉल आप देखने गए तो फुटबॉल में आपको पता है आजकल आमों का सीजन भी है, तो वहाँ कोई आमों का सीजन नजर आया आपको?
2: बिल्कुल, वहां पर आमों का सीजन बिल्कुल नजर आया था जी। मुख्तलिफ वो जो एरिया है ग्रीनलैंड, वहां पर पाकिस्तानी आमों के डब्बे जो हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे देखे गए, और वहां पर लोग पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो खरीद भी रहे थे, और मैंगो वहां भी पहुंचा हुआ है, मैंगो यहाँ भी पहुंचा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला 19 जुलाई अगले इतवार को जो है मैंगो फेस्टिवल जो है वो मुनाक़िद हो रहा है। पिछले 7-8 साल 9 साल हो गए हैं, हर साल मैंगो फेस्टिवल जो है वो हम मुनाक़िद करते हैं, तो इस बार भी इंशाल्लाह 19 जुलाई को जो है वो क्रिस्टल गार्डन हॉल जो बेलारूप में है, इस दफा हमने थोड़ा चेंज किया है कि जरा नया तजर्बा करें, इनर जो है आउटडोर की बजाय इनडोर करके देखें। तो आई
1: नहीं,
2: होप सो
1: आपका जो आपकी जो तंजीम का प्रोग्राम होता है बड़ा मनज़म होता है, लोग आते हैं और मैनेजमेंट उसकी जो है वो बिल्कुल अच्छा काम करती है, और स्टॉल भी लोग बड़े अच्छे लगाते हैं और बड़ी गहमा गहमी होती है। इस दफ़ा लगता
2: इस
1: है
2: दफा
1: कि
2: भी
1: म्यूज़िक का प्रोग्राम
2: तकरीबन
1: चूँकि वो फ्री इंटरटेन मिलती थी।
2: 45-50 के करीब स्टॉल्स हैं जी, और जिसमें खाने के भी शामिल हैं और दूसरे तमाम जो नॉन फूड है वो भी शामिल है। तो आई होप सो लोगों तक पैगाम भी पहुंचा हुआ है, लोग हमेशा की तरह आएंगे और एंजॉय करेंगे वहां पे। हाँ
1: तो पार्किंग तो वहाँ आगे पीछे बहुत होती होगी।
2: जी, पार्किंग बहुत है, मेरा ख्याल है इजी पार्क पे शायद करना पड़ता है, बाहर सड़क के ऊपर तो फ्री है, लेकिन जो उनकी अपनी जो पार्किंग है वहां पर वो इजी पार्क की ऐप से है, और सराउंडिंग की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी पार्किंग के, एक तो उस दिन संडे है और प्लस ये इंडस्ट्री फेरिया भी शुरू हो चुका है, तो पार्किंग वहां पर बेतहाशा अवेलेबल होगी।
1: तो मुबशर हमारे मौजूद सामान नाज़रीन को बताएं, आपका खुद ताल्लुक है मीडिया से, तो ज़ाहिर है बड़ा हाल है, हाल में लोग आ जाते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, बड़े स्टॉल तो गालबन बाहर कोई लगेंगे, अंदर जो स्टॉल लगेंगे तो क्या सर्दी गर्मी का कोई लाल में तो वाकई एयर कंडीशन तो लगे होते हैं,
2: जी, बिल्कुल एयर कंडीशन है उस हाल में, और वो एयर कंडीशन चलेगा भी।
1: लेकिन ये बड़ा जोर डाल के आपने कहा चलेगा भी।
2: जी, बिल्कुल चलेगा ना जी, अभी सारा इंतजाम किया हुआ है वहां पर अपने लोगों के लिए, तो वो भी बीच में शामिल है।
1: तो मुबशर, कोई आप मैसेज देना चाहें, कोई आप बात करना चाहें, चाहे कोई सियासी तब्दीलियों की बात
2: जनाब
1: करना चाहें।
2: हमेशा की तरह लोगों ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है अपना, हमारी कम्युनिटी ने। ये गालिबन हमारा 8वां या 9वां मैंगो फेस्टिवल है, तो इतना अरसा हो गया मैं करते हुए, तो इनशाला इस दफा भी उम्मीद है लोग जो है वो भरपूर तरीके से बच्चों के साथ अपने बुजुर्गों के साथ आएंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पे हर किस्म का खाना अवेलेबल होगा, और स्टॉल जो है वो डिफरेंट काइंड के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, मेहंदी के लिए, फेस पेंटिंग के लिए बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए वो हॉपे बो है वो भी अवेलेबल होगा वहां पे, यानी कि भरपूर जो है वो एक पिकनिक का समा वहां पर जो है अपने लोगों के लिए वहां पर मौजूद होगा जी। तो आई होप सो लोग आएंगे वहां
1: तो
2: पे,
1: ये तो फिर एक लग रहा है
2: सबसे
1: जिस
2: बढ़कर
1: तरह,
2: मैंगो वहां पर होगा जी, सबसे बढ़कर मैंगो वहां पर होगा जी।
1: नहीं मैंगो वाफर मकदार में होगा या बाद में ऐलान हो जाएगा खत्म हो गया है?
2: सब हम हर साल जो है ना जी पहले से ज्यादा मंगवाते हैं और हमेशा खत्म हो जाता है, तो इस दफा भी पिछली दफा जितना था उससे तकरीबन 30-40% ज्यादा है, तो आई होप सो उम्मीद है
1: तो
2: पूरा हो
1: इनकी
2: जाएगा।
1: किस्में बता दें किस किस्म का होगा?
2: ये इस वक्त जो है जी सबसे बेहतरीन चौसा जो मार्केट में आया है वो आ रहा है, और उसके साथ साथ लंगड़ा जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा लंगड़े का भी बीच में है, लंगड़ा मैंगो जो है, लेकिन चौसा जो है वो तकरीबन 90% चौसा ही है।
1: 90% चौसा है। तो पैकिंग पैकिंग किस किस क्वालिटी में होगी?
2: पैकिंग जो है नॉर्मल पैकिंग, वो जो छोटा डब्बा है जिसमें 3 या 4 मैंगो होते हैं, और वो गालिबन 2-2 या 3-3 डब्बों की पैकिंग होगी। अभी तक प्राइस का हमें नहीं पता, क्योंकि ये दोबारा से गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया है पेट्रोल डीजल, तो उसमें वो एविएशन का फ्यूल भी बढ़ा, तो उसमें अभी अब देखें प्राइस कितनी आती है, लेकिन वो अभी 4-5 दिन तक फाइनल हो जाएगी।
1: मुबशर, चूंकि आप एक जिम्मेदार हैं, हम आज आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस दफा लोगों का आपने ख्याल रखना है, थोड़ी सी प्राइस का भी ख्याल रखना है।
2: ना प्राइस का ख्याल हम हमेशा रखते हैं, और मार्केट से हमेशा कम होती है प्राइस, इसमें तो कोई वो दूसरी राय है ही नहीं, और ना ही कोई बंदा ये कह सकता है कि पिछले 8 साल में कि जी मार्केट के ज्यादा तो नहीं, बराबर भी नहीं, हमेशा मार्केट से प्राइस हमेशा 8 से 10 करोड़ पर डब्बा कम ही होती है, क्योंकि हमें जिस रेट पर आता है उसी रेट पर हम आगे देते हैं।
1: बशर, आखिर में आप कुछ कहना चाहें अपने सामान्य नाजरीन से, बड़े अरसे के बाद आप आए हैं।
2: खुश रहें और मौसम को एंजॉय करें, अपने फैमिली को भरपूर टाइम दें, और जितने भी मेले हो रहे हैं वो सब में जाएं, सब हमारे अपने हैं और अपने ही लोग हैं, अपनी ही कम्युनिटी है, सब में जाएं, सब में एंजॉय करें आप जाकर, और बस खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।
1: दूसरों को खुश रखें और खुश रहें।
2: जी हाँ बिल्कुल।
1: मुबशर आपका बहुत शुक्रिया। जरा एक बार आखिर में एड्रेस बता दें।
2: जी हाँ, ये एड्रेस है जी, क्रिस्टल गार्डन, टेम्पो वाय नंबर 35, बेलारूप, जो शादी हाल है जिसका पुराना नाम इंची था और नया नाम उसका क्रिस्टल गार्डन है, और वहां पर जो है 19 जुलाई को इंशाल्लाह 11-12 बजे जो है ये शुरू होगा, और रात 9 बजे तक जो है इसका टाइम है।
1: आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह रहा रहेगा।
2: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाजरीन, ये थे आपके अपने मलिक मुबशर, जो कि आपकी आवाज़ आपको बता रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी, जो इस प्राइस पे हमें मिलता है उसी प्राइस पे हम बेचते हैं, तो लिहाजा हमारा मार्केट से जो है हमेशा रेट जो है वो एक कम होता है। तो सामिन नाजरीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: सामिन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो कि अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बरास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। समय हमने आपको बताया था, अपने इंट्रो में भी बताया था, इससे पहले भी बताया था कि आज जो हमारे मेहमान होंगे बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जो किसी तारफ के मताज नहीं, मिनिस्टर्स वाइस चेयरपर्सन भी हैं पंजाब ओपीसी के, और इसके अलावा मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपको बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के मुतालिक। बैरिस्टर साहब जो हैं वो बरतानवी वकला तंजीम एसोसिएशन के पाकिस्तानी लाज के चेयरमैन भी हैं, बरतानिया में इंसानी हकूक का सन 2000 का बेहतरीन वकील का अवार्ड भी रखते हैं। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाकिस्तान के तायात मेंबर भी हैं। अमजद मलिक साहब बरतानिया में पाकिस्तान की आवाज़ भी हैं, वो दो किताबों के मुसन्नफ भी हैं। पाकिस्तान और बरतानिया में इंसानी हकूक शख्सी आज़ादी के ऊपर इनके आर्टिकल मकामी और पाकिस्तानी अखबारात में छपते रहते हैं। वो पाकिस्तान में ओवरसीज मिनिस्ट्री के जैली इदारे में 2 साल 2016-2018 तक ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर भी रहे हैं। इन्होंने अपने दौर में दूर रास इसलाहत की बुनियाद भी रखी। वो बरतानिया में 20 साल से अपनी वकला फर्म अमजद सालिस्टर चला रहे हैं, जिसने बहुत सारे मशहूर मुकदमात में साइलिन की मदद की ताकि इंसाफ की राह हमवार हो सके और दाद रसी मुमकिन भी हो सके। 22 जून 2021 को मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अमजद मलिक को चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तानी तैनात किया था, और 2023 से वो सीनियर नायब सदर इंटरनेशनल अफेयर खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। वो मंशूर कमेटी के मेंबर भी हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब 2024 से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब के फराज भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मलिक साहब ने बहुत सारी बातें जो हैं वो हमसे करते रहते हैं। जब भी हम इनको फोन करते हैं वो अपनी गोना गो मसरूफियात से टाइम भी निकालते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं और हमारी बात भी सुनते हैं, और हम खुलकर इनसे बातचीत भी करते हैं। कोई लकी लिपटी बात ये भी नहीं करते और हम भी नहीं करते। तो समझ अपने सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत सारे आज से इनसे सवालात कर रहे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको अपने अदारा पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, आपकी जरा नवाजी है और बड़ा आपके खलूस की मैं दिल से कदर करता हूँ। आप यूरोप में पाकिस्तानियों की आवाज हैं, और जब भी आपसे मौका मिलता है कोशिश हम करते हैं कि नोट्स एक्सचेंज करें, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम एक दूसरे को आगाह करें, ताकि वाइडर पब्लिक को आगे ही हो कि हम उनकी फलाह के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और क्या जो है हमारी रीच में होना चाहिए कि हम उसके लिए तगोदो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब।
1: मल साहब, आपने हमेशा जरा नवाजी की है तो मैं थोड़ी सी आज बात करना चाह रहा हूँ। आजकल आप सोशल मीडिया पर टिक टॉप ऑफ टाउन हैं, आपका सोशल मीडिया के कानून बारे क्या ख्याल है, ईरान और अमेरिका जंग बातचीत या इसलाहत?
2: देखिये, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो अगर मुनासिब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके जो बयानिया है उसको बहुत दूर तक ले जा सकता है। पिछले सालों में अब इसके ऊपर गालम गलोच में कमी वाकया हुई है। उसकी वजह यह है कि इफेक्टिव जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, नहीं तो पहले तो पगड़ी उछालना और ये वो सारा बड़ा रूटीन बन गया था। और मेरा ख्याल हुकूमत ने भी, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कोशिश की है कि इसको आज़ादी रहे भी, लेकिन पीटीए के जरिए कदगन भी लगे जहां, और फिर साइबर क्राइम यूनिट ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया। लेकिन मेरे ख्याल में आज़ादी रहनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप जो राय इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका वाला जो मामले के ऊपर आपने बात की है वो सोशल मीडिया से हटके है। मेरे ख्याल में इस खत्ते में ईरान बड़ा मुल्क है, और जिस तरह अमेरिका बार बार रिटेलिएट उसके साथ कर रहा है वो खत्ते के मफाद में नहीं है, आलमी अमन के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि उनको टेबल टॉक पे लेके आया है, किसी मुआदे के नज़दीक तर लेके आया है, और कोई अग्रीड टर्म्स कर भी ली हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर हमलाबाजी रुकेगी नहीं तो ये देरपा अमन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अमरीका बड़ा मुल्क है, उसके इस खत्ते में इंटरेस्ट हैं। ईरान लोकल इस रीजन का बहुत बड़ा मुल्क है, तेल की पैदावार करने में और फिर उसकी तरसील में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसके पास, تو میرے خیال میں ایسے ملک کے ساتھ پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے اگر حل نکال لیا جائے تو بہتر ہے. جتنی زیادہ آنکھیں دکھائیں گے اتنا زیادہ دیوار پہ لگانے کی کوشش کریں گے تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا, جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایران اپنے برادرانہ ملکوں کے پاس جہاں امریکن اڈے ہیں ان کو وہاں پہ ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا, جو ان ریٹرن کسی بڑی جنگ کا جو ہے وہ موجب بن سکتا ہے. اور میرے خیال میں تمام ہی لوگوں کو, بڑے کنٹریز کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے, یو این کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, لیکن امریکہ کو بڑا پن دکھانا چاہیے. اور اگر امن حاصل ہوتا ہے تو اس کو کمزوری نہیں بنانا چاہیے اور امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے.
1: امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے, بڑی اچھی بات کی. مل صاحب, اسی طرح پانی جو ہے وہ ضرورت ہے یا ہتھیار بھارت کو کیا کہیں گے؟ انڈس واٹر ٹیریٹری جو پانی پر ایک اور جنگ یا معاہدہ عمل ہو سکتا ہے؟
2: رائے صاحب, یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم بہت زیادہ ایک دوسرے پولرائزیشن میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ملکی سلامتی اور نیشنل انٹرسٹ بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے 9 مئی کو پچھلے سال بھارت کو ان کے حملے کے جواب میں شکست سے دوچار کیا, ان کے طیارے گرائے, ان کا ڈیفینس سسٹم تباہ کیا, ان کے ڈرون ہمارے لوگوں نے باہر شارٹ گن لے کے آگے نکل آئے جب وہ حملے کر رہے تھے ہمارے اوپر. تو قوم نے اپنی سپا اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بھارت کو سبق سکھایا. لیکن آپ یاد رکھیں, بھارت ایک ہم سے 4-5 گنا بڑا ملک ہے, عددی عسکری اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے, تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. اس لیے ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اب اس نے ایک پہلے ہی اعلان کیا کہ میں سندھ طاس معاہدے سے مکر جاؤں گا, میں پانی روکوں گا پاکستان کا, اور میں ان دریاؤں کے اوپر ڈیم بناؤں گا جو دریا جن کا بہاؤ پاکستان کی طرف ہے. تو یہ الٹیمیٹلی, اور ابھی جو کشمیر میں ان کا رول ہے, ابھی جو طالبان پرو طالبان جو رجیم ہے وہاں سے پیچھے سے جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بھارت چپ کر کے نہیں بیٹھے گا اور پاکستان کو اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا کام کرتا رہے گا. ایسے میں ہمیں اس کے پانی کے اس استعمال کو ہتھیار نہیں بننے دینا چاہیے اور اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے. ابھی وہ ہمارے کشمیر الیکشن کو بھی بنا کے بہانہ, کشمیر ہماری اور کشمیری قوم کے درمیان میں وہ درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں سے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. پانی بالکل بھارت ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے, اور اگر سندھ طاس معاہدہ جو بروکرڈ بائی ورلڈ بینک ہے, اگر اس سے بھارت نکل گیا اور ہم نے نکلنے دیا تو الٹیمیٹلی پانی کے اوپر جنگ کا موجب بنے گا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عالمی رائے ہموار کریں, اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے ایم پیز اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو یہ باور کروائیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ورلڈ بینک اور باقی لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے پورا زور لگائیں کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہ سکیں. کیونکہ اگر اس طرح معاہدے سے لوگ نکلنے لگ گئے تو کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ معاہدہ جو ہے اس کی اہمیت نہیں رہے گی. اور اس میں سیکورٹی کاؤنسل کا بھی بڑا رول ہے, جو آربیٹریشن کورٹس ہیں انہوں نے ایک دو فیصلے دیے ہیں جو پاکستان کے حق میں شنید سناتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان جنگ کے بغیر اس معاملے کو حل کرے, اور اس میں عالمی رائے عامہ کا اور عالمی اقوام عالم کا بہت رول ہوگا.
1: ملک صاحب, پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے اچھی بات کرنے کی, دوستی کی بات کی ہے, لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ چونکہ مسلم لیگ کو ایڈ کر رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون آئرلینڈ کی جو لیڈرشپ میں اچانک تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ کیا جلدی میں ایسا فیصلہ لینا چاہیے تھا؟ آپ ڈار صاحب کے اس فیصلے سے متفق اور نئی قیادت سے مطمئن ہیں؟ مسلم لیگ ڈنمارک کی میں بات کروں گا, مسلم لیگ ڈنمارک ناروے اور سویڈن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: مسلم لیگ نون ڈنمارک اور ناروے اور سویڈن چیپٹر چل رہے ہیں, ایک دو جگہ ہیں جو ایشوز کوشش کر رہے ہیں ریزالو ہوں, لیکن کوشش کریں گے کہ اپنا اپنا چیپٹر جو دو دو سال پورا کرتا جائے گا تب ہی نئی تنظیم لگائے. शाहिद साहब की क्यादत में नॉर्वे अच्छा काम कर रहा है, स्वीडन में सईद शेख साहब और डेनमार्क में आफ्ताब रूमी साहब सदर हैं, तो कोशिश करेंगे जब अपना वो वक्त पूरा करें तो लोकल जो मकामी हमारी सपोर्ट बेस है उनके साथ मशवरे के साथ नई टीम जो है प्रपोज की जाए। आयरलैंड वाला एक टेक्निकल इशू है, वहाँ पे हमारे जो सदर थे वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं, और आजकल आपको पता है कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं तो उनकी थोड़ा प्रोग्राम्स की वजह से काफ़ी शिकायत उनको आई इसहाक डार साहब को, और उन्होंने उनकी मुद्दत क्योंकि 4.5 साल हो गई थी तो एक नई फ्रेश टीम दी है आयरलैंड में, और साजिद रसूल साहब को सदारत मिली है, उनके साथ नासर खान साहब, ताहिर रशीद साहब और चौरी सुहेल साहब मेलो उनको लगाया गया, पुराने ही लोग हैं जो आगे लेके आए गए हैं। कोशिश करेंगे कि वो मिलके आयरलैंड में पाकिस्तानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चैप्टर को आगे लेके बढ़े और उनके प्रोग्राम को जो मेन स्ट्रीम आयरलैंड में लीडरशिप है उससे अलग किया गया ताकि वो अपना प्रोग्राम आज़ादी से कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जब आप अपनी आज़ादी राय का इस्तेमाल करें तो किसी भी कम्युनिटी रंग नस्ल जात को निशाना मत बनाएं, उसका नुकसान फिर ये निकलता है कि वो शिकायत पीछे आती हैं कि आया ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाना, तो मेरे ख्याल ये वजह बना है। लेकिन जो भी क्यादत फैसला करे उसको मंजूर करना चाहिए, और उन्होंने 2 साल की मुद्दत थी, 4.5 साल पूरे किए हैं तो आगे भी मौका मिलता है अगर आप साथ चलें क्यादत के फैसले को माने और आगे चलें तो आगे भी चांस बनता है, और पैवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख।
1: मलिक साहब अच्छा किया आपने जवाब दे दिया, इस पर लोग हमसे पूछते भी थे तो मैंने आपसे सवाल कर लिया, बराह रास्त सवाल किया। तो मलिक साहब डेनमार्क में मलिक सिकंदर सिद्दीक को सितारा इम्तियाज मिला तो उसकी मुबारकबाद का इंतजार है?
2: नहीं नहीं, सिकंदर मलिक साहब हमारे भाई हैं, हमारे बहुत ही कोना मश्क हमारे लीडर थे सिद्दीक साहब, ये उनके बेटे हैं, लोकल पॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन सिकंदर साहब और उनके वाले साहब की मुस्लिम लीग में उनके लिए बहुत खिदमात हैं। सितारा इम्तियाज मिलना पूरी कम्युनिटी के लिए फख्र है, आपके आपसी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन सितारा इम्तियाज आपकी कम्युनिटी में से एक एक्स मेंबर पार्लियामेंट को मिलना ये पूरी कम्युनिटी के लिए बायस फख्र है। मैं ओपन हार्टेडली मुबारकबाद देता हूँ और तमाम लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि वो उनको मुबारकबाद भी दें और उनके साथ इस खुशी को शेयर करें। ये एक रेयर ऑनर है जिसमें आपके सफारत खाने का आपकी कम्युनिटी का किरदार होता है और यूं ही नहीं मिल जाती डेकोरेशन। हमारे यहाँ बरतानिया में भी जो किंग है वो साल में सैकड़ों लोगों को MBE अवार्ड करता है, नेशनल डेकोरेशन दी जाती है, और ये आपकी खिदमात का एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो आप ओवर द ईयर्स कम्युनिटी को फराहम करते हैं। मेरी तरफ से आपको भी, सिकंदर साहब को भी, आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और उम्मीद है कि आपकी कम्युनिटी में से जो अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उनको भी कंसिडर किया जाएगा और सफारत खाना आप जैसे लोगों को एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि डेनमार्क नॉर्वे एंड स्वीडन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर पाकिस्तान, तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा जिनके लिटरेचर के लिए, मीडिया के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात
1: है। मलिक साहब यूरोप में जो है और कौन से फैसले जो है मुतवक्को है?
2: यूरोप में हम एक्टिवली देख रहे हैं जी, तुर्की है जो ड्यू है, ग्रीस है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये एक्टिवली इसको देख रहे हैं, ये ओदे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो डार साहब जो है इसके ऊपर मीटिंग कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो फैसला होगा उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। लेकिन ये 4 मुल्क सरदस्त जो हैं वो लिस्ट में हैं जो यूरोप में रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डार साहब के फैसले के इंतजार में।
1: मलिक साहब

0: मैडम बट हैं जो दुबई से हैं, अमेरिका से जो है वो एक मेंबर बोर्ड है। तो ये काफी आपके लिए, कामरान खान साहब हैं बट्टी साहब के ब्रदर इन लॉ, तो ये आपके लिए एक नए 8-10 चेहरे ओवरसीज की खिदमात के लिए फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। कन्वेंशन वर्कर मुनक्कद करवा के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जी उन वो काम करना चाहते हैं, और 16-17 रुकन नुकाती प्राइम मिनिस्टर का ऐलान जिसके मुताबिक ओवरसीज को मराहत मिली। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ग्लास हाफ फुल की निशानी है। ओपीसी पंजाब में आपको मेरी सूरत में एक ओवरसीज पाकिस्तानी दिया है जो आपका नुमाइंदा है, आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, और हम जदीद बुनियादों पे पोर्टल को, ओवरसीज सेंटर को, फैसिलिटेशन डेस्क को, 41 जिलों में ओवरसीज अदालतों के जरिए हम नई सलाहत लेके आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पहिया मजीद घूमेगा, आपको ओवरसीज के डेस्क एयरपोर्ट पे मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये अदालतें आहिस्ता आहिस्ता आपकी गवाहियां डेनमार्क से बैठ के आप एम्बेसी से अदालतों से रजू कर सकेंगे, और ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन है वो कंप्यूटराइज हो रही है, उससे आप यहाँ बैठे डेनमार्क से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकेंगे, बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे, जो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होता था जिसमें काफी फ्रॉड होता था, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैप करें और पंजाब के लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए उसका जो है हल निकाल।
1: मलिक साहब, हुकूमत में शफल की खबरें चल रही हैं, कहाँ तब्दीली आप देख रहे हैं और कहाँ उम्मीद रखनी चाहिए? इसके अलावा आपने लैंड रजिस्ट्री की बात की, तो इस पर बहुत सारी बातें रिश्वत की भी चलती रहती हैं।
0: लैंड रजिस्ट्री में आपको जब कंप्यूटराइज लैंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो तो आप रसीद जमा करवाएंगे बैंक में, और अपनी रजिस्ट्री जो रजिस्ट्रार आपका कॉन्सुलेट है ये रजिस्ट्रार बन जाएगा, तो आपको रिश्वत वाला तो मामला ही निकल जाएगा ना जी, आप पैसे देंगे बैंक में और अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे। जहां तक शफल की बात है, ये कोअलिशन गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातों का मंबा बन के कोअलिशन गवर्नमेंट है, और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के वजीर भी हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी हैं। अब तक तो जंग जीतने के बाद पैर अच्छा काम कर रहा है, आप सालिस बने हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में, ये बहुत बड़ा ऑनर है, आपको यूएसए का प्रेसिडेंट नाम से जानता है, आपके मुल्क की ये बहुत बड़ी इज्जत है कि वो जनरल आसिम मनीर और शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और डेप्टी वजीर आजम सागदार साहब को जानते हैं, मिलते हैं, बैनुल अक्वामी दुनिया में वजीर और जो वजीर आजम हैं वो आपके जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे राबते में हैं, तो ये आपके लिए खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। अब इसको आप ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक रिवाइवल में तो ये पाकिस्तान मजीद आगे तरक्की कर सकता है, और ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानी जो $41 बिलियन सालाना भेज रहे हैं वो आपको कुमक फराहम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से अच्छा वजीर आजम अंडर द सर्कमस्टेंसेज नहीं मिल सकता, और उनसे काम चलाना चाहिए, वो एक बेहतरीन मुंतजम है। जो भी तब्दीली आए नए इलेक्शन के बाद ही आनी चाहिए, लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त जो इंटरनेशनल दुनिया में ऑरा बना है उसको मुल्की मुफाद में इस्तेमाल करना चाहिए, छोटे मोटे वजीर चेंज होते रहते हैं वो तो कोई
1: मलिक
0: इशू नहीं।
1: साहब, इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, टाइम पर हो जाते हैं, तो आप क्या तैयारियां देख रहे हैं अगले इलेक्शन की?
0: देखिए अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में है पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खात्मा करके ऑपोजिशन के साथ प्रॉपर कोई एसओपी तैयार करना है जिसके तहत जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर, उसकी साख के ऊपर उंगली ना उठे, तो उसमें गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन का बड़ा रोल होगा कि वो 6 महीने साल पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और वो जो इस्लाहात चाहिए, वो जो कैवियट, जो गारंटीज चाहिए उनको इंश्योर करें, ताकि ये बखेड़ा जो है ये वंस फॉर ऑल खत्म हो जाना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कहाँ होती है, क्यों होती है, जो तकद्दस है बैलेट का वो बरकरार रहना चाहिए, और जो अवाम जिसको वोट देते हैं उसकी सेंक्ट्री सेंक्टिटी जो है वो महफूज रहनी चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दोनों का ही किरदार है, और एस्टेब्लिशमेंट को एज अ फैसिलिटेटर किरदार अदा करना चाहिए, और पॉलिटिकल फॉर्मूले के तहत अगले इलेक्शन से पहले ये चीजें हो जानी चाहिए।

0: ताकि ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, या जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तब भी इस तरह की जो है वो जो शिकायत निकली थी जो अदालतों ने सुनी ही नहीं, दो दो ढाई ढाई साल। तो ये पहले हल हो जाना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स बा इख्तियार हों, आपकी जो अर्जियां जल्दी सुनी जाएं, आपके जो बैलेट है वो ठीक हो, आपने कैसे वोट डालना है। ये फिर तजर्बे जो है लास्ट मिनट नहीं होने चाहिए। आपका आरटीएस फेल हो जाता है, क्यों हो जाता है, 61 अरब लगा के भी आरटीएस फेल हो जाता है तो फिर इतने पैसे लगाने का क्या फायदा। आप ये चीजें पहले तय करें ताकि इलेक्शन से पहले ये चीजें और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, एक अच्छा फेयर इलेक्शन हो और आवाम जिसको मुंतखब करें उनको हुकूमत करने का मौका मिले।
1: मलिक साहब, ओवरसीज सेल, ओवरसीज अदालतें, मजीद क्या मुतवक्को है?
0: देखिए मेरे ख्याल में हम ये ओवरसीज में अभी भी कश्मीर के इलेक्शन की वजह से काफी आ, आ, काफी जो है वो हालात यूके यूरोप में कशीदा हैं, और जो ऑपोजिशन है उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल को रोका नहीं है मुल्क के खिलाफ। जहां भी उनको मौका मिला है, चाहे IMF है, चाहे GSP+ है, चाहे पैसों का भेजना है बैंकों के जरिए, उसमें ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को एज अ रियासत नुकसान पहुंचे। उनके जो यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क से भाग के आए हैं वो सुबह शाम मोनेटाइज जो है अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं मुल्क के खिलाफ, जो है सारा दिन वो जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी तरीके से मुल्क को कमजोर किया जाए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में वो जो एवलांच है, जो मंशूर में हमने 16 नुकात दिए थे उसमें से कुछ चीजें अभी तक आगे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल हम असम्बलियों में 10 सीटों की बात कर रहे थे मंशूर में, यहाँ दोहरी शहरियत खत्म होने की बात हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि ऑपोजिशन ने जो रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला काम है उसको नहीं रोका। इमरान खान को सपोर्ट करना और बात है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना और बात है। भारत के साथ जंग में भी जो लोग हैं उनकी फौज को सियालकोट में लेके आ गए थे, कराची के ऊपर कब्जा हो गया था। तो ये जो रोल है या ऐसे जो लोग जो फौज से भागे हुए हैं या फौज में उनका कोई रोल नहीं है, वो भी म्यूटनी डालने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से ये हमारी जो पेशरफ्त है कि पार्लियामान में ओवरसीज की सीटें हों उसके ऊपर मजामत हुई है और वो रुकी है बात। अदरवाइज अब तक लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए थी, ये काम अभी रहता है। दूसरा ये अदालतों वाला भी, ओवरसीज वाला भी जो है, जो आपके जो अदालतें जो हैं वो आपके शहर से सफारतखानों के जरिए आपकी गवाही डालेंगे, वो काम भी अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। अदालतें लग गई हैं, जज लग गए हैं, होटल के जरिए आपको अदालत में पेश करवाना है, उसके ऊपर पेशरफ्त अभी रुकी हुई है। कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन अभी होना था वो रुका हुआ है, वो मेरे ख्याल में विद इन 6 मंथ्स या इंशाल्लाह ताला अगले साल समर तक हो जाएगा, जिसमें पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा कि कितने इकदाम का ऐलान किया था वजीर आजम साहब ने और कितने इकदाम के ऊपर अमल हुआ है। और तीसरा ये जो पूरी दुनिया में एंटी जो ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ एक आवाज बनी है, ग्रीस में कश्तियां उलटने के बाद पाकिस्तान में स्मगलर्स के ऊपर हाथ डाला है, उसकी जगह लेने के लिए स्किल्स इंस्टीट्यूट्स का क्याम अमल में लाया गया है और उसके जरिए वो इसी को रिवैम्प किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान लीगल चैनल से बैन अल-अक्वामी दुनिया में लोगों को भेजे। तो वो एक अच्छी चीज है जो अगर आगे बढ़ के आपकी नर्सेज, डॉक्टर्स, आपके हुनरमंद अफराद को मुल्क से बाहर भेज सकती है, जो कि मेरे ख्याल में अगर आगे चल के ये बेहतर किरदार अदा कर सकती है। और मुल्क में सरमाया लाना उसके लिए ग्वादर हो, GSP+ हो, या पाक चाइना जो है कॉरिडोर हो, उसमें सरमायाकारी के मौकों के ऊपर मेरे ख्याल में SIFC भी काम कर रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम कर रहा है, इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है। हम सालस रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, और अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं विद सऊदी अरेबिया, तो इसकी ट्रांसलेट भी होना चाहिए। पाकिस्तान का कर्जा माफ होना चाहिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर मौके होने चाहिए ताकि ये लोग मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में सरमायाकारी कर सकें, अपने मुल्क में जो है सरमायाकारी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। ये वो चीजें जो है अभी रहती हैं, जो चीजें हुई हैं कन्वेंशन के मुताबिक वो मैंने आपको बयान कर दी।
1: मलिक साहब पंजाब की बड़ी पावरफुल खातून हैं, लेडी हैं, बड़ी मजबूत उनका बैकग्राउंड है, मरियम नवाज साहिबा, आप उनकी हुकूमत या उनके मतलब आप उनके कारनामों के मतलब आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? वो अरबों रुपए के बजट दे रही है MPs को और एक्टिव रोल अदा करती हैं, लेकिन आगे ईमानदारी जो है वो आगे जब पैसा दिया जाता है तो पैसा तो खजाने से निकल जाता है, MPs को मिल जाता है या MNAs को भी जो मिलता है, पार्टियों को भी मिलता है, तो वो ईमानदारी कहाँ से लाएंगे?
0: देखिए आप ये आप समझे कि जिन हालात में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वजारत आला संभाली थी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं था। वहाँ पे स्कैंडल्स थे, भर्तियों पे स्कैंडल थे, अपॉइंटमेंट्स पे स्कैंडल थे, और आपने देखा ही है कि पता ही नहीं था कि वजीर आला काम किस तरह कर रहे थे। बुजदार साहब शरीफ आदमी हैं लेकिन जिस तरह की कॉम्पिटेंसी पंजाब को चलाने के लिए चाहिए थी वो उनमें नहीं थी, और उसको रिप्लेस करके उन्होंने एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड में आप देख लें चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के IG ने और FIA ने मिलके एक संभाला दिया है। दूसरा उन्होंने अमन व अमान पैदा किया है, वो जो बेरा रवि थी वो जो बिल्कुल लॉलेसनेस थी उसका खात्मा किया है। तीसरा उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आप आम हालात में इस तरह के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट नहीं कर सकते। साफ सुथरा पंजाब है, आपने हर जिले में सफाई की है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट लेके आए हैं, आप बच्चों के लिए खवातीन के लिए बाइक्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप फिर अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं, पुलिस स्टेशन पुलिस थाने बनाए हैं, आपने एयर एम्बुलेंस लेके आए हैं, और आपने किसानों के लिए कार्ड निकाला है, बेवाओं के लिए कार्ड निकाला है, यतीमों के लिए कार्ड निकाला है। तो ये कोई आसान काम नहीं है इस तरह के दूरस असरात के अमल इश्यूज को करना। मरियम नवाज शरीफ हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद दी जाती के उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे टीम है उन्होंने करप्शन ब्राइबरी और इस तरह का खात्मा करने में मदद की है। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, अरबों खरबों के यहाँ बजट हैं, चीजें हैं, कई लोग होंगे जो इस सूरत हाल से या अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे, उठा लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यह कि पकड़े जाएंगे, क्योंकि या जब लीडरशिप ये कह दे कि जी हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे और अगर किसी का मैलफियसेंस में पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया तो बचेगा नहीं। तो देखना ये है कि अगर पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया क्या उसकी फिर पुष्ट पनाही होती है या उसको कटहरे में लाया जाता है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगी और वो लोग बच नहीं सकेंगे, फिर अपनी नौकरियों से जाएंगे। अब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जहां के ऊपर पब्लिक पर्स में खयानत का अमल आया वहां पे फिर वो अपनी जॉब से जाएंगे। तो ये मुझे यकीन है कि मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ेंगी।
1: मल साहब ओवरसीज के क्या इश्यूज पेंडिंग हैं, मंशूर मुतालबात और लोगों की आरा देखते हुए?
0: देखिए राज साहब बहुत सारे इश्यूज हैं। यूरोप यूके अमेरिका के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, हमारी जो जहां दोहरी शहरियत नहीं है वहां दोहरी शहरियत लाना है, स्पेन उसमें शामिल है, जहां दोहरी शहरियत है ही नहीं और वहां POC कार्ड होता था वो POC कार्ड बनाने में आजकल बड़ी देर लग रही है, एयरपोर्ट में इमेज का इशू है, वहां पे एयरपोर्ट सेल्स बेहतर होने चाहिए, आजकल डिजिटल का जमाना है, अब तो फोन पे सारा कुछ होता है, एयरपोर्ट पे ही होना चाहिए निजाम अगर कोई मसला पड़ता है, यानी कार्ड रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल, ये सारी चीजें एयरपोर्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि अगर कोई बंदा वहां पे काम करता है, ग्रीन जोन बेहतर कर देने चाहिए। अब तो स्कैनर्स का जमाना है, या स्कैनर लगाएं और आप अपनी जो जो आता है सामान बैगेज उसको क्लियर कर लें। अब स्कैनर बता देते हैं इस चीज इसमें क्या चीजें, अब आप खोल खोल सामान जो है वो लोगों को तंग करते हैं वहां, फिर रिश्वत सतानी होती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, लोग इमेज को इसके साथ रिलेट करते हैं, या पढ़ने वाले ग्रेजुएट या ए लेवल करने वाले बच्चे जब पाकिस्तान जाते हैं और उनका बैग खोला जाता है और वहां रिश्वत देनी पड़ती है, वो एक बैड इमेज लेके पाकिस्तान से वापस आते हैं। और फिर पाकिस्तान में जाने वालों से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को लेके अपने गांव में ही ना घुस जाएं, उनको दिखाएं मुल्क में जहां तरक्की हो रही है, आप कश्मीर से हैं तो मुजफ्फराबाद लेके जाएं, इस्लामाबाद लेके जाएं, आप लाहौर में हैं तो अपना लाहौर की सैर करवाएं, या इर्दो गिर्द नवा से हैं तो अपना मेन कराची से हैं तो कराची शहर। ये ना हो कि ये बच्चे जाके सिर्फ वही इमेज देख के आए जो आपके गांव का है, और उसका नुकसान ये है कि वो आके एक बेहतर इमेज नहीं लेके आते, और वो फिर बच्चे जब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं तो वो मोरक्को, तुनिसिया, तुर्की भागते हैं, वो अपने मुल्क जाने को प्रेफर नहीं करते। तो आप अपने मुल्क का बेहतर जो है वो तशख्स पेश करें ताकि बच्चे पुट ऑफ ना हो।
1: मलिक साहब, बाज़ लोग आपको मुकम्मल तौर पर लाहौर देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है?
0: मुकम्मल तौर पर लाहौर ही हूँ, ये डिजिटल का जमाना है आजकल, फोन अभी हम, मैं अगर आप कहें कि जी डेनमार्क आगे ही प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे, तो शायद हम एक भी ना कर पाते। तो मैं तो तकरीबन एवरी अदर 6 मंथ्स आपके साथ प्रोग्राम में पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। तो ये डिजिटल का जमाना है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को लेना चाहते हैं जॉब के लिए तो आना जाना रहेगा। मेरी फैमिली यहाँ है तो मुझे आना पड़ता है, मेरा एक चलता चलाता दफ्तर है 20 साल से, मेरे क्लाइंट्स हैं 5,000 से ज्यादा, तो उनको सर्विस देनी पड़ती है। और ये एक वॉलंटरी जॉब है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चेयरमैन का वहां होना जरूरी है, कमिश्नर का वहां होना 24 घंटे जरूरी है, वाइस चेयरमैन तो एक अलामती ऑनरेरी पोजीशन है, ये तनख्वाहदार पोजीशन नहीं है। तो हम अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना वॉलंटरीली कर सकते हैं, और उस सिलसिले में फिर रोजगार भी चलता रहता है जिससे हम जो खर्चा होता है उसको सर्विस करते हैं अपने दफ्तर से। तो एक अच्छा निजाम चल रहा है, जहां जरूरत होगी, आजकल तो PIA की फ्लाइट चल गई है मैनचेस्टर से लाहौर, मैडम को जब जरूरत होती है तो हम जो है विद इन 10-15 आवर्स लाहौर मौजूद होते हैं, और मैं खुली कचहरी करता हूँ हर महीने के आखिर पे। तो ये साहिलीन के लिए एक मौका होता है कि जिनके मामला रुके हुए हैं तो वो उस खुली कचहरी में आते हैं और बताते हैं, और वहां पे मौका पर अफसरान मौजूद होते हैं और हम मौका पर अहकाम लेते हैं ताकि उनकी दादरसी हो सके। वैसे भी जब मैं वहां जाता हूँ वहां मेला लगा रहता है, और यहाँ दफ्तर में भी 4 से 6, 1 से 2, सैटरडे का पूरा दिन, आज देखें पूरा दिन आपके साथ लग जाएगा, तो सैटरडे का पूरा दिन काम करता हूँ। तो ओवरसीज के लोग, उनके साथ एक्सेस है, और जो भी उनके जुमला मामला होते हैं उनकी हमारे साथ डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ 24 घंटे रहा रहता है। और कुल वक्ती कमिश्नर जो है वो OPC में मौजूद है, जो 21 ग्रेड का मुलाजम है, तो वो भी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं।
1: मलिक साहब, बड़ा अच्छा किया आपने वजाहत कर दी कि लोग तो समझते थे जिस तरह ये अमेरिका वार को किस तरह देखते हैं, इसी तरह शायद लगता है ऐसे था कि आपको भी कोई करोड़ों के हिसाब से महीने के पैसे मिलते हैं।
0: नहीं, ये वॉलंटरी जॉब है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, बल्कि इसके कोई पर्क्स प्रिविलेजेस भी नहीं है, और वो तो मरियम साहबा की मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर का दर्जा दिया हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लैग कार दी है तो ड्राइवर है साथ, लेकिन उसमें कोई पैकेज नहीं है जो, यानी तनख्वाह तो खुद ही होती वाइस चेयरमैन।
1: मलिक साहब, चलें इस पर बात आगे बढ़ते हैं, सवाल मेरे पास काफी हैं, जल्दी से करना चाह रहा हूँ। सितंबर में अकवामे मुत्तहिदा का इजलास इवेंट फुल हो सकता है?
0: देखें, अकवामे आलम को कोशिश करनी चाहिए कि अकवामे, ये जो सितंबर का इजलास है उससे पहले पहले ईरान USA वॉर को कंक्लूड करें और अग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। सितंबर के UN के इजलास के दौरान में अगर ये सुलह का कोई अच्छा देरपा हल निकाल लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा UN के प्लेटफॉर्म से अमन का मैसेज जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे UN अपनी अफादियत खो रहा है, पीस भी कहीं धुंधला जाएगा, और ये मुल्क के लिए और रीजन के लिए और पूरी दुनिया के अमल के लिए खतरनाक होगा। जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, आम आदमी की बसात से रोजमर्रा की अशिया जो हैं वो निकलती जा रही हैं, और ये बहुत खतरनाक होगा अगर ये रुझान चलता रहा। आप जंग के हालात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, और अब हम तकरीबन तकरीबन ये पूरा साल जंग में गुजार रहे हैं, तो आप सोचें कि माइनर वीकर इकोनॉमीज के ऊपर इसका क्या असर हो रहा होगा। यानी पेट्रोल जो है बसात से बाहर हो गया, और लोग घरों तक मैसूर हो गए हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते। अब तो मोटर बाइक वाले चीखना शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल अफोर्डेबल नहीं है, तो ये आगे चल के हर गरीब मुल्क के ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा, कर्जे का बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा। और ये बहुत सारे मजमरात हैं इसके, बहुत सारे इसके असरात होंगे, नेगेटिव असरात इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अक्वामे मुत्तहदा का इजलास अमन के हसूल के लिए दूरस नतायज का हामिल हो सकता है, अगर बड़े ममालिक उसमें अपना किरदार अदा करें।
1: मलिक साहब, बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। मलिक साहब, इस बड़े तंदूर पर तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन सारे हालात में मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके, वो क्या सोच रहे हैं?
0: देखिए, उनकी बेटी जो है वो उनकी जेरे निगरानी, उनके रुफका की जेरे निगरानी वजारत आला के ऊपर वो एक बड़ा एक्सपीरियंस ले रही हैं। उधर जरदारी साहब जो हैं वो अपने बच्चे को, मेरा ख्याल है कि वो ही इज ग्रूम्ड टू बी अ लीडर ऑफ हिज पार्टी, पीपल्स पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगली जनरेशन को ये जो तजर्बे का मौका मिला है, ये मुल्क के लिए और सियासत के लिए बेहतर है कि कोई ना कोई आगे चीज जो है वो है। उधर शहबाज साहब के बच्चे भी, दो सलमान और हमजा, उनकी मावनत करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है कि ये नौजवान नस्ल जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सीख रही है। मियाँ साहब मेरे ख्याल यही सोच रहे होंगे कि एक तरफ उनका भाई वजीर आजम है, एक तरफ उनकी बेटी वजीर आला है, और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो स्टेक होल्डर पार्टी है वो उनकी अलाई है। तो वो सोच रहे होंगे कि किस तरह ये 4-5 साल गुजरे ताकि ये लोग जो हैं इस जो काम है इसको लोगों के सामने पेश कर सकें और आइंदा के लिए अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी पॉलिसी बना सकें। अभी क्योंकि इस टेन्योर में तो उनका आगे बढ़ के उनका कोई रोल नहीं बना, लेकिन अगले सेटअप में उनका बहुत बड़ा रोल होगा कि हाउ ही पिच हिज इलेक्शन कैंपेन, हाउ ही ट्रांसलेट जो काम उनकी बेटी ने किया है, भाई ने किया है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, और हाउ ही टैकल द ऑपोजिशन, क्योंकि जाहिर है अगर ऑपोजिशन इज लेड बाय जो करंट ऑपोजिशन लीडर हैं तो वो भी एक बड़ा एक देखना पड़ेगा कि अगर आप एकदम उनको फ्री हैंड मिलता है और अवाम की जो फीलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो यूथ को गैल्वनाइज करना, हुकूमत में रह के जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो एकदम लोगों के साथ राबता साजी एक बड़ा जुएशीर लाने के मुतरादिफ काम है। तो यह हुकूमत से 5 साल निकल के जाके पब्लिक में जाना, ये बड़ा लीडर चाहिए, और नवाज शरीफ साहब का होना मुस्लिम लीग नून के लिए बायस बरकत है कि वो एक लीडर वजूद होगा जो अवाम में जाएगा और अवाम को अपनी तरफ रागब करेगा। इसी तरह बाकी लीडर भी करेंगे, तो यही एक टेस्ट होगा कि कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इन 5 सालों में किए काम को अपनी कामयाबियां गंवाने के लिए, गनवाने के लिए कि लोग उसके ऊपर वोट भी दें।
1: मलिक साहब, आपने बहुत सारी बातें की और खुलकर की, तो हमारे मामला जो फॉरेन ऑफिस के या फॉरेन जो दूसरे मुल्कों के साथ चलते रहते हैं, इसहाक डार साहब का फॉरेन जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन चूंकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, और उनकी कारकर्दगी को या उनका काम कैसे चल रहा है?
0: मेरे ख्याल में सादात साहब ने इंडिया की जंग भी जीती है और सालसी के पीछे फॉरेन ऑफिस का बड़ा किरदार होता है। ये जो आपके चीफ जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आपके वजीर आजम जा रहे हैं अरब ममालिक में, तुर्की में, पूरी दुनिया में, तो फॉरेन ऑफिस तो पूछे एक बैकबोन होती है जो ये सारा मनूवरिंग जो है उसको इफेक्ट करती है। इसहाक डार साहब फाइनेंस के आदमी हैं, कम गो हैं, काम करने वाले 24 घंटे से 22 घंटे काम करने वाले आदमी है, उनको फॉरेन ऑफिस दी, उन्होंने चुपके चुपके चुप चुपीते जो है आपको काम करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। एक एक दिन में जंग के ऊपर इतने फॉरेन मिनिस्टर के साथ राबता करना, फिर सालसी के दौरान सालसी की नेगोशिएशन आपके मुल्क में हुई हैं, ये एक अनहोना वाकया है कि एक गरीब, इकोनॉमिकली इन अ बैड शेप मुल्क, एक वर्ल्ड की सुपर पावर को मुसलमान मुल्क की पावर के साथ जो है सालसी कर रहा है, और वो मान रहे हैं कि ये हमारा सालस है। फैसिलिटेटर नहीं कहते, वो कहते सालस है। सो आप एक मसदका सालस के तौर पे काम कर रहे हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट के हम IMF में बालों बालों उलझे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सागदार साहब ने परफॉर्म किया है, और फाइनेंस के ऊपर भी उनकी नजर होती है बिकॉज ऑफ बीइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो एक अच्छा एक पैर डुओ चला है, और पाकिस्तान की खिदमत हुई है और ये हिस्ट्री जज करेगी कि कैसा रहा, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। अल्लाह लोक आदमी है, गॉड फियरिंग आदमी है, मुझे उनके साथ 5 साल हो गए हैं, डायरेक्ट उनके कमांड में काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अपना एक तरीकाकार है और अपनी डिसिप्लिन है, और वो डार साहब कॉमा और पेश और फुल स्टॉप भी ना छोड़ने वाले आदमी हैं, और वो माइन्यूटली पेपर्स को पढ़ते हैं और एक-एक चीज को वो बड़ी लिहाज से देखते हैं, तो उनके साथ काम करना एक बहुत अच्छा तजर्बा था, मुझे बहुत सीखने को मिला है और उम्मीद है कि वो आगे भी एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो उसी तरह उनकी तरह काम करेगी और उसी तरह पार्टी को और मुल्क को और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेगी।
1: मलिक साहब, इसहाक डार साहब दरवेश इंसान हैं, बड़े मेहनती हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस मैन हैं, लेकिन मीडिया भी बड़ा बेलगाम है आजकल। मीडिया भी थोड़ा सा, मीडिया की जद में भी थोड़े से आए हुए हैं।
0: देखिए, वो उनकी फैमिली में किसी बच्चे का इश्यू हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए जो है मामला जो है उसके ऊपर केस रजिस्टर भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये काम तो अदालतों का है कि शेफ को ग्रेन से अलग करे, ये पॉलिटिकल काम तो है नहीं, अदालत ने फैसला करना है, ये पार्लियामान में भी नहीं होना और मीडिया पे भी नहीं होना। तो मेरे ख्याल में लेट्स नॉट हैव अ मीडिया ट्रायल, मेरी यही गुजारिश होगी कि लेट द कोर्ट डू देयर जॉब। इस मुल्क में तो वैसे जो है वो क्या नाम था वो रेमंड डेविस बंदे मार के चला गया है, तो ये पाकिस्तान का, और अभी सीसीडी के ऊपर भी बातें होती हैं, तो ये हर वक्त में कुछ ना कुछ होता रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत करें जिसमें हाथ ना मरोड़े जा सकें और आम आदमी को भी उसी तरह इंसाफ मिले जिस तरह खास आदमी को मिलता है। तो इसी सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, पुलिस अपना मुकदमा दायर करे, चालान जमा करवाए, अदालत इसके ऊपर अपना फैसला दे, बेस्ट यही है, और टाइम स्पेन में दे, 5-6 महीने में केस को फारिग करे, पता करे जो भी करना है, उससे ये फायदा होगा कि लोगों का इंसाफ के जो तरीकाकार है या निजाम है उसके ऊपर एतमाद बहाल होगा, और मेरे ख्याल में किसी के घर में भी कोई भी शख्स जुर्म कर सकता है, सजा उस जुर्मवार को मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया है, लेकिन उनके बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, माओं को पोलिटिसाइज या प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बनाना चाहिए। और ये तो मुसद्दका एक कोर्ट है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोशिश सिर्फ ये करें कि कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करे, समरी जजमेंट ना हो, समरी ट्रायल ना हो, लोग गुत्थम गुत्था ना हो, लोग कानून को हाथ में ना लें और अदालत ही जो है ऐसा फैसला करे जिसके ऊपर सजा या जजा हो।
1: मलिक साहब, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक दो सवाल आपसे करने हैं। कश्मीर के इलेक्शन, एहतजाजी सियासत और अपोजिशन का ये जो तड़का बीच में लगता है, आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि भारत जंग हारने के बाद हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे आपकी रियासत कमजोर हो और आपका बयानिया जो है टूटे, तो उसमें चाहे कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कराची हो, और टीटीपी हो, हमारे जो केपीके के जो बॉर्डर है उसके ऊपर स्किरमिशेज हो या इंक्रीजिंग इंसर्जेंसी और तालिबानाइजेशन हो। अब दूसरा जो है वो ये छोड़ेगा नहीं, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे आप केपीपी में कराएं, चाहे आप बलूचिस्तान में कराएं, इस एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फॉरेन जो ताकतें हैं वो वहां अपना रोल प्ले करेंगी। अब देखना आपने ये है कि बरतानिया में 12-13 लाख कश्मीरी बसते हैं, उनके पाकिस्तान के साथ गहरे रवाबत हैं, यहाँ कश्मीरी निजाद काउंसलर्स, मेयर, मेंबराने पार्लियामान है, वो एक गैल्वनाइज करते हैं, उनके पीछे पूरी पूरी एक फौज है जिन जो वोट देती है उनको, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूरियां हैं। तो देखना ये चाहिए कि बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन मैनेज ना किए जाए, आपने वोट डालनी है, बिस्मिल्लाह कश्मीर में उतरें, कश्मीर जाएं, वोट डालें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, बसें दें, आप ट्रक दें, आप लोगों के स्टॉल लगाएं, आप अपने स्टेशन बनाएं और मदद करें, लेकिन खुदारा यहां बैठ के, बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन का फैसला ना करें। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी वोट डालेंगे कोई और वोट नहीं डाल सकता, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, आपने वोट डालने। बिस्मिल्लाह वोट डालें, अपने हुक्मरान खुद सेलेक्ट करें, जो हुक्मरान बने वो फैसला भी करें कश्मीर एक्शन कमेटी का क्या करना है। अगर कश्मीर एक्शन कमेटी वाले लोग बना लेते हैं हुकूमत, वो फैसला करें कि क्या मराहत देनी क्या नहीं देनी, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मकाल मेर में रहे, सियासी चीज को सियासी रहने दें। यहां इसको खिदो बना लिया है, एक तो पोलराइजेशन, आप दरवाजे तोड़ रहे हैं, एहतजाज करें। ये बरतानिया है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे एहतजाज को देखा जाता है, यहाँ गाजा पे एहतजाज होता है, यहाँ पे इमिग्रेंट के खिलाफ ईडीएल एहतजाज करती है, लेकिन ईडीएल को हुकूमत नहीं मिल जाती। ईडीएल के एहतजाज में लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दे दी जाती कि वो उठा के इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दे। आप एक पॉपुलिस मूवमेंट का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, पॉपुलिस मूवमेंट ट्रांसलेट हो हुकूमत में ये लाजमी नहीं है। यहाँ आबादी ज्यादा है तो बातचीत भी ज्यादा होगी, आवाज भी ज्यादा निकलेगी, बिल्कुल निकालें, लेकिन यहां बैठ के कश्मीर के वजीर आजम का फैसला ना करें, वो वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को करने दें। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, इस जगह के लोगों को करने दें वहां की सीटों का फैसला। किसी ने बहुत ज्यादा सियासत है शौक तो जरूर जाके सपोर्ट करें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपनी पार्टी के नहीं लड़ने दिया जाता तो आजाद खड़े हो जाएं, आजाद लड़े, लेकिन वहां के लोगों को फैसला करने दे, उनके वोटों से एमएलए बनने हैं, उनके एमएलए के वोटों से आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है। अब एक जगह पे आबादी ज्यादा है और वहां पे आपकी से ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तरीका नहीं है कि आप गालम गलोच में हर उस सतह को पार कर जाएं जिससे आपका अकाउंट तो शायद मोनेटाइज हो जाए, पैसे ज्यादा आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। अपने मेंबरान पार्लियामान, अपने काउंसलर, अपने मेयर को एक अच्छा, सुस्ता, फेयर, फ्री इलेक्शन करवाने या होने देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, रादर देन कि एंटी पाकिस्तान जाके जी दरवाजे तोड़ दे हाई कमीशन के, या जी बंदे खड़े करके तो जी झंडे लहरा रहे हैं जी इंडिया के, या गालियां निकाल रहे हैं, वो कोई तरीका नहीं है। आपकी एम्बेसियां हैं, आपने ही वहां से कार्ड लेना है, नायको कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, आपने इनसे सहूलतें लेनी है कि आप अपनी एयरलाइन डायरेक्ट वहां चला सके मुजफ्फराबाद और बीरपुर, आपने ही इनसे काम लेना है तो काम चलना है। तो एक ऐसा ट्रीट करे कि जिस तरह एक महजब मुआशरा ट्रीट करता है, इसको इतना इज्जत बिस्ती का मसला ना बना ले कि लोग बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाए, और आप बरतानिया में ऐसे हालात पैदा कर लें कि लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं कि ये बरतानिया है या आपने ये जम्मू ही बना लिया इसको, तो देखना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं हमेशा ही ह्यूमन राइट वकील होने के नाते जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई रहा हूँ, अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बातचीत से मामला हल किए जाएं, शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियाँ कम होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को भी परे रखना चाहिए जो इस आड़ में आपकी पाकिस्तान से लड़ाई करवाएंगे, जो इस आड़ में भारत को मौका देंगे कि वो अपने असर और रसूख के जरिए, पैसे के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए वो अपना यहाँ अपनी स्टेक बनाए, और आप में और आपकी रियासत के दरमियान दायमी नफरत का आगाज करें। ये डायरेक्ट उनको सपोर्ट करती है, ना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ना कश्मीर को सपोर्ट करती। कश्मीर के लिए हमारी सिपाह ने, हमारे लोगों ने जाने दी, कश्मीर के लिए उनके दिल धड़कते हैं। कभी भी कश्मीर का नाम आए तो ये नहीं को कह सकता कि कश्मीर की किसी पाकिस्तानी ने मुखालफत की है। आपको भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अलहदा चीज है, हुकूमत अलहदा चीज है, कश्मीर के इलेक्शन अलहदा चीज है, और उसको एक इलेक्शन के तौर पे लेना चाहिए। यही लोग जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं, कल को एमएलए होंगे, वजीर आजम होंगे, आपने इन्हीं के साथ फिर मुकालमा करना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है। बातचीत को एक हद से ना गुजरने दें। जिस दिन आपके हाथ में डंडा आ जाए और आगे पुलिस वाला हो, आपकी बातचीत खत्म होगी, आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत खत्म होगी। आपने जिस दिन डंडा पुलिस वाले के सर पर मार दिया, खत्म होगी बात, आपकी सियासत गई बाढ़ में, आप जो मर्जी करते रहें, कोई आपको रास्ता नहीं देगा। मैंने आपको मिसाल दी है, बरतानिया में मजारे होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश डिफेंस लीग या हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, हम चाहते हैं इमिग्रेंट्स को उठा के वापस भेज दिया जाए, उसमें कश्मीर भी शामिल है। तो क्या किसी ने हमें निकाल दिया यहां से? इसलिए नहीं निकाला कि वो एक पॉपुलिस, एक आवाज जरूर है, हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है। रियासत बरतानिया नहीं ये चाहती कि यहां से सब कालों को निकाल दिया जाए या सब इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए। तो ये आप देखें और खुद अपनी चीजों को मद्देनजर रखें ताकि नुक्से अमन का बायस ना बने, यहां भी जगह सही ना हो जहां हम रहते हैं। और बिल्कुल मेंबरान पार्लियामेंट बेचारे फंसे हुए हैं, उनके 4-4 लाख, 1.5-1.5 लाख वोटर हैं जो कश्मीरी नजाद हैं, और उनको, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। हमें सफारत खानों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फॉरन ऑफिस को उन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं छोड़नी चाहिए जो कश्मीरी कॉज या कश्मीरी प्लाइट के ऊपर एक बयानिया बनाते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें उनके साथ राह और रस्म नहीं अलग करने चाहिए और उनको नेम एंड शेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मजबूरी और उनके मसले को समझना चाहिए और उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए, और बल्कि बातचीत को, डायलॉग को बेहतर तौर पे करना चाहिए। और ये वफूद के तबादले और आना जाना, अगर कोई मिनिस्टर आता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर आता है, उनके साथ कश्मीरी नजाद मेंबरान पार्लियामान की भी बाहम मुलाकात रखवानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। ये इलेक्शन के बाद मामला और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन तक है। जैसे ही इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत फाल होगी, तो ये मामला हल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे।
1: मलिक साहब, बड़ी ज्यादती होगी एज ओवरसीज में, एक दो सवाल ना करूं और अपनी कम्युनिटी के बारे में बात ना करूं। आप ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं, लायर हैं आप, और पब्लिक की आवाज़ भी आप। तो मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफा हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, हुकूमत के साथ उनके बहुत ज़्यादा तल्लुकात रहते हैं, अपोजिशन के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी जो है वो बहुत अच्छे तल्लुकात रखते हैं। तो गर्मियों में वो पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग लगाने का उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, ज़रा सेहत बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, तो हमें PIA कब मिलेगी?
0: PIA ख्वाजा आसिफ साहब ने तो नहीं देनी, PIA तो आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने देनी है, और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जुलाई से बरतानिया से मानचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन से भी शुरू हो गई है, और PIA अब एक प्राइवेटाइज अदारा है। कोशिश पूरी करेंगे कि अगर एक लुक्रेटिव आपका रूट है, डेनमार्क, फ्रांस, यहाँ से जहाँ जहाँ रोम, यहाँ से आती हैं फ्लाइटें, तो ये दोबारा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ भी शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ज़रूर शुरू हो। और ख्वाजा साहब के बयानात को कई दफ़ा सियासी बयान को सियासी बयान के तौर पर लेना चाहिए और थोड़ा सा चिन्ह रखनी चाहिए। ख्वाजा साहब का कई दफ़ा बयान जो लाजमी नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की का बयान हो, वो कश्मीर कश्मीरियों का है और हम कश्मीरियों के हैं, कश्मीर हमारी शाहरुख है, और ये बयानियाँ अभी ना तब्दील हो रहा है ना होने जा रहा है। जब तक इसका पायदार हल नहीं निकलता, हम कश्मीरियों की प्लाइट के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। आपस में भाई हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीरियों के खून से रूगर्दानी करेंगे। पूरा जोर लगाएंगे कि कश्मीरी कॉज को इस तरह के आपसी इख्तलाफात से नुकसान ना पहुंचे।
1: मलिक साहब, हुकूमत से मजीद हम क्या उम्मीद रखें? इसी तरह एक खबर चल रही थी कि कोई दो बंदे हैं, वो इंसानी जो है वो बंदों को भी खाते हैं, वो जेल में गए हैं, या खबर है सच है या झूठ है, ये पढ़ी गई है अखबार में, तो वो इंसानी इंसानी गोश्त खाते हैं, वो जेल में भी लोग उनसे डरते हैं, वो कहते हैं हम जेल में भी इनका गोश्त खा जाएंगे। तो मलिक साहब, इस तरह की चीजें
0: फिक्र ना करें, इस तरह की बातें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बेफिक्र रहें, और अगर खाते भी हैं तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होंगे, आप बेफिक्र रहें। इनमेट्स जो हैं, वो कैदी जो हैं, उनकी फलाह बहबूद या उनकी फिजिकल वेलफेयर, उनकी लुक आफ्टर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनकी देखभाल करना, उनकी मेडिकल नीड्स और खाने पीने में एहतियात, ये सारा जेल मैनुअल में शुमार होता है। तो आप बेफिक्र रहें, कोई भी कैदी, किसी भी कैदी से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो राय साहब, इजाजत अब दें।
1: साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में अपनी टीम की तरफ से भी और अपने दोस्तों की तरफ से भी कि आपने बड़ा खुला हमें टाइम दिया اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو. جو ہم سے لوگ ہیں, جی آپ نے ملک صاحب سے یہ پوچھا نہیں ہے, تو ہم نے بھی ذہنی طور پر پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ آپ کو چونکہ لائف آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو جواب تو عرارت میں ہمیں دینا ہی دینا ہوگا. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈنمارک کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟
0: تھینک یو راجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ڈنمارک جو میں مجھے بہت عزیز ہے, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ڈنمارک آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملوں گا بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کی گزارشات, سفارشات اور مطالبات میں جو سہولیات پیدا کر سکیں ضرور کریں, اور آپ بھی کوشش کریں, لوگوں کو بتائیں, کھلی کچہری میں ان کو دعوت دیں کہ وہ شریک ہوں. اگلی کھلی کچہری 29 جولائی کو 2 بجے ہوگی, تو ضرور لوگ تشریف لائیں جن کے کوئی مسئلہ ہے پاکستان میں, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو گزارشات دیتے بھی ہیں تو ہمارے بہت اچھے, میرے بہت ہی عزیز دوست یہاں سفارتکار ہیں, اور آپ ان کو ضرور رابطہ کریں, وہ آپ کی گزارشات پہنچاتے ہیں ہم تک, بلکہ مجھے ملنے بھی آئے تھے وہاں لاہور آفس میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کے کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی آرا کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو خدمت فراہم کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.
2: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम हमारी कोशिश होती है आपको इन्फॉर्मेशन दें, ताज़ा तरीन मालूमात दें, हफ्ते में जो कुछ होता है कम्युनिटी के जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं उस पर भी बातचीत करते हैं, कानून कायदे की भी बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमारे जो है वो तजिया नगार जो है वो अदनान अमीन अली जो अपना तजिया करते हैं, आपके साथ खबरें लेकर आते हैं। तो अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
1: अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है तो आप क्या कहेंगे कि मौसम भी जो है वो गर्म है, उसके बाद प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, मौसम भी गर्म है और गर्म आम भी साथ साथ चल रहे हैं।
2: हाँ राजा साहब, मौसम फिर से गर्म हो गया आज, अल्लाह करे ऐसे मौसम दे कुछ दिन हो। और दूसरी बात, हाँ तो मैंगो क्या कहते हैं फेस्टिवल जो है इस साल चल रहे हैं, इस साल तो रखते हैं तो लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और अपनी अपनी राय है लोगों की इसके बारे में, तो वैसे ही है।
1: अदनान, लोग राय भी देते हैं, लोग बातें भी करते हैं, तो लोग एंजॉय भी तो करते हैं ना।
2: जी जी हर सब वापस ये लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और लोग खुश भी हैं और फीडबैक जो है वो भी अच्छे हैं। और कल भी काफी अच्छा मेला हो गया और अगले हफ्ते भी एक मेला आ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं जो चाहता है उसके लिए फ्री में एक वीकेंड है, देखते हैं वहां नहीं आता उसके बाद भी फिर है, फिर उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इसी तरह समझ लें कि अगले हफ्ते अगले मंथ तक एक किस्म के प्रोग्राम है,
1: अगले मंथ तक प्रोग्राम है। तो ये जो चीजें आती हैं स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए। स्टॉल ज़ाहिर है वो अपने कारोबार के लिए लगाते हैं या रौनक के लिए लगाते हैं या टिक टाक के लिए लगाते हैं, इसमें तो पब्लिक को सहूलियात मिलनी चाहिए।
2: दरअसल जो होते हैं ना स्टॉल वाले उनको तो स्टॉल तो मिलती है और वो तो अपनी कीमत से है, मगर ये भी देखना चाहिए जो स्टॉल लगाने के पीछे होते हैं उनने अपना खर्चा पूरा करना होता है, तो सही है। तो एक किस्म का क्या कहते हैं टेकन एंड गिविंग है, कोशिश की जाती है कि लोगों को खुश रखा जाए और ऐसे ही है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नाराज हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं।
1: कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नाराज हैं, ये बात समझ नहीं आई सियासी तौर पे।
2: देखे सब एक देखा जाए, यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि कुछ कुछ कह रहे हैं कि इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कम होने चाहिए, तो ये किस्म का क्या कहते हैं चीजें चलती रहती हैं और ये क्या कहते हैं जिंदगी का एक हिस्सा है, तो ये तो एक एक एक बंदे को अपनी अपनी मर्जी होती है और अपनी अपनी राय होती है, तो तुम एक दूसरे की राय बदल तो नहीं सकते, तो बस सब पूछ रहे हैं अपनी जगह पे।
1: तो अदनान, हमें हमारे थिंक टैंक जो है वो तुकीर हसन बुखारी शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: राजा उपुर साहब, आपको भी, अदनान को, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब
1: जी, अगर पीछे से मेरे ख्याल है किसी अदनान माइक खुला हुआ है तो आवाज जो ईगो होके आ जाती है, तो अगर पिछला माइक बंद कर दें।
2: मेरा तो बंद
3: जी राजा
1: जी जी, अब आवाज नहीं आ रही है। जी शाह साहब, मैं अदनान से बात कर रहा था, आपको पता है कि अब छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को स्कूलों में, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बच्चे वहां जो है वो जा नहीं सकते, वो बेचारे करें क्या, तो फिर वो ये भी जो मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं ये भी तो उनकी छुट्टियां हैं, ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां इसी तरह गुजार रहे हैं।
3: ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि मैंगो फेस्टिवल पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी डेनमार्क के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत छोटे छोटे जजीरे हैं, फ्यून में चले जाएं, उससे लिंक छोटे जजीरे हैं, आप यूलैंड में चले जाएं, आप बहुत ज्यादा जगह पे जाके अपने बच्चों को जो यहाँ की पैदाइशी बच्चे हैं उनको डेनमार्क का ज्योग्राफिकल एरियाज और इनकी हिस्ट्री बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये बच्चे जब ये देखेंगे तो इनको समझ आएगी कि कल को हम जब जाएंगे تو کس طریقے سے ہم سیاست میں آگے آئیں گے, ہم نے کون سی اپنی اسٹڈی چوز کرنی ہے, کیا ہم نے سیاست دان بننا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ اس حساب سے دیکھیں. ابھی میں اس سے پہلے عدنان سے پہلے وقار کو سن رہا تھا, مبشر کو سن رہا تھا, وقار میں بڑی اچھی چیزیں بات پیش کی. میرا خیال میں عدنان اور بخاری صاحب کا جو پیچھے پروگرام ہوا تھا بڑا اچھا پروگرام تھا, بڑی اچھی انفارمیشن تھی, لیکن وقار نے بڑی اچھی بات کی کہ جو میں نے اسٹڈی کیا میں اس کو کنٹینیو کروں گا, میں اس کام کو زیادہ تجربہ دوں گا. تو اسی لیے جو بچے سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ لنک ٹو سیاست رہے, ان کو اتنی زیادہ ہائر اسٹڈی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جو ہے ہائر اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا وہ اپنا چلے جاتے ہیں ہوکو جمنیزم وغیرہ میں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ سیاست کو اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آئے, کیونکہ یہاں پہ جو ٹائم بندہ سیاست کو فلی دے گا تو وہی سیاست دان جو ہے اپنا نام
1: سیاست میں. تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا, تو سیاست میں جو ہے آپ کاف لیگ کو جوائن کر لیں, مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں, پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں, اس طرح باقی دوسری جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں, تو ترقی کے راز تو سارے یہاں چھپے ہوئے ہیں.
3: جی وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے یہ سارے کے سارے, لیکن جو اصل میں وہ آپ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے معاشرہ ہے جس جن لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا جینا اٹھنا ہے, آپ ان کے تکلیفات کو بھی محسوس کریں, اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس ڈینش معاشرے کو ہم نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے, اس کے بھی جو فوائد ہیں ان کا ہمیں پتہ لگے. ابھی عدنان بھی وہی بات کرتا ہے جو میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی آج کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ریٹن بک ہے, اس کو کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ متفق نہ ہو اور پارلیمنٹ اس کے اوپر وہ ووٹ لے. لیکن اگر یہ جو لا فورسز آ رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی, یہ لوگوں نے جو جن پارٹیز کو ووٹ دیے ہیں وہی کام کر رہی ہیں. اب ریڈیکل وینسا کو یہاں پہ ہم نے, میں نے بھی اس کو جتوانے میں اس کا ہاتھ آگے تھا, لیکن ہوا گیا کہ وہ جا کے پھر اسی گھونسلے میں بیٹھ گیا ہے اور سب وہیں پہ بیٹھ گئے, ان کے انڈے سب کے مکس ہو گئے ہیں. وہ جو حکومت پی ڈی ایم کی بن گئی ہے وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت پہ ایک دوسرے کو سپورٹ پارٹی تھی, اس میں بھی وہی سپورٹ پارٹی ہیں. یہ کبھی بھی اس طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ سیاست کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہاں ہم سمجھ سکیں گے اپنی سیاست کو, اپنی لیگ پولنگ کو, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اور اس پہ عدنان بھی کیونکہ یہ بالکل ینگ آدمی ہے, یہ اس کے اوپر خوب روشنی ڈال سکتا ہے کہ یہ خود اس چیز کا وکٹم رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو خود نشانہ بنایا. تو لوگوں کو یہ نہیں چاہیے, لوگوں کو ان سے سوال جواب کرنے چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا, ادھر قانون کیا ہے, کمیون میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون سی فیسلٹیز ہم لے سکتے ہیں, کون سی فیسلٹیز ہم نہیں لے سکتے, اس کے لیے کون سے ادارے ہیں, آمپ میں جانا پڑے گا, ریجن میں جانا پڑے گا, گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہاں ہر جگہ فیسلٹیز ہے, لیکن کیونکہ جب سے ہم اپنے اندر سے ریسزم اور غبیت باہر نہیں نکالیں گے, ہم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ صرف مینگو کھائیں گے تو وہاں پہ مینگو کھا کر, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے وہاں ڈسٹ بن تک جانے کی, میں نے دیکھا لوگوں کو لاسٹ ٹائم کہ وہ یہ اپنا کلفی کھا رہے تھے لیکن کلفی کے لیے وہ ڈسٹ بن تک نہیں جا رہے تھے کہ وہاں جو ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں ہم اس کے چیلے جو ہیں وہ اس کے اندر پھینک دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اور یہاں کا کلچر کیا کہہ رہا ہے. جی
1: راج صاحب. جی عدنان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, آپ کا تجزیہ چاہیں گے.
4: دیکھیں راجا صاحب, بات یہ ہوتا ہے کہ ان کا تجزیہ تو صحیح ہے, اور آپ کو سیاست میں جانے تو آپ کو سیاست کا کیا کہتے ہیں رخ دیکھنا پڑتا ہے اور سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بات اب دیکھیں, اس شہر میں میں بیٹھا ہوں اور ہم رہتے ہیں اس وقت میں, ہمارا جو میئر ہے ٹیکنیکلی اس کا بیک گراؤنڈ خالی نویں کلاس ہے, اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس نکاح سے اسٹرگل کر کے کہاں پہ پہنچ گیا. تو یہ ایک آفیسر, ایک کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا جذبہ, آپ کا क्या कहते हैं नॉलेज आप सीखना चाहें, आप क्या करना चाहें, तो ये है। दूसरी बात टांगे खेचना, ये भी एक अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फॉरन कम्युनिटी हो सकती है, तो ये चीजें तो है, मगर बस इस पे ये है कि इससे बंदे को हार नहीं मांगनी चाहिए और अपने काम पे फोकस होना चाहिए और अपनी अपनी क्या कहते हैं अपनी वेयर से रहना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देखें कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है, तो फिर वहां से उसको चूज करें, क्योंकि आप एक बंदा भेज देंगे जिसको पता ही नहीं होगा तो वो चार क्या करेगा, उसका ये आप देखें कि बंदे का विजन क्या है, बंदा करना क्या चाहता है, बंदे ने काम कौन सा सीखा हुआ है। सबसे पहले टेस्ट से पहले जरूरी होता है कि आप कुछ बोर्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं, और आपको वो मिल जाए तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, तो ये चीजें आपको बड़े गौर से करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मैंने भी कल अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज कहूंगा कि इंसान को जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें इन इन इस सिस्टम के हवाले से चलना चाहिए है। अनफॉर्चुनेटली मैं मुझे पता है इससे मैं बड़ा टारगेट होऊंगा, मगर मैं खुद कल विटनेस था कि हम मैं ये मैंगो फेस्टिवल में मैं हैरान हूँ कि ये कैसे चल गया कि पुलिस नहीं आई इस फेस्टिवल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने वहां पर पार्किंग की शूर कर दी थी ना एक टाइम पे, मैं बड़ा हैरान था कि अभी तक पुलिस नहीं पहुंची, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस कहां नहीं पहुंची, क्योंकि पुलिस पहुंच जाती तो बड़ा मसला पड़ना था। तो बंदे को हर चीज के सोच समझ के चलना चाहिए। हम डेनमार्क में हैं, हम एक अब मैं हो गए करीबन 60-70 साल यहाँ पे, तो हमें अब आयन और कानून की तरह से चलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि काम है।
1: अदान आप जैसे कह रहे थे कि लोगों ने गाड़ियां जो है वो गलत पार की हैं, इंतजामिया की बात मानी नहीं है, खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं।
4: नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए आप ये देखना चाहिए कि आप अब एक पार्किंग है, आपको पता है कि दो साइड पार्किंग है, गाड़ियां आगे पीछे हो रही है, आप उस पार्किंग पे खड़ार देंगे तो पीछे तो लाइन लग जानी है, और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जिस पार्किंग पे बस जा रही हो ना, बस वालों के पास एक टाइम नहीं होता, और बस वालों ने क्या कहते हैं एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि वो क्यों लेट हो रहे हैं, वो ज्यादा लेट होने लग पड़ेंगे तो वो तो डेफिनेटली पुलिस को कहेंगे कि हम इसलिए लेट हो रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ये सोचना चाहिए जब आपने इंतजामिया एक दफा कह दिया, दो दफा कह दिया, तीन दफा कह दिया, तो आप समझ जाए बात को, ये मतलब तो नहीं कि आपको पांच छह दफा बंदा के तो आपको फिर समझ आनी, फिर तो बंदे का सॉरी जो मैं ये कहने लगा तो बंदे का दिल करते कि बंदा कुछ और कर दे, मगर वही बात आती है ना कि फिर अक्ल कहाँ पे आप लोगों की, आप लोग अब क्या कहते हैं इतने साल हो गए आप लोगों को।

0: ये लिखी हुई है इतनी इतनी बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शो है। हम लोग बहुत बड़े कांगड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि बेशक मेरी बातों को लोगों को बुरा लगे, मेरे खुद वीजे पे लिखा हुआ है आप स्ट्री लाल से, मैं जब यहाँ डेनमार्क में आया हूँ मजदूर की हसीियत से मुझे वीजा मिला, उसके बाद यह अलग बात है पढ़ लिख के आदमी कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वीजे के ऊपर तो आपके लिखा हुआ है ना कि आपको आप स्ट्री लाल से दिया जाता है, काम करिए इजाजत दी जाती है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा इस कम्युनिटी के अंदर, और मैं ये यंगस्टर्स को वाजिया ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने लिए बहुत बड़ी कुआं खंडक खोल रहे हैं और जो खुद चुकी है, और इसके अंदर आप पानी छोड़ने की बात है, आपको ये यकीन नहीं होगा ये कितनी गहरी है। यहाँ पे अदनान इस चीज पे मुझे सवाल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करता, यहाँ इन्होंने जो नए लॉ फोर्स ने 2023 और 24 में बनाए हैं वो इतने संगीन इतने घिनौने हैं कि उसकी जद में हम कोई भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखें कि ये जो अभी खियोस्को का वाकया हुआ है, ये सिर्फ फ्यून और शीलन पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है, और इन्होंने ये काफी अरसा तक इन्होंने ये चीजें जारी रखनी है। जब इन्होंने इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास बाउल अकेल के अंदर आप फेल हो जाए तो वहां पे खोज के अगर आप जगह है सोने की और वहां पे आप खुदा ना खासा आग लग जाए कोई अच्छी चीज हो जाए तो वहां पे एग्जिट डोर यानी कि एक्स्ट्रा दरवाजा है कि आप पीछे से निकल सकते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मसाइल इसलिए बड़े हैं कि जो है जो ईस्टर गेट में वाकया हुआ था क्रॉस के अंदर, इससे मसाइल जो है वो काफी सख्त हो गया, कानून सख्त हो गए हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो रात को अपने जो मिल आप जो उनके लिए पास काम कर रहे हैं तो उसको वहां पे फल कराए उसकी इजाजत नामा ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम करने पे अदनान तुम इस पर क्या कहते हो?
1: साहब देखिए सर, सॉरी साहब, इस पर तो भी दो राय नहीं है। किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए और गलत काम से गलत नतीजा ही होता है। और आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो जो जो तीन दो तीन सालों से कानून आ रहे हैं वो सबसे सख्ती आ रहे हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखें कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई ना कोई रीजन तो है ना कि इस सोसाइटी ने ये कल्चर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं मुझे पता है लोग मेरी बात से नाराज होंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो कानून इस मुल्क में बने हुए हैं यही चीज हम चाहते हैं कि अपने मुल्कों में हो जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि ये इस्लामी कानून है। जब आप लोगों को वो चीजें यहाँ पे मिल रही है तो आप वो चीजें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं जनरेशन है, जहाँ हमारा लिंक है, हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी वाइफ जिन सेकंड जनरेशन जहाँ पे मैंने शादी पास करनी की हुई है, सब कुछ की हुई है, हम वहां जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज वहां पे आए जो हम यहाँ पे है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ही खुद उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मुल्क में कैसे लेके जाएंगे।
2: अदनान, अभी शाह साहब आपसे भी सवाल है कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट और पीपल्स पार्टी का आपस में, पीपल्स पार्टी डेनमार्क की पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ज़बरदस्त टक्कर ले रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं है, ये एक जो है वो नील्स जेस्परसन का ख्याल है, आप क्या कहेंगे दोनों?
0: जी मैं तो ये कहूंगा कि ये एक सियासी प्रोपगंडा है कि ये दोनों पार्टियों के मंशूर बिल्कुल एक हैं, मिलते जुलते हैं, और ये क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट है ये अपने जो लेबर लेबर लॉज हैं जो इनके लेबर मंशूर हैं उससे ये कम्प्लीटली कुछ पिछले 15-20 साल से ये हट के काम कर रही हैं। और ये जो इनका जो मंशूर है ये टॉप लेवल का है, सिर्फ के भाई पावर हमें चाहिए और हम पावर में रहना चाहते हैं, हमारा जो बेसिक मंशूर था वो खड्डे में जाए उसकी हमें परवाह नहीं है, जो हम लेबर पार्टी होती थी अब हम जो है वो बस वोट हासिल करने के लिए है। तो तो यही चीज है।

0: डन फुलके पार्टी, डन फुलके पार्टी भी तो सोशल डेमोक्रेट में से उससे इख्तलाफ करके आगे आई थी, लेकिन फिर सोशल डेमोक्रेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर ये लोग दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो हम अपनी पार्टी को ही टॉप पे कब्जा करके तो इसको तब्दील कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टी जो है, इनके टॉप लीडर जो है, इनमें इनकी राय एक है, लेकिन जो बोन है, जो नीचे जो लोग हैं, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। वो चाहते हैं कि डेनमार्क के जो उलेनिंग लॉज हैं दूसरे, उनको माइल्ड किया जाए।
1: ये अदनान आप क्या कहते हैं?
2: पॉलिसी मैं तो यही कहूंगा कि ये दोनों पार्टी की जो इसको कर देना, ऐसे लग रहा है जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही एक एक स्टेटमेंट आती है। और इस वक्त तो पता नहीं, इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या किए, क्योंकि
1: मतलब है कि नफरत के वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं।
2: सर सब देखिए, बात ये है कि इसके बैकग्राउंड का ये है कि 2015 थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2015 में जब ये हिले चौंस में खड़ी थी ना इलेक्शन, तो पच्ची ने बहुत ज्यादा सीटें नहीं की और तीन ने मेरे ख्याल से 33 सीटें ले गए थे। तो ये सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी उस वक्त, और उस वक्त फिर इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बदली थी कि अब इनको कैसे ये वोट वापस लिए जाए, और उस वक्त से लेके आज तक इनकी पॉलिसी जो है ना वो सख्त से सख्ती हुई है, क्योंकि 10-12% करीबन इनके वोट ले जाता था। उसके दौरान फिर 10% का मुखाड़ा भी आ गया और बोनस पर्ची भी आ गई, मगर उनकी स्ट्रेटजी यही थी। अब ये दोबारा से वो कोशिश कर रही है कि जो जिनने 2016-2017 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पे ये कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या बनता है लॉन्ग सेक्टर पे, ये तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो लोग वेकेशन पे है, समर फेरियो पर, के बाद ही देखा जाएगा कि क्या है। और दूसरा ये है कि ये जो जो जो जो स्टेटमेंट आ रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मगर इसके अंदर एक ही चीज हुई मैं कहूंगा, जो मैंने पहले भी कही थी और जो जो, जो बात करते हैं लोग, जो हमें टारगेट करते हैं कि हम इस बात को अपनी पार्टी में डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसका एक ही हाल है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको वन वॉइस बनना पड़ेगा, फिर ही इसका कोई नतीजा हो सकता है कि हम इस चीज को बदल सकें। हम इसमें पब्लिक खड़ी कर लेते हैं फेस्टिवल पे और इन जगहों पे, तो हम वैसे भी पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं। मसला बस ये है कि हम पब्लिक इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस हिम्मत की जरूरत होती है, पार्ट की जरूरत होती है, लोगों को इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत होती है, और बड़े सारे लोगों को क्या कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कल मैंने ये मेरा हाथ होता है इस चीजों में, मैं पहली दफा मेरे फोन प्लान लोगों को पता चले, बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि तुम पब्लिक वहां से इकट्ठी कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो पब्लिक वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी कर सकता हूँ, मगर मसला ये है मेरे लिए, मसाइल ये है, ये फाइट मैं कल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिर हर बंदे को जवाब देना है, हर बंदे को देना है। आप मेरा फेसबुक पेज देख ले, मेरे ख्याल से जितना मैंने लोगों को जवाब दे दिया, जितने मुझे क्या कहते हैं लोगों ने गलत जवाब दे दिए, स्ट्रेस दे दिए, वॉट एवर दे दिए, सब उसको ला दे ले, क्योंकि मुझे कोई खतरा नहीं है, पुलिस के पास है, वो पड़ेगा चले जाते हैं डायरेक्टली, पुलिस को हैंडल कर लेती है। मगर मसला ये है कि हम जितने देर तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी ऑन वन पेज, वही मसला होता है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि 5 सितंबर को इतना बड़ा डेनमार्क के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन आ रहा है सब चीजों के खिलाफ, कि डेनमार्क की डेमोक्रेसी, इस्लाम, सब ये देखे ना, कि हम समझते थे कि वो लोग, कल मुझे एक बंदा कहता है वो 1200 थे, मैंने कहा एक बंदा पुत्र वो 1200 हो रहा 1300 हो, इंग्लैंड में वो कितने थे और आज देख इंग्लैंड में कितने हो। मैंने कहा एक चीज छोटी होती है एकदम लूज हो जाती है, उसको स्टॉप ना किया जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी होती जाती। मैंने कहा इसलिए हमारा काम बनता है, कभी भी हमारे पास टाइम है हम बैठे और इन चीजों को देखें और एक प्लेटफॉर्म बनाए तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं।
1: शाह साहब क्या समझते हैं अदनान जो कह रहे हैं, मुकाबले से ये कोई पॉजिटिव साइन जाएगा या कि नफरत बहुत ज्यादा फैलेगी?
0: देखिए जी, नफरत फैलाने में तो हम लोग कामयाब हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग सब हैं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी को बताता नहीं कि तुम्हारे ये फॉल्ट है, तुमने ये गलती की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, जो अदनान ने कहा है कि 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, ये एक यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ हुकूमत को चलाती हैं, फॉर्म 47 हमारे लोगों के लिए समझने के लिए बात ही होगा कि 45 को 47 में तब्दील कैसे किया जाता है, तो इस मुल्क के अंदर भी ऐसे होता है और हमने देखा है और हर दफा मुशाहदा किया है इस बात का कि सियासत जो है ये सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि पैसे से भी सपोर्ट होती है और बड़ी चीजों से सपोर्ट होती है। तो यहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, ये जो ग्रीन लैंड का मसला है, इनको ये गल में पड़ चुका है इस गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए ये यहाँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग। एक बंदा आके इंग्लैंड से आके यहाँ पे जिसका ईयू से भी तलक नहीं, वो यहाँ पे राशिज्म फैला रहा है। मैं सिंपल एक आपको मशवरा दूंगा कि मेरे जैसे शायद लोग पसंद करें ना, लेकिन मैं एक बात करूंगा जो हकीकत है। अगर ताहिरुल कादरी जो है वो डेनमार्क में नहीं घुस सकता, उसके ऊपर पाबंदी है कि वो यहाँ पे टेररिज्म की बात या कोई ऐसी बात करता है, करने आता है, ये इनका एलिगेशन है डेनमार्क गवर्नमेंट का, तो एज ए सियासी तजिया रगार मैं भी ये कहूंगा कि इन लोगों पे भी बैन होना चाहिए कि आप हमारा एक फ्रेंडली मुल्क है, हम अभी डेनमार्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क साबित किया गया है, तो ये कैसा खुशहाल मुल्क है कि जिसकी जो सबसे बड़ी अकलियत है वो ही दबाव में है, वो ही प्रेशर में है, उसी को गालियां पड़ रही हैं। तो क्या इसकी वजूहत क्या है कि एक हम लोग गबीयत बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा हमारे में बहुत ज्यादा चुधराहट है, हम बहुत बड़े राशिस्ट खुद लोग हैं। मैंने ये देखा है कि अब ये हमारे जो लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, इवन हमारे इधर अपना एल्बर्टसन के अंदर आप उनको सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब मिलेगा, वो शक्ल देकर दूसरे पर मुंह कर लेते हैं, और जब नहीं होते तो फिर वो आप उनके अंकल भी होते हैं, आप उनके सब कुछ होते हैं। तो ये जो रैशिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को उस वक्त पता लगेगा कि जो मैंने लोगों से वोट लिए, उनकी हमायत हासिल की, उसके बाद मैंने क्या किया। तो इसका हिसाब जो है ये हुकूमत अलबाद में आता है, और हुकूमत अलबाद में अल्लाह ताला ने बंदों को बख्शना नहीं, ख्वाह मैं क्यों ना हूं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि इन लोगों को डेनमार्क में ये पता लग चुका है कि यहाँ की हर कल्चर सोसाइटी, यहाँ की हर मस्जिद, यहाँ की हर तंजीम जो है वो एक दूसरे से अलहदा है, और ये कभी भी इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा इनको जिस तरफ दिल चाहे हांक लो, जिस तरफ दिल चाहे इनको ठुडे मार लो। लेकिन एक चीज राजा साहब याद रखिएगा कि जो हमारे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे टॉप लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कभी भी खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके लिए इनको रखना जो है ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनको अगले 10-15-20 साल में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो हम आम लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, छोटी छोटी कियोस्क चलाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, हमें अगर वो गलती पाई जाती है तो ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं। आपने देखा होगा, दलान ने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक डैनिश जो है वो फल्के पेंशन पे गया, तो उसने कहा कि मुझे फल्के पेंशन में एक टैक्स कार्ड को के मुझे 6,000-6,500 मुझे मिल रहा है, तो मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो मैंने तो इतनी उम्र काम किया और मैं कभी भी काम के बगैर, जब डैनिश ये कह रहा है तो क्या हमारे किसी सियासतदान ने ये सोचा है, या कम्यून लेवल में जाके या किसी गैदरिंग में ये कहा हो। पावरफुल आदमी उस वक्त होता है जिसके पीछे 100-200 बंदा होता है, वो इस चीज से वो पावरफुल बनता है, और फिर वो बंदों के सामने खड़ा होकर कहता है सियासतदान को कि देखो ये मेरे बैक है और तुम जो हम बात कर रहे हैं इसमें वजन होना चाहिए, फिर आपको वोट मिलते हैं, फिर आप उनको अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनसे रास्ता खत्म कर देते हैं, तो जो आपको लेके आया या जिस कमेटी में आप बैठे हैं उनको पता लग जाता है कि अब ये जो है ये पिंजरे में बंद हो गया, इसके पीछे जो बाउलेंस थी वो चली गई है, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपको आप सियासत में माइनस होना शुरू हो जाता है।
1: बात हो रही आगे, अदनान ने बड़ी अच्छी बात की, बात हम कानून कायदे के कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, अब हम अपनी गाड़ी पार्क सही नहीं कर सकते। मैंगो फेस्टिवल था जो अदनान बता रहे हैं, अदनान से भी जो है वो कमेटी वाले या दूसरे लोग जो है गिला कर रहे हैं, गाड़ियां हम गलत पार्क करते हैं। शाह साहब, क्या हम अपनी गाड़ियां दिखाने जाते हैं, अपना लिबास दिखाना चाहते हैं, या हमें एडवर्टाइज तो मैंगो फेस्टिवल की मैंगो की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी या टिक टाक की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी? ये तो पैसा कमाते हैं टिक टाक वाले।
0: मेरा ख्याल में कि इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। इनको ये चाहिए था कि बैंक में अकाउंट बंद ना करते, लोगों को बिजनेस के लिए खोलने की इजाजत देते, लेकिन ये जो लीजिंग पे छोटे छोटे वर्कर्स को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को काम करने के लिए इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां इन्होंने लीज कर दी है, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए था कि हाँ आप अपनी पूस्टेंट इनकम, आप अपने पूरे घर की इनकम, अपनी इनकम दिखाएं, आपके पास क्या बचता है। जैसे वो हम पेंशनरों से पूछते हैं कि भाई आपने अगर ये दवाई लेनी है तो इसकी फैसिलिटीज लेनी है तो आप पूरा खर्चा बताएं महीने का। फिर यहाँ भी ये देखते हैं कि ये छोटी गाड़ी में बैठने को पसंद करते। मैं इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो उसको पार्क करना, अगर आपको नहीं मिला तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर आप पार्क कर ले। आप बस में आ रहे हैं, आपकी इज्जत कम नहीं होगी? जो आपका उसी गांव का रहने वाला बंदा वो उतनी ही बातें आपके खिलाफ करेगा, कहेगा हमें इसको पुराने, मुझे नहीं बख्शते, मैं गुजरात शहर का किसी वक्त खाते, मुझे नहीं लोग बख्शते, यहाँ पे नहीं बख्शते, गाड़ियां देने से बाज नहीं आते। तो ये इन बड़ी गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी गाड़ियां ले, अपनी इज्जत बनाए, लोग आपको इज्जत दे। माशाल्लाह आप इस मुल्क में बड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर पाकिस्तान से आए थे, तो आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप सबसे पहले। एक दूसरी बात मैं राजा साहब यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इदनान भी इस पे करें। हमारी कम्युनिटी को, खसूसी तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को सबसे बड़ी नुकसान इस बात पे हुआ है कि जो हमारी यहाँ पे डिवोर्स हो रही है इस वक्त, सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट जो है, मैं हैरान हो गया हूँ अगले दिन अखबार में पढ़ के कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा शरह जो है वो डिवोर्स की है, और बाद लोगों ने दो दो तीन तीन दफा डिवोर्स लिया यहाँ इस मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही इंतहाई खतरनाक है, और इसके ऊपर भी कोई कानून बना सकते हैं। दलान इसके ऊपर बात करें, ये बताए कि इसके नॉलेज में क्या है।
1: शाह साहब, ये बातें तो कानून की तो कानून दान ही कर सकते हैं। तो अदनान, आपने ये सारी चीज़ों को देखा कि हम सियासी जमातों में इकट्ठे नहीं होते, तकसीम हो जाते हैं, जहाँ जिन जिन ममालक से आए उनमें तकसीम हो जाते हैं। सियासतदान तो हर वक्त फिट रहता है, जो वोट देने वाले होते हैं, जो तावन करने वाले होते हैं, एक बंदा राइट पे हो जाता है, एक लेफ्ट पे हो जाता है। मैं अदनान को पसंद नहीं करता, मैं शाह साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि अदनान से मेरी मुखालफत है, मैं शाह साहब को वोट दूंगा। जो शाह साहब को पसंद नहीं करता वो कहता है मैं शाह साहब को नहीं पसंद करता, मैं अदनान को वोट दूंगा। जब हम नज़रियाती वोट ही नहीं देते, तकसीम होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग की हद तक महदूद है। जी अदनान,
3: देखिए राजा साहब, इंसान को उसकी काम से वोट देना चाहिए और उसकी बैकग्राउंड से देना चाहिए, नाम से किसी को वोट नहीं देना चाहिए, एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा काम कर रहा है अच्छा और कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा। और शाह साहब की बात सही है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, डिवोर्स काफी है और इस पे वोट करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी किया जाएगा कि क्या वजह है, और ये इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई राय भी आएगी। मगर अभी मैंने इस पे गौर इतना नहीं दिया, मगर इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं गौर दूंगा और देखूंगा इस चीज को, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से कि इस चीज का बेहतरी आए।
1: तो अदनान, बड़ी खुशी की बात है जो हमारे सिटी काउंसिल्स हैं या जिन जिन कमूनों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिल गई हैं, वो सारा कुछ मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया है, खुशखबरी की बात है। मैं अब खुद तो नहीं जाना चाहता, वो खुद ही बंदों को अपनी खुशखबरी जो है खुद सुनानी चाहिए। तो शाह साहब, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आ रही हैं, जिस तरह आप दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं, वो मैं चाहता हूँ जिनको खुशखबरी मिली है वही ब्रेकिंग न्यूज़ दें।
0: ये राजा साहब, बात ये है कि हमने तो ये देखना है कि ब्रेकिंग न्यूज वो होती है कि इन्होंने क्या किया। देखिए, आप सियासत में आए, आप हारे आप जीते, ये मैदान में होता है, लेकिन अगर आप हार कर भी अपनी जीत को बरकरार रखते हैं और आप सियासत में एक्टिव होते हैं और सियासतदान साबित करते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रेडियो पे मीडिया पे हर सूरत आना है। मैंने अपने ख्याल जो है अगले 4 साल के लिए जो मैंने इलेक्शन लड़ना है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो लोगों में वो ज्यादा पावरफुल और मजबूत और कादावर बनकर आएंगे। लेकिन अगर आप सडनली इलेक्शन से 4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने खानदान की पावर से मैं फलानी बिलादरी से हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, और फिर लोगों के तले करके मिलते करके आप वोट लेते हैं, आप आगे जाते हैं, तो ये नुकसानदेह है। फिर आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी कि हमें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हमें दूसरा काम। देखिए आप इलेक्ट हो ही ना, आपको सियासत का शौक है, आप लिखे, आप सियासत में आए, जरूर आए, आप जाके फलके दिन के उधर में बैठ जाए, आप कम्यूनों के अंदर जाके वहां पीछे बैठ के उनकी कमेटियों का सुनेंगे, इजलास क्या करते हैं, आप अपनी सियासत में वहां बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडल से जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में भी सुरखू हो जाए कि हमें हमसे बड़ा सियासतदान डेनमार्क में कौन ही, और हालांकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो डेनिश सियासतदानों से उनमें जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ के डेनिश जो है उनके अंदर बेशक वो कितने बड़े राशिस्ट हो उनके अंदर फिर भी नेशनलिज्म है, वो ये नहीं कहते कि जाओ तुम पीछा गलत बोल रहा है रेडियो पे इसको पकड़ के मुल्क से आउट कर दो, नहीं वो कहते हैं कि ठीक है हाँ जब ये स्टेट के खिलाफ जाएगा तो पीछा स्टेट के खिलाफ बात करेगा तो फिर हम इसको कानून की जात में लाएंगे, लेकिन अगर ये सियासत और सियासत को सियासी चीज करके तजिया कर रहा है तो वो कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। और हमने इस रेडियो पे आपके प्लेटफॉर्म पे एक दफा नहीं लाखों बार हमने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हुकूमत जो है ये सियासतदानों की होती है, ये कोई अपना स्टेट नहीं होती, तो हम कभी भी डेनमार्क की स्टेट को अल्लाह माफ करे हम कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये अब हमारा वतन है, ये हमारे बच्चों का वतन है और हमें यहाँ रहना है और इसी वजह से हमारी इज्जत है। अगर हम डेनमार्क में ना रहते होते तो पाकिस्तान में
1: तो शाह साहब मैं ज़िमनन सवाल कर रहा हूँ, शाह साहब आपसे ज़िमनन सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग डेनिश पासपोर्ट रखते हैं और पाकिस्तान की स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं।
0: जी वो जो स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो ये समझ लेंगे कल को जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो स्टेट जो एयरपोर्ट पर उनका असर करेगी वो कहीं भी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में कि मेरे पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक पुलिस के महकमे से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि आप ये बड़ी चीज याद रखें कि ये जो आप व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पे आप मैसेजेस खोलते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं तो वो उसमें ये गिना जाएगा कि आप उनके हमदर्द हैं और आप उसको फिर दूसरे बंदे को बेच रहे हैं कि लो तुम भी पढ़ लो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्रोपेगंडा होता है, तो इसमें आप लोग शामिल हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ये मैसेज अपने लोगों को दें कि खुदा रहा ऐसी ऐसी जो मेल आपको आती है उसको डिलीट कर दें, उसको खोले ही ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको फौरन डिलीट कर दें और बल्कि उस बंदे को अपने ग्रुप में शामिल ही ना होने दे ताकि वो अच्छी हरकतें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा अफगानी और हिंदुस्तानी जो है भारतीय वो इस वक्त हमारे नंबर यूज करके हमारे नाम यूज करके तो वो जो है वो हमारे ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो आगे आ रही है। श्री राजस्थान
1: अदनान क्लोज करते हैं, अदनान को हाल बताएं, ये जो सियासत है ये जमहूरी मुल्क है या जमहूरी तरीके से ही राइट्स मिलेंगे, जब तक इन पार्टियों के अंदर नहीं जाएंगे, इनके मेंबर्स नहीं बनेंगे, कम्यून में अपनी तादाद को बढ़ाएंगे नहीं, पार्टियों में तादाद बढ़ाएंगे नहीं, तो कोई भी कानून नाम तब्दील नहीं कर, यही बात है पार्लीमेंट में, यही पार्लीमेंट में जाकर काम करना होता है। मेरी अच्छी बातें करने से, शाह साहब की अच्छी बातें करने से, आपकी अच्छी बातें करने से तो बात लोग सुन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लोगों को जब लोग कहते हैं शाह साहब उनको यहाँ की डेनमार्क की सियासत करनी चाहिए, इन पार्टियों में जाना चाहिए, अगर इन पार्टियों में जाते नहीं है बंद कमरों में सियासत की जो है बुचाड़ करते हैं शाह साहब, फिर तब्दीली नहीं आएगी।
3: यार साहब बंदे को पार्टियों में जाना चाहिए, और किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और स्टेट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए बंदों की राय। और मेरी यही राय है कि हमें इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में और लोग ज्वाइन करें पार्टियों को, और मेरे लिए सबके लिए दुआ है कि ये लोग का अपना जो लोगों का फैसला होगा वो लोगों का होगा। मेरी तो यही है सर कि बंदे को पार्टी में रहना चाहिए।
1: शाहब, आखिर में आप क्या कहेंगे, और आप अदनान का शुक्रिया भी अदा करें, प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
0: ये बिल्कुल मैं आपको बताता, जो स्टेट होती है, फौज का अदारा होती है, दफाई अदारे होते हैं, फाइनेंस के अदारे होते हैं, पुलिस के अदारे होते हैं, जो अमन अमान के अदारे होते हैं, जो परमानेंट काम करते हैं स्टेट के अंदर, वो होती है स्टेट, और इस तरह पार्लियामेंट भी आपकी जो है वो स्टेट है, लेकिन जो सियासत है वो हुकूमत होती है। आप सियासतदान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मुल्क के इन अदारों के खिलाफ बात करेंगे तो वो स्टेट के खिलाफ बात जाती है, और उसको ये बहुत खतरनाक बात है। इसकी सजा जो है पाकिस्तान में और बहुत दूसरे ममालिक में, इवन डेनमार्क में डेथ पेनल्टी है कि आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। तो इससे लोगों को परहेज करना चाहिए, यह ना समझना चाहिए कि सारी उम्र हमने यहाँ बैठे रहना, किसी ना किसी वजह से हमने वापस अपने अपने मुल्कों में जाना है। तो इदनान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छी मालूमात दी, और जैसे तुमने वादा किया कि अगले किसी भी प्रोग्राम में तुम फुल इंफॉर्मेशन लेके आओगे कि हमारे जो यहाँ डिवोर्स रेट है इसकी वजूहत क्या है, और इनके पीछे जो अवामल है वो क्या क्या है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे मैं भी अगर साथ हुआ तो मदद करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लिसनर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया। अब गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो कोई हम भी एंजॉय कर लें। ठीक है राजा साहब, अल्लाह हाफिज।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: लोगों को आगे लाया जाएगा जिनके लिटरेचर के लिए, मीडिया के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात है।
1: मलिक साहब, यूरोप में जो है और कौन से फैसले जो है मुतवक्को हैं?
0: यूरोप में हम एक्टिवली देख रहे हैं जी, तुर्की है जो ड्यू है, ग्रीस है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये एक्टिवली इसको देख रहे हैं। ये ओदे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो डार साहब जो है इसके ऊपर मीटिंग कॉल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो फैसला होगा उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। लेकिन ये चार मुल्क सरदस्त जो हैं वो लिस्ट में हैं जो यूरोप में रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डार साहब के फैसले के इंतजार में हैं।
1: मलिक साहब, ओपीसी पंजाब, ओपीएफ पाकिस्तान, क्या कहेंगे, ग्लास हाफ फुल या हाफ?
0: मैं ग्लास फुल ही समझूंगा। इमरान खान साहब के दौर में ओपीएफ का चेयरमैन ही नहीं लगा 4.5 साल, उसका बोर्ड ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और बगैर हम वजीर के काम चलाते रहे। जुल्फी बुखारी साहब आधे पचद्दे वकील थे, वजीर थे, वो ज्यादा काम तो इमरान खान साहब के साथ था उनका। तो मेरा ख्याल है कि ग्लास हाफ फुल के आपके पास सालिक साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, ऑन चौधरी साहब जूनियर मिनिस्टर हैं, कमर रजा शाह साहब बरतानिया से चेयरमैन हैं, फिर अफजाल भट्टी साहब MD OPF हैं, फिर आपके पास पूरा बोर्ड है जिसमें खालिद शाहीन भट्ट साहब MD बैतलमाल भी हैं, और आसिफ चौधरी साहब जापान से हैं, और मैडम भट्ट हैं जो दुबई से हैं, अमेरिका से जो है वो एक मेंबर बोर्ड है। तो ये काफी आपके लिए, कामरान खान साहब हैं भट्टी साहब के ब्रदर इन लॉ, तो ये आपके लिए एक नए 8-10 चेहरे ओवरसीज की खिदमात के लिए फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। कन्वेंशन मुकर्रर मुनक्कद करवा के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जी उन वो काम करना चाहते हैं, और 16-17 रुकन काती प्राइम मिनिस्टर का ऐलान जिसके मुताबिक ओवरसीज को मराहत मिली। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ग्लास हाफ फुल की निशानी है। ओपीसी पंजाब में आपको मेरी सूरत में एक ओवरसीज पाकिस्तानी दिया है जो आपका नुमाइंदा है, आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, और हम जदीद बुनियादों पे पोर्टल को, ओवरसीज सेंटर को, फैसिलिटेशन डेस्क को, 41 जिलों में ओवरसीज अदालतों के जरिए हम नई असलाहत लेके आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पहिया मजीद घूमेगा, आपको ओवरसीज के डेस्क एयरपोर्ट पे मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये अदालतें आहिस्ता आहिस्ता आपकी गवाहियां डेनमार्क से बैठ के आप एम्बेसी से अदालतों से रुजू कर सकेंगे, और ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन है वो कंप्यूटराइज हो रही है, उससे आप यहां बैठे डेनमार्क से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकेंगे, बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे, जो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होता था जिसमें काफी फ्रॉड होता था, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैप करें, और पंजाब के लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए उसका जो है हल निकाल।
1: मलिक साहब, हुकूमत में शफल की खबरें चल रही हैं, कहाँ तब्दीली आप देख रहे हैं और कहाँ उम्मीद रखनी चाहिए? इसके अलावा आपने लैंड रजिस्ट्री की बात की, तो इस पर बहुत सारी बातें रिश्वत की भी चलती रहती हैं।
0: लैंड रजिस्ट्री में आपको जब कंप्यूटराइज लैंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो तो आप रसीद जमा करवाएंगे बैंक में, और अपनी रजिस्ट्री जो रजिस्ट्रार आपका कॉन्सुलेट है ये रजिस्ट्रार बन जाएगा, तो आपको रिश्वत वाला तो मामला ही निकल जाएगा ना जी। आप पैसे देंगे बैंक में और अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे। जहां तक शफल की बात है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातों का मंबा बन के कोलिशन गवर्नमेंट है, और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के वजीर भी हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी हैं। अब तक तो जंग जीतने के बाद पैर अच्छा काम कर रहा है, आप सालिस बने हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में, ये बहुत बड़ा ऑनर है, आपको USA का प्रेसिडेंट नाम से जानता है, आपके मुल्क की ये बहुत बड़ी इज्जत है कि वो जनरल आसिम मनीर और शबाज शरीफ, वजीर आजम शबाज शरीफ और डेप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब को जानते हैं, मिलते हैं, बैन अल-अक़वामी दुनिया में वजीर और जो वजीर आजम हैं वो आपके जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे राबते में हैं, तो ये आपके लिए खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। अब इसको आप ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक रिवाइवल में तो ये पाकिस्तान मजीद आगे तरक्की कर सकता है, और ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानी जो $41 बिलियन सालाना भेज रहे हैं वो आपको कुमक फराहम

0: रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से अच्छा वजीर आजम अंडर द सर्कमस्टेंसेज नहीं मिल सकता, और उनसे काम चलाना चाहिए। वो एक बेहतरीन मुंतजम है। जो भी तब्दीली आए नए इलेक्शन के बाद ही आनी चाहिए। लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त जो इंटरनेशनल दुनिया में ऑरा बना है उसको मुल्की मफाद में इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे मोटे वजीर चेंज होते रहते हैं, वो तो कोई
1: मलिक
0: इशू नहीं।
1: साहब, इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, टाइम पर हो जाते हैं, तो आप क्या तैयारियां देख रहे हैं अगले इलेक्शन की?
0: देखिए, अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खात्मा करके ऑपोजिशन के साथ प्रॉपर कोई एसओपी तैयार करना है, जिसके तहत जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर, उसकी साख के ऊपर उंगली ना उठे। तो उसमें गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन का बड़ा रोल होगा कि वो 6 महीने साल पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और वो जो इस्लाहात चाहिए, वो जो कैवियट, जो गारंटीज चाहिए, उनको इंश्योर करें, ताकि ये बखेड़ा जो है ये वंस फॉर ऑल खत्म हो जाना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कहाँ होती है, क्यों होती है। जो तकद्दस है बैलेट का वो बरकरार रहना चाहिए, और जो अवाम जिसको वोट देते हैं उसकी सेंक्ट्री सेंक्टिटी जो है वो महफूज रहनी चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट एंड अपोजिशन दोनों का ही किरदार है, और एस्टेब्लिशमेंट को एज अ फैसिलिटेटर किरदार अदा करना चाहिए, और पॉलिटिकल फॉर्मूले के तहत अगले इलेक्शन से पहले ये चीजें हो जानी चाहिए, ताकि ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, या जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तब भी इस तरह की जो है वो जो शिकायत निकली थी जो अदालतों ने सुनी ही नहीं, दो दो ढाई ढाई साल। तो ये पहले हल हो जाना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स बा इख्तियार हों, आपकी जो अर्जियां जल्दी सुनी जाएं, आपके जो बैलेट है वो ठीक हो, आपने कैसे वोट डालना है, ये फिर तजर्बे जो है लास्ट मिनट नहीं होने चाहिए। आपका आरटीएस फेल हो जाता है, क्यों हो जाता है, 61 अरब लगा के भी आरटीएस फेल हो जाता है तो फिर इतने पैसे लगाने का क्या फायदा। आप ये चीजें पहले तय करें, ताकि इलेक्शन से पहले ये चीजें और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, एक अच्छा फेयर इलेक्शन हो, और अवाम जिसको मुंतखब करें उनको हुकूमत करने का मौका मिले।
1: मलिक साहब, ओवरसीज सेल, ओवरसीज अदालतें, मजीद क्या मुतवक्को है?
0: देखिए, मेरे ख्याल में हम ये ओवरसीज में अभी भी कश्मीर के इलेक्शन की वजह से काफी आ, आ, काफी जो है वो हालात यूके यूरोप में कशीदा हैं, और जो ऑपोजिशन है उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल को रोका नहीं है। मुल्क के खिलाफ जहां भी उनको मौका मिला है, चाहे IMF है, चाहे GSP+ है, चाहे पैसों का भेजना है बैंकों के जरिए, उसमें ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को एज अ रियासत नुकसान पहुंचे। उनके जो यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क से भाग के आए हैं, वो सुबह शाम मोनेटाइज जो है अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं मुल्क के खिलाफ, जो है सारा दिन वो जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी तरीके से मुल्क को कमजोर किया जाए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में वो जो एवालांच है, जो मंशूर में हमने 16 नुकात दिए थे, उसमें से कुछ चीजें अभी तक आगे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, हम असम्बलियों में 10 सीटों की बात कर रहे थे मंशूर में, यहाँ दोहरी शहरियत खत्म होने की बात हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि ऑपोजिशन ने जो रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला काम है उसको नहीं रोका। इमरान खान को सपोर्ट करना और बात है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना और बात है। भारत के साथ जंग में भी जो लोग हैं उनकी फौज को सियालकोट में लेके आ गए थे, कराची के ऊपर कब्जा हो गया था। तो ये जो रोल है, या ऐसे जो लोग जो फौज से भागे हुए हैं या फौज में उनका कोई रोल नहीं है, वो भी म्यूटनी डालने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से ये हमारी जो पेशरफ्त है कि पार्लियामान में ओवरसीज की सीटें हो उसके ऊपर मजामत हुई है और वो रुकी है बात। अदरवाइज अब तक लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए थी, ये काम अभी रहता है। दूसरा, ये अदालतों वाला भी, ओवरसीज वाला भी जो है, जो आपके जो अदालतें जो हैं वो आपके शहर से सफारतखानों के जरिए आपकी गवाही डालेंगे, वो काम भी अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। अदालतें लग गई हैं, जज लग गए हैं, कोटल के जरिए आपको अदालत में पेश करवाना है, उसके ऊपर पेशरफ्त अभी रुकी हुई है। कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन अभी होना था, वो रुका हुआ है। वो मेरे ख्याल में विद इन 6 months या इंशाल्लाह ताला अगले साल समर तक हो जाएगा, जिसमें पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा कि कितने इकदाम का ऐलान किया था वजीर आजम साहब ने और कितने इकदाम के ऊपर अमल हुआ है। और तीसरा, ये जो पूरी दुनिया में एंटी जो ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ एक आवाज बनी है, ग्रीस में कश्तियां उलटने के बाद पाकिस्तान में स्मगलर्स के ऊपर हाथ डाला है, उसकी जगह लेने के लिए स्किल्स इंस्टीट्यूट्स का क्याम अमल में लाया गया है और उसके जरिए वो इसी को रिवैम्प किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान लीगल चैनल से बैन अल-अक़वामी दुनिया में लोगों को भेजे। तो वो एक अच्छी चीज है जो अगर आगे बढ़ के आपकी नर्सेज, डॉक्टर्स, आपके हुनरमंद अफराद को मुल्क से बाहर भेज सकती है, जो कि मेरे ख्याल में अगर आगे चल के ये बेहतर किरदार अदा कर सकती है। और मुल्क में सरमाया लाना उसके लिए ग्वादर हो, GSP+ हो, या पाक चाइना जो है कॉरिडोर हो, उसमें सरमायाकारी के मौकों के ऊपर मेरे ख्याल में SIFC भी काम कर रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम कर रहा है, इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है। हम सालस रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, और अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं विद सऊदी अरेबिया, तो इसकी ट्रांसलेट भी होना चाहिए। पाकिस्तान का कर्जा माफ होना चाहिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर मौके होने चाहिए ताकि ये लोग मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में सरमायाकारी कर सकें, अपने मुल्क में जो है सरमायाकारी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। ये वो चीजें जो है अभी रहती हैं, जो चीजें हुई हैं कन्वेंशन के मुताबिक वो मैंने आपको बयान कर दी।
1: मलिक साहब पंजाब की बड़ी पावरफुल खातून हैं, लेडी हैं, बड़ी मजबूत उनका बैकग्राउंड है, मरियम नवाज साहिबा। आप उनकी हुकूमत या उनके मुतलक, आप उनके कारनामों के मुतलक, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? वो अरबों रुपए के बजट दे रही है MPs को और एक्टिव रोल अदा करती हैं, लेकिन आगे ईमानदारी जो है वो आगे जब पैसा दिया जाता है तो पैसा तो खजाने से निकल जाता है, MPs को मिल जाता है या MNAs को भी जो मिलता है, पार्टियों को भी मिलता है, तो वो ईमानदारी कहाँ से लाएंगे?
0: देखें, आप ये आप समझे कि जिन हालात में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वजारत आला संभाली थी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं था। वहाँ पे स्कैंडल्स थे, भर्तियों पे स्कैंडल थे, अपॉइंटमेंट्स पे स्कैंडल थे, और आपने देखा ही है कि पता ही नहीं था कि वजीर आला काम किस तरह कर रहे थे। बुज़दार साहब शरीफ आदमी हैं, लेकिन जिस तरह की कॉम्पिटेंसी पंजाब को चलाने के लिए चाहिए थी वो उनमें नहीं थी, और उसको रिप्लेस करके उन्होंने एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, आप देख लें चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के IG ने और FIA ने मिलके एक संभाला दिया है। दूसरा, उन्होंने अमन व अमान पैदा किया है, वो जो बेरा रवि थी, वो जो बिल्कुल लॉलेसनेस थी, उसका खात्मा किया है। तीसरा, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आप आम हालात में इस तरह के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट नहीं कर सकते। साफ सुथरा पंजाब है, आपने हर जिले में सफाई की है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट लेके आए हैं, आप बच्चों के लिए, खवातीन के लिए बाइक्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप फिर अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने बनाए हैं, आपने एयर एम्बुलेंस लेके आए हैं, और आपने किसानों के लिए कार्ड निकाला है, बेवाओं के लिए कार्ड निकाला है, यतीमों के लिए कार्ड निकाला है। तो ये कोई आसान काम नहीं है इस तरह के दूरस असरात के हमल इश्यूज को करना। मरियम नवाज शरीफ हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद दी जाती के उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे टीम है उन्होंने करप्शन, ब्राइबरी और इस तरह का खात्मा करने में मदद की है, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, अरबों खरबों के यहाँ बजट हैं, चीजें हैं, कई लोग होंगे जो इस सूरत हाल से या अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे, उठा लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यह कि पकड़े जाएंगे, क्योंकि या जब लीडरशिप ये कह दे कि जी हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, और अगर किसी का मैलफिशेंस में, पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया तो बचेगा नहीं। तो देखना ये है कि अगर पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया, क्या उसकी फिर पुष्ट पनाही होती है या उसको कटहरे में लाया जाता है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगी और वो लोग बच नहीं सकेंगे, फिर अपनी नौकरियों से जाएंगे, अब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जहां के ऊपर पब्लिक पर्स में खयानत का अमल आया वहां पे फिर वो अपनी जॉब से जाएंगे। तो ये मुझे यकीन है कि मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ेंगे।
1: खुला नहीं छोड़ेंगी। मल साहब, ओवरसीज के क्या इश्यूज पेंडिंग हैं, मंशूर मुतालबात और लोगों की आरा देखते हुए?
0: देखिए राय साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं। यूरोप, यूके, अमेरिका के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। हमारी जो जहां दोहरी शहरियत नहीं है वहां दोहरी शहरियत लाना है, स्पेन उसमें शामिल है। जहां दोहरी शहरियत है ही नहीं और वहां पीओसी कार्ड होता था, वो पीओसी कार्ड बनाने में आजकल बड़ी देर लग रही है। एयरपोर्ट में इमेज का इशू है, वहां पे एयरपोर्ट सेल्स बेहतर होने चाहिए। आजकल डिजिटल का जमाना है, अब तो फोन पे सारा कुछ होता है, एयरपोर्ट पे ही होना चाहिए निजाम। अगर कोई मसला पड़ता है यानी कार्ड रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल, ये सारी चीजें एयरपोर्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा वहां पे काम करता है, ग्रीन जोन बेहतर कर देने चाहिए। अब तो स्कैनर्स का जमाना है, या स्कैनर लगाएं और आप अपनी जो जो आता है सामान बैगेज उसको क्लियर कर लें। अब स्कैनर बता देते हैं इस चीज इसमें क्या चीजें, अब आप खोल खोल सामान जो है वो लोगों को तंग करते हैं वहां, फिर रिश्वत सतानी होती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, लोग इमेज को इसके साथ रिलेट करते हैं। या पढ़ने वाले ग्रेजुएट या ए लेवल करने वाले बच्चे जब पाकिस्तान जाते हैं और उनका बैग खोला जाता है और वहां रिश्वत देनी पड़ती है, वो एक बैड इमेज लेके पाकिस्तान से वापस आते हैं। और फिर पाकिस्तान में जाने वालों से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को लेके अपने गाँव में ही ना घुस जाए, उनको दिखाएं मुल्क में जहां तरक्की हो रही है। आप कश्मीर से हैं तो मुजफ्फराबाद लेके जाए, इस्लामाबाद लेके जाए, आप लाहौर में हैं तो अपना लाहौर की सैर करवाएं, या इर्दो गिर्दो नवाज से हैं तो अपना मेन कराची से हैं तो कराची शहर। ये ना हो कि ये बच्चे जाके सिर्फ वही इमेज देख के आए जो आपके गांव का है, और उसका नुकसान ये है कि वो आके एक बेहतर इमेज नहीं लेके आते, और वो फिर बच्चे जब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं तो वो मोरक्को, तुनिजिया, तुर्की भागते हैं, वो अपने मुल्क जाने को प्रेफर नहीं करते। तो आप अपने मुल्क का बेहतर जो है वो तशख्स पेश करें, ताकि बच्चे पुट ऑफ ना हो।
1: मलिक साहब, बाज़ लोग आपको मुकम्मल तौर पर लाहौर देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है?
0: मुकम्मल तौर पर लाहौर ही हूं, ये डिजिटल का जमाना है आजकल, फोन अभी हम मैं अगर आप कहें कि जी डेनमार्क आगे ही प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे, तो शायद हम एक भी ना कर पाते। तो मैं तो तकरीबन एवरी अदर 6 मंथ्स आपके साथ प्रोग्राम में पिछले 10 सालों से आ रहा हूं। तो ये डिजिटल का जमाना है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को लेना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आना जाना रहेगा। मेरी फैमिली यहाँ है तो मुझे आना पड़ता है, मेरा एक चलता चलाता दफ्तर है 20 साल से, मेरे क्लाइंट्स हैं 5,000 से ज्यादा, तो उनको सर्विस देनी पड़ती है। और ये एक वॉलंटरी जॉब है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चेयरमैन का वहां होना जरूरी है, कमिश्नर का वहां होना 24 घंटे जरूरी है, वाइस चेयरमैन तो एक अलामती ऑनरेरी पोजीशन है, ये तनख्वाहदार पोजीशन नहीं है। तो हम अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना वॉलंटरीली कर सकते हैं, और उस सिलसिले में फिर रोजगार भी चलता रहता है, जिससे हम जो खर्चा होता है उसको सर्विस करते हैं अपने दफ्तर से। तो एक अच्छा निजाम चल रहा है, जहां जरूरत होगी। आजकल तो PIA की फ्लाइट चल गई है मानचेस्टर से लाहौर, मैडम को जब जरूरत होती है तो हम जो है विद इन 10-15 आवर्स लाहौर मौजूद होते हैं, और मैं खुली कचहरी करता हूँ हर महीने के आखिर पे। तो ये साइलिन के लिए एक मौका होता है कि जिनके मामलात रुके हुए हैं तो वो उस खुली कचहरी में आते हैं और बताते हैं, और वहां पे मौका पर अफसरान मौजूद होते हैं और हम मौका पर अहकाम लेते हैं ताकि उनकी दादरसी हो सके। वैसे भी जब मैं वहां जाता हूँ वहां मेला लगा रहता है, और यहाँ दफ्तर में भी 4 से 6, 1 से 2, सैटरडे का पूरा दिन, आज देखिए पूरा दिन आपके साथ लग जाएगा, तो सैटरडे का पूरा दिन काम करता हूं। तो ओवरसीज के लोग, उनके साथ एक्सेस है, और जो भी उनके जुमला मामलात होते हैं उनकी हमारे साथ डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ 24 घंटे रहा रहता है। और कुल वक्ती कमिश्नर जो है वो OPC में मौजूद है, जो 21 ग्रेड का मुलाजम है, तो वो भी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं।
1: मलिक साहब, बड़ा अच्छा कि आपने वजाहत कर दी कि लोग तो समझते थे जिस तरह ये अमेरिका वार को किस तरह देखते हैं, इसी तरह शायद लगता है ऐसे था कि आपको भी कोई करोड़ों के हिसाब से महीने के पैसे मिलते हैं।
0: नहीं, ये वॉलंटरी जॉब है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, बल्कि इसके कोई पर्क्स प्रिविलेज भी नहीं है। और वो तो मरियम साहबा की मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर का दर्जा दिया हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लैग कार दी है तो ड्राइवर है साथ, लेकिन उसमें कोई पैकेज नहीं है जो, यानी तनख्वाह तो खुद ही होती वाइस चेयरमैन।
1: मलिक साहब चलें इस पर बात आगे बढ़ते हैं, सवाल मेरे पास काफ़ी हैं, जल्दी से करना चाह रहा हूँ। सितंबर में अक़वामे मुत्तहिदा का इजलास इवेंट फुल हो सकता है?
0: देखें, अक्वामे आलम को कोशिश करनी चाहिए कि अक्वामे ये जो सितंबर का इजलास है उससे पहले पहले ईरान यूएसए वॉर को कंक्लूड करें और अग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। सितंबर के यूएन के इजलास के दौरान में अगर ये सुलह का कोई अच्छा देरपा हल निकाल लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा यूएन के प्लेटफॉर्म से अमन का मैसेज जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे यूएन अपनी अफादियत खो रहा है, पीस भी कहीं धुंधला जाएगा और ये मुल्क के लिए और रीजन के लिए और पूरी दुनिया के अमल के लिए खतरनाक होगा। जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, आम आदमी की बसात से रोजमर्रा की अशिया जो हैं वो निकलती जा रही हैं और ये बहुत खतरनाक होगा अगर ये रुझान चलता रहा। आप जंग के हालात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते और अब हम तकरीबन तकरीबन ये पूरा साल जंग में गुजार रहे हैं, तो आप सोचें कि माइनर वीकर इकोनॉमीज के ऊपर इसका क्या असर हो रहा होगा। यानी पेट्रोल जो है बसात से बाहर हो गया और लोग घरों तक मैसूर हो गए हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते। अब तो मोटर बाइक वाले चीखना शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल अफोर्डेबल नहीं है, तो ये आगे चल के हर गरीब मुल्क के ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा, कर्जे का बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा। और ये बहुत सारे मजमरात हैं इसके, बहुत सारे इसके असरात होंगे, नेगेटिव असरात इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अक़वामे मुत्तहदा का इजलास अमन के हसूल के लिए दूरस नतज का हमल हो सकता है अगर बड़े ममालिक उसमें अपना किरदार अदा करें।
1: मलिक साहब बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। मलिक साहब इस बड़े तंदूर पर तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन सारे हालात में मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके, वो क्या सोच रहे हैं?
0: देखिए, उनकी बेटी जो है वो उनकी जेरे निगरानी, उनके रुफका की जेरे निगरानी वजारते आला के ऊपर वो एक बड़ा एक्सपीरियंस ले रही हैं। उधर जरदारी साहब जो हैं वो अपने बच्चे को, मेरा ख्याल है कि वो ही इज ग्रूम्ड टू बी अ लीडर ऑफ हिज पार्टी, पीपल्स पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगली जनरेशन को ये जो तजर्बे का मौका मिला है ये मुल्क के लिए और सियासत के लिए बेहतर है कि कोई ना कोई आगे चीज जो है वो है। उधर शहबाज साहब के बच्चे भी, दो सलमान और हमजा, उनकी मावनत करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है कि ये नौजवान नस्ल जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सीख रही है। मियाँ साहब मेरे ख्याल यही सोच रहे होंगे कि एक तरफ उनका भाई वजीर आजम है, एक तरफ उनकी बेटी वजीर आला है, और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो स्टेक होल्डर पार्टी है वो उनकी अलाई है, तो वो सोच रहे होंगे कि किस तरह ये 4-5 साल गुजरे ताकि ये लोग जो हैं इस जो काम है इसको लोगों के सामने पेश कर सकें और आइंदा के लिए अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी पॉलिसी बना सकें। अभी क्योंकि इस टेन्योर में तो उनका आगे बढ़ के उनका कोई रोल नहीं बना, लेकिन अगले सेटअप में उनका बहुत बड़ा रोल होगा कि हाउ ही पिच हिज इलेक्शन कैंपेन, हाउ ही ट्रांसलेट जो काम उनकी बेटी ने किया है, भाई ने किया है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, और हाउ ही टैकल द ऑपोजिशन, क्योंकि जाहिर है अगर ऑपोजिशन इज लेड बाय जो करंट ऑपोजिशन लीडर हैं तो वो भी एक बड़ा एक देखना पड़ेगा कि अगर आप एकदम उनको फ्री हैंड मिलता है और अवाम की जो फीलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए तो यूथ को गैल्वनाइज करना, हुकूमत में रह के जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो एकदम लोगों के साथ राबता साजी एक बड़ा जुए शीर लाने के मुतरादिफ काम है। तो ये हुकूमत से 5 साल निकल के जाके पब्लिक में जाना, ये बड़ा लीडर चाहिए, और नवाज शरीफ साहब का होना मुस्लिम लीग नून के लिए बायस बरकत है कि वो एक लीडर वजूद होगा जो अवाम में जाएगा और अवाम को अपनी तरफ रागब करेगा। इसी तरह बाकी लीडर भी करेंगे, तो यही एक टेस्ट होगा कि कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इन 5 सालों में किए काम को अपनी कामयाबियां गंवाने के लिए, गनवाने के लिए कि लोग उसके ऊपर वोट भी दें।
1: मलिक साहब आपने بہت ساری باتیں کی اور کھل کر کی, تو ہمارے معاملات جو فارن آفس کے یا فارن جو دوسرے ملکوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کا فارن جو فارن افیئرس ہے, فارن چونکہ وہ فارن منسٹر ہے, اور ان کی کارکردگی کو یا ان کا کام کیسے چل رہا ہے؟
0: میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے انڈیا کی جنگ بھی جیتی ہے اور سالسی کے پیچھے فارن آفس کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ جو آپ کے چیف جا رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ کے وزیر اعظم جا رہے ہیں عرب ممالک میں, ترکی میں, پوری دنیا میں, تو فارن آفس تو پوچھے ایک بیک بون ہوتی ہے جو یہ سارا منورنگ جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. اسحاق ڈار صاحب فائنینس کے آدمی ہیں, کم گو ہیں, کام کرنے والے 24 گھنٹے سے 22 گھنٹے کام کرنے والے آدمی ہیں. انہوں کو فارن آفس دی, انہوں نے چپ چپیتے جو ہے آپ کو کام کر کے دکھا دیا کہ پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے. ایک ایک دن میں جنگ کے اوپر اتنے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ کرنا, پھر سالسی کے دوران سالسی کی نیگوشیشنز آپ کے ملک میں ہوئی ہیں. یہ ایک انہونا واقعہ ہے کہ ایک غریب, اکنامیکلی ان بیڈ شیپ ملک, ایک ورلڈ کی سپر پاور کو مسلمان ملک کی پاور کے ساتھ جو ہے سالسی کر رہا ہے, اور وہ مان رہے ہیں کہ یہ ہمارا سالس ہے. فیسیلیٹیٹر نہیں کہتے, وہ کہتے سالس ہے. سو آپ ایک مصدقہ سالس کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم آئی ایم ایف میں بالوں بالوں الجھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے پرفارم کیا ہے. اور فائنینس کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے بیکاز آف بینگ ڈپٹی پرائم منسٹر. تو ایک اچھا ایک پیر ڈوو چلا ہے اور پاکستان کی خدمت ہوئی ہے, اور یہ ہسٹری جج کرے گی کہ کیسا رہا. لیکن ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اللہ لوک آدمی ہیں, گاڈ فیئرنگ آدمی ہیں. مجھے ان کے ساتھ 5 سال ہو گئے ہیں, ڈائریکٹ ان کے کمانڈ میں کام کیا ہے, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اپنی ڈسپلن ہے. اور وہ ڈار صاحب کوما اور پیش اور فل سٹاپ بھی نہ چھوڑنے والے آدمی ہیں, اور وہ مینوٹلی پیپرز کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک چیز کو وہ بڑی لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک بہت اچھا تجربہ تھا, مجھے بہت سیکھنے کو ملا ہے, اور امید ہے کہ وہ آگے بھی ایک اچھی لیگسی چھوڑ کے جائیں گے جو اسی طرح ان کی طرح کام کرے گی اور اسی طرح پارٹی کو اور ملک کو اور اپنی حکومت کو سپورٹ کرے گی.
1: ملک صاحب, اسحاق ڈار صاحب درویش انسان ہیں, بڑے محنتی ہیں, آفس کا کام کرتے ہیں, آفس مین ہیں, لیکن میڈیا بھی بڑا بے لگام ہے. آج کل میڈیا بھی تھوڑا سا, میڈیا کی زد میں بھی تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں.
0: دیکھیں, وہ ان کی فیملی میں کسی بچے کا ایشو ہوا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے اوپر فوری کاروائی کرتے ہوئے جو ہے معاملہ جو ہے اس کے اوپر کیس رجسٹر بھی ہوا ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب یہ کام تو عدالتوں کا ہے کہ شیف کو گرین سے علیحدہ کرے. یہ پولیٹیکل کام تو ہے نہیں, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پارلیمان میں بھی نہیں ہونا اور میڈیا پہ بھی نہیں ہونا. تو میرے خیال میں لیٹس ناٹ ہیو اے میڈیا ٹرائل. میری یہی گزارش ہوگی کہ لیٹ دی کورٹ ڈو دیئر جاب. اس ملک میں تو ویسے جو ہے وہ کیا نام تھا, وہ ریمنڈ ڈیوس بندے مار کے چلا گیا ہے. تو یہ پاکستان کا, اور ابھی سی سی ڈی کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ ہر وقت میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم مضبوط کریں جس میں ہاتھ نہ مروڑے جا سکیں, اور عام آدمی کو بھی اسی طرح انصاف ملے جس طرح خاص آدمی کو ملتا ہے. تو اسی سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پولیس کو فری ہینڈ دیا ہے. پولیس اپنا مقدمہ دائر کرے, چلان جمع کروائے, عدالت اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے. بیسٹ یہی ہے, اور ٹائم اسپین میں دے, 5-6 مہینے میں کیس کو فارغ کرے, پتا کرے جو بھی کرنا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کا انصاف کے جو طریقہ کار ہے یا نظام ہے اس کے اوپر اعتماد بحال ہوگا. اور میرے خیال میں کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی شخص جرم کر سکتا ہے, سزا اس جرم وار کو ملنی چاہیے جس نے جرم کیا ہے. لیکن ان کے بزرگوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, ماؤں کو پولیٹیسائز یا پروپیگنڈے کا شکار نہیں بنانا چاہیے. اور یہ تو مصدقہ ایک کوٹ ہے کہ یو آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی بائی کورٹ آف لا. کوشش صرف یہ کریں کہ کورٹ آف لا ہی ڈیسائیڈ کرے, سمری ججمنٹ نہ ہو, سمری ٹرائل نہ ہو, لوگ گتھم گتھا نہ ہو, لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اور عدالت ہی جو ہے ایسا فیصلہ کرے جس کے اوپر سزا یا جزا ہو.
1: ملک صاحب, ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, ایک دو سوال آپ سے کرنے ہیں. کشمیر کے الیکشن, احتجاجی سیاست اور اپوزیشن کا یہ جو تڑکا بیچ میں لگتا ہے، آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیں، تین چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت جنگ ہارنے کے بعد ہر وہ حربہ استعمال کرے گا جس سے آپ کی ریاست کمزور ہو اور آپ کا بیانیہ جو ہے ٹوٹے. تو اس میں چاہے کشمیر ہو، بلوچستان ہو، کراچی ہو، اور ٹی ٹی پی ہو، ہمارے جو کے پی کے جو بارڈر ہے اس کے اوپر سکرمشز ہوں، یا انکریزنگ انسرجنسی اور طالبانائزیشن ہو. اب دوسرا جو ہے وہ یہ چھوڑے گا نہیں، چاہے کشمیر کا الیکشن ہو، چاہے آپ کے پی پی میں کرائیں، چاہے آپ بلوچستان میں کرائیں، اس ایلیمنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فوراً جو طاقتیں ہیں وہاں اپنا رول پلے کریں گی. اب دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ برطانیہ میں 12-13 لاکھ کشمیری بستے ہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ گہرے روابط ہیں. یہاں کشمیری نژاد کاؤنسلرز، میئر، ممبران پارلیمان ہیں، وہ ایک گیلونائز کرتے ہیں، ان کے پیچھے پوری پوری ایک فوج ہے جن جو ووٹ دیتی ہے ان کو، ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی مجبوریاں ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ برطانیہ میں بیٹھ کے کشمیر کے الیکشن مینج نہ کیے جائیں. آپ نے ووٹ ڈالنی ہے، بسم اللہ کشمیر میں اتریں، کشمیر جائیں، ووٹ ڈالیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، بسیں دیں، آپ ٹرک دیں، آپ لوگوں کے سٹال لگائیں، آپ اپنے اسٹیشن بنائیں اور مدد کریں. لیکن خدا را یہاں بیٹھ کے، برطانیہ میں بیٹھ کے کشمیر کے الیکشن کا فیصلہ نہ کریں. کشمیر میں صرف کشمیری ووٹ ڈالیں گے، کوئی اور ووٹ نہیں ڈال سکتا، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان. آپ نے ووٹ ڈالنے، بسم اللہ ووٹ ڈالیں، اپنے حکمران خود سلیکٹ کریں، جو حکمران بنے وہ فیصلہ بھی کریں کشمیر ایکشن کمیٹی کا کیا کرنا ہے. اگر کشمیر ایکشن کمیٹی والے لوگ بنا لیتے ہیں حکومت، وہ فیصلہ کریں کہ کیا مراد دینی کیا نہیں دینی، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مکالمے میں رہیں. سیاسی چیز کو سیاسی رہنے دیں. یہاں اس کو کھدو بنا لیا ہے. ایک تو پولرائزیشن، آپ دروازے توڑ رہے ہیں. احتجاج کریں، یہ برطانیہ ہے، یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے. یہاں پہ احتجاج کو دیکھا جاتا ہے، یہاں غازہ پہ احتجاج ہوتا ہے، یہاں پہ امیگرنٹ کے خلاف ای ڈی ایل احتجاج کرتی ہے، لیکن ای ڈی ایل کو حکومت نہیں مل جاتی. ای ڈی ایل کے احتجاج میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو حکومت نہیں بنانے دے دی جاتی کہ وہ اٹھا کے امیگرنٹس کو باہر نکال دیں. آپ ایک پاپولس موومنٹ کا حصہ ضرور ہو سکتے ہیں. پاپولس موومنٹ ٹرانسلیٹ ہو حکومت میں یہ لازمی نہیں ہے. یہاں آبادی زیادہ ہے تو بات چیت بھی زیادہ ہوگی، آواز بھی زیادہ نکلے گی، بالکل نکالیں. لیکن یہاں بیٹھ کے کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ نہ کریں، وہ وہاں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو کرنے دیں. میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، اس جگہ کے لوگوں کو کرنے دیں وہاں کی سیٹوں کا فیصلہ. کسی نے بہت زیادہ سیاست ہے شوق تو ضرور جا کے سپورٹ کریں، اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. اپنی پارٹی کے نہیں لڑنے دیا جاتا تو آزاد کھڑے ہو جائیں، آزاد لڑیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. ان کے ووٹوں سے ایم ایل اے بننے ہیں، ان کے ایم ایل اے کے ووٹوں سے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا ہے. اب ایک جگہ پہ آبادی زیادہ ہے اور وہاں پہ آپ کی سے زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گالم گلوچ میں ہر اس سطح کو پار کر جائیں جس سے آپ کا اکاؤنٹ تو شاید مونیٹائز ہو جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، لیکن میرے خیال پاکستان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا. اپنے ممبران پارلیمان، اپنے کاؤنسلر، اپنے میئر کو ایک اچھا، شستہ، فیئر، فری الیکشن کروانے یا ہونے دینے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، رادر دین کہ اینٹی پاکستان جا کے جی دروازے توڑ دے ہائی کمیشن کے، یا جی بندے کھڑے کر کے تو جی جھنڈے لہرا رہے ہیں جی انڈیا کے، یا گالیاں نکال رہے ہیں. وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کی امبیسیاں ہیں، آپ نے وہاں سے کارڈ لینا ہے، نائکو کارڈ لینا ہے، پاسپورٹ لینا ہے، آپ نے ان سے سہولتیں لینی ہیں کہ آپ اپنی ایئر لائن ڈائریکٹ وہاں چلا سکے مظفر آباد اور بیپور. آپ نے ان سے کام لینا ہے تو کام چلنا ہے. تو ایک ایسا ٹریٹ کرے کہ جس طرح ایک مہذب معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے. اس کو اتنا عزت بستی کا مسئلہ نہ بنا لے کہ لوگ باہر نکلنا ان کے لیے دشوار ہو جائے، اور آپ برطانیہ میں ایسے حالات پیدا کر لیں کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ یہ برطانیہ ہے یا آپ نے یہ جموں ہی بنا لیا اس کو. تو دیکھنا چاہیے میرے خیال میں. لیکن मैं हमेशा ही ह्यूमन राइट वकील होने के नाते जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई रहा हूँ। अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बातचीत से मामला हल किए जाएं, शख्सी आजादियों के ऊपर पाबंदियां कम होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को भी परे रखना चाहिए जो इस आड़ में आपकी पाकिस्तान से लड़ाई करवाएंगे, जो इस आड़ में भारत को मौका देंगे कि वो अपने असर और रसूख के जरिए, पैसे के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए वो अपना यहाँ अपनी स्टेक बनाए और आप में और आपकी रियासत के दरमियान दायमी नफरत का आगाज करें। ये डायरेक्ट उनको सपोर्ट करती है, ना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ना कश्मीर को सपोर्ट करती। कश्मीर के लिए हमारी सिपाह ने, हमारे लोगों ने जाने दी, कश्मीर के लिए उनके दिल धड़कते हैं। कभी भी कश्मीर का नाम आए तो ये नहीं को कह सकता कि कश्मीर की किसी पाकिस्तानी ने मुखालफत की है। आपको भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अलहदा चीज है, हुकूमत अलहदा चीज है, कश्मीर के इलेक्शन अलहदा चीज है और उसको एक इलेक्शन के तौर पर लेना चाहिए। यही लोग जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं कल को MLA होंगे, वजीर आजम होंगे, आपने इन्हीं के साथ फिर मुकालमा करना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है। बातचीत को एक हद से ना गुजरने दें। जिस दिन आपके हाथ में डंडा आ जाए और आगे पुलिस वाला हो, आपकी बातचीत खत्म होगी, आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत खत्म होगी। आपने जिस दिन डंडा पुलिस वाले के सर पे मार दिया, खत्म होगी बात, आपकी सियासत गई बाढ़ में। आप जो मर्जी करते रहें, कोई आपको रास्ता नहीं देगा। मैंने आपको मिसाल दी है, बरतानिया में मजारे होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश डिफेंस लीग या हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, हम चाहते हैं इमिग्रेंट्स को उठा के वापस भेज दिया जाए, उसमें कश्मीर भी शामिल है। तो क्या किसी ने हमें निकाल दिया यहां से? इसलिए नहीं निकाला कि वो एक पॉपुलिस्ट, एक आवाज जरूर है, हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है। रियासतें बरतानिया नहीं ये चाहती कि यहां से सब कालों को निकाल दिया जाए या सब इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए। तो ये आप देखें और खुद अपनी चीजों को मद्देनजर रखें ताकि नुकसे अमन का बायस ना बने, यहां भी जगह सही ना हो जहां हम रहते हैं। और बिल्कुल मेंबराने पार्लियामेंट बेचारे फंसे हुए हैं, उनके 4-4 लाख, 1.5-1.5 लाख वोटर हैं जो कश्मीरी नजाद हैं और उनको, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। हमें सफारत खानों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फॉरेन ऑफिस को उन मेंबराने पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं छोड़नी चाहिए जो कश्मीरी कॉज या कश्मीरी प्लाइट के ऊपर एक बयानिया बनाते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें उनके साथ राह और रस्म नहीं अलहदा करने चाहिए और उनको नेम एंड शेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मजबूरी और उनके मसले को समझना चाहिए और उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए और बल्कि बातचीत को, डायलॉग को बेहतर तौर पे करना चाहिए। और ये वफूद के तबादले और आना जाना, अगर कोई मिनिस्टर आता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर आता है, उनके साथ कश्मीरी नजाद मेंबराने पार्लियामान की भी बाहम मुलाकात रखवानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। ये इलेक्शन के बाद मामला और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन तक है। जैसे ही इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत फाल होगी, तो ये मामला हल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे।
1: मलिक साहब, बड़ी ज्यादती होगी एज ए ओवरसीज में, एक दो सवाल ना करूं और अपनी कम्युनिटी के बारे में बात ना करूं। आप ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं, लायर हैं आप और पब्लिक की आवाज़ भी हैं आप। तो मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीरे दफा हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, हुकूमत के साथ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रहते हैं, अपोजिशन के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो गर्मियों में वो पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग लगाने का उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, ज़रा सेहत बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ डेनमार्क में रहते हैं तो हमें PIA कब मिलेगी?
0: PIA ख्वाजा आसिफ साहब ने तो नहीं देनी, PIA तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जुलाई से बरतानिया से मानचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन से भी शुरू हो गई है। और PIA अब एक प्राइवेटाइज अदारा है, कोशिश पूरी करेंगे कि अगर एक लुक्रेटिव आपका रूट है, डेनमार्क, फ्रांस, यहाँ से जहाँ जहाँ रोम, यहाँ से आती हैं फ्लाइटें, तो ये दोबारा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ भी शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जरूर शुरू हो। और ख्वाजा साहब के बयान को कई दफ़ा सियासी बयान को सियासी बयान के तौर पर लेना चाहिए और थोड़ा सा चिन अप कर रखनी चाहिए। ख्वाजा साहब का कई दफा बयान, जो लाजमी नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की का बयान हो, वो कश्मीर कश्मीरियों का है और हम कश्मीरियों के हैं, कश्मीर हमारी शाहरुख है, और ये बयानियां अभी ना तब्दील हो रहा है ना होने जा रहा है, जब तक इसका पायदार हल नहीं निकलता हम कश्मीरियों की प्लाइट के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। आपस में भाई हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीरियों के खून से रूगर्दानी करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि कश्मीरी कॉज को इस तरह के आपसी इख्तलाफात से नुकसान ना पहुंचे।
1: मलिक साहब, हुकूमत से मज़ीद हम क्या उम्मीद रखें? इसी तरह एक खबर चल रही थी कि कोई दो बंदे हैं, वो इंसानी जो है वो बंदों को भी खाते हैं, वो जेल में गए हैं, या खबर है सच है या झूठ है, ये पढ़ी गई है अखबार में, तो वो इंसानी इंसानी गोश्त खाते हैं, वो जेल में भी लोग उनसे डरते हैं, वो कहते हैं हम जेल में भी इनका गोश्त खा जाएंगे। तो मलिक साहब, इस तरह की चीज़ें
0: फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, इस तरह की बातें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बेफिक्र रहें, और अगर खाते भी हैं तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होंगे, आप बेफिक्र रहें, इनमेट्स जो हैं वो कैदी जो हैं उनकी फलाह बहबूद या उनकी फिजिकल वेलफेयर, उनकी लुक आफ्टर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनकी देखभाल करना, उनकी मेडिकल नीड्स और खाने पीने में एहतियात, ये सारा जेल मैनुअल में शुमार होता है, तो आप बेफिक्र रहें, कोई भी कैदी किसी भी कैदी से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो राय साहब इजाजत अब
1: मलिक साहब,
0: दें,
1: आपका
0: घंटा हो
1: बहुत
0: गया।
1: शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में अपनी टीम की तरफ से भी और अपने दोस्तों की तरफ से भी, कि आपने बड़ा खुला हमें टाइम दिया, और कोई सवाल ऐसा नहीं है जो हमने ना किया हो, जो हमसे लोग हैं जी आपने मलिक साहब से ये पूछा नहीं है। तो हमने भी जहनी तौर पर पूरी तैयारी की हुई थी कि आपको, चूंकि लाइफ आप बैठे हुए हैं, तो आपको जवाब तो अदालत में हमें देना ही देना होगा। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डनमार्क के लोगों को क्या कहेंगे?
0: थैंक यू राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डेनमार्क जो मैं मुझे बहुत अजीज है, और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेनमार्क आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा भी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों की गुजारिशात सिफारशात और मुतालबात में जो सहूलियात पैदा कर सकें और ज़रूर करें, और आप भी कोशिश करें, लोगों को बताएं, खुली कचहरी में उनको दावत दें कि वो शरीक हों, अगली खुली कचहरी 29 जुलाई को 2 बजे होगी, तो जरूर लोग तशरीफ लाएं जिनके कोई मसला है पाकिस्तान में, और साथ साथ अगर कोई आपको गुजारिशा देते भी हैं तो हमारे बहुत अच्छे, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त यहाँ सफारतकार हैं, और आप उनको जरूर रब्ता करें, वो आपकी गुजारिशा पहुँचाते हैं हम तक, बल्कि मुझे मिलने भी आए थे वहाँ लाहौर ऑफिस में, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलके कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आरा को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानियों को खिदमत फराहम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: लो

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: system that is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।